प्रकृति हमारे लिए जिस कर्तव्य का विधान करती है उसका विरोध करना व्यर्थ है। यदि कोई मनुष्य छोटा कार्य करे तो उसी कारण उसे छोटा नहीं कहा जा सकता। कर्तव्य के केवल ऊपरी रूप से ही मनुष्य की उच्चता या नीचता का निर्णय करना उचित नहीं। देखना तो यह चाहिए कि वह अपना कर्तव्य किस भाव से करता है। भिन्न भिन्नाते रहने वाले पुरुषों के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे कभी किसी चीज से संतोष नहीं होता और फलस्वरूप

उसका जीवन दुभर हो उठना और असफल हो जाना स्वाभाविक है। हमें चाहिए कि हम कार्य करते रहें, जो कुछ हमारा कर्तव्य हो उसे करते रहें, अपना कंधा सदैव काम से भिड़ाए रखें, तभी अवश्य हमें प्रकाश की उपलब्धि होगी।

नमस्कार, ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम है, जिसका प्रसारण किया जा रहा है 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोता, हमारी स्टूडियो के घड़ी के अनुसार इस वक्त सुबह के 5:55 हो रहे हैं। इसी के साथ आरंभ होती है हमारी आज की प्रभातकालीन प्रसारण सभा। इस सभा को सुनने वाले आप सभी श्रोताओं का मैं आरजे साथी दंपाकलोंग आकाशवाणी के अरुण एफएम से हार्दिक स्वागत करती हूं। सन 2026 सितंबर महीने के आज 27 तारीख है और दिन है रविवार। आज के प्रभातकालीन प्रसारण सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ हैं स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक पी दोले तथा तकनीकी अभियंता एचआर ब्रह्मा। श्रोता, हर रोज की तरह आज भी हम इस सभा में आपके लिए पेश करेंगे देरो ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजक कार्यक्रमों के साथ देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें। तो आइए सभा की आरंभ करते हैं। दोस्तों, आइए हम जानते हैं इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ पलों में यानी 6 बजे आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी न्यूज, 6:05 पर दिल्ली केंद्र से प्रसारित इंग्लिश न्यूज और 6:10 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम भक्ति गीत, 6:40 पर आप सुनेंगे गालोच श्रोताओं का समाचार और 6:45 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम सुबह सवेरे। सात बजकर 10 मिनट पर आप सुनेंगे आपातकालीन श्रोताओं का समाचार और 7:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मॉर्निंग इंटरटेनमेंट, 7:35 पर आप सुन पाएंगे थागिन श्रोताओं का समाचार और 7:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सदाबहार। दोस्तों, 8 बजे आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज और 8:30 पर शिलोंग केंद्र से प्रसारित नोटिस न्यूज और 8:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो ईटानगर। नौ बजे आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी समाचार और 9:05 पर आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित इंग्लिश न्यूज। नौ बजकर 10 मिनट पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम फिल्मी गपशप और 10 बजे आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी न्यूज, 10:05 पर दिल्ली केंद्र से प्रसारित इंग्लिश न्यूज। दोस्तों, 10:10 पर आप सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड। और 11 बजे आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात,

तो दोस्तों ये थे इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आपको बता दो कि अब से कुछ ही पलों में यानी 6 बजे आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, और उसके तुरंत बाद आप सुन पाएंगे 6:10 पर कार्यक्रम भक्ति गीत और 6:40 पर गलो श्रोताओं का समाचार। श्रोता आपको फिर से बता दूं कि अब से कुछ ही पलों में यानी 6 बजे आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 138वीं कड़ी होगी। इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद प्रादेशिक भाषाओं में भी इसे प्रसारित किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि मौजूदा संघर्षों के बीच सभी पक्ष संयम बरतें, तनाव कम करें और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। उन्होंने ऊर्जा और व्यापार की आपूर्ति जारी रखने पर बल दिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में डॉ. जयशंकर ने कहा कि युद्ध का असर सिर्फ संबंधित देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा और विकास प्रभावित होती है। रूस यूक्रेन संघर्ष के बारे में उन्होंने कहा कि युद्ध अब भी अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय है। डॉ. जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संघर्ष समाप्त करने का आह्वान दोहराया। उन्होंने वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों के हमलों को भी अस्वीकार बताया। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, बूथ स्तर के अधिकारी उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। BLO बाद में इन दस्तावेजों को ECI नेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के मुद्दे को लेकर विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। श्री नवीन ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि SIR का निर्णय आयोग ने सर्वसम्मति से लिया। उन्होंने कांग्रेस पर झूठे दावों के आधार पर देश की संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाने का आरोप लगाया। श्री नवीन ने कहा कि लोकतंत्र में जीत और हार स्वाभाविक है, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाने के लिए गलत प्रचार का सहारा लेना दुर्भाग्यपूर्ण है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आज खुले रहेंगे। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। आज विश्व पर्यटन दिवस है। इस वर्ष विश्व पर्यटन दिवस का विषय है पर्यटन को नए रूप में विकसित करने के लिए डिजिटल एजेंडा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आज कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और मध्य प्रदेश में आज तेज वर्षा हो सकती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों, उड़ीसा और तेलंगाना में भी आज बारिश की आशंका है। उत्तराखंड में खराब मौसम के कारण चार धाम यात्रा रोक दी गई है। तीर्थयात्रियों को सलाह दी गई है कि वे मौसम पर नजर रखें और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। मौसम ठीक होने के बाद ही यात्रा फिर शुरू होगी। इस बीच राज्य में कई स्थानों पर आज भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज दोपहर 2 बजे से तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। दूसरा मैच 30 सितंबर को गुवाहाटी और तीसरा मैच 3 अक्टूबर को न्यू चंडीगढ़ में होगा। इसके बाद दोनों टीम के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला भी खेली जाएगी। एशियाई खेलों में स्क्वाश में अनाहत सिंह और अभय सिंह का मुकाबला मलेशिया के खिलाड़ियों से होगा। एथलेटिक्स में तेजस्विन शंकर, NC सोजन, पारुल चौधरी और शैली सिंह मुकाबला करेंगे। हॉकी में भारतीय महिला टीम सिंगापुर से खेलेगी। बैडमिंटन में PV सिंधु और भारतीय मिक्स जोड़ी पदक से 1 जीत दूर है। तीरंदाजी, मुक्केबाजी, भारोत्तोलन और तलवारबाजी में भी आज भारत को पदक की उम्मीद है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: संगीत,
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात,
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोता भी आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी का अरुण एफएम है, जहां होती है दिल से दिल की बात। और श्रोता, अब आपके लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम भक्ति गीत, और इसके अंदर आप सुनेंगे सीआरसी आकाशदीप की ओर से क्रिश्चियन भजन।

0: पर समाप्त होते हैं और अब से कुछ पलों में आप सुनेंगे गालों श्रोताओं का समाचार।
1: आकाशवाणी ठानगर है तानका दम रोगम जब हम दूला जीत पोल गालो छामी को लाकाने जीत आर सको गालो मेकेन अगर मैं बिल्लें जी रहा मैं केन मैं जीना गो गुमार लें तो अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर नरम केटी पर नायक इजाग जीरो तक लड़े को लोम ना बलो तुम कदू नाम जीरो म्यूजिक फेस्टिवल पुलिक दूला म्यूजिक नीटम पाक्सो मोला गोगी गोला नाम सिगी तानी का बूमरा रिगो दूला सिगी तानी मको का चेन्यू चेरलो याल पाव दुल दो दुना कम तो सिगे नारुगा इस नापुलो दो लग ला अकेन अकेन का मना मनो ने गोगिर बे गोगलें जी दुना कम तो मेंटला जीरो म्यूजिक फेस्टिवल सिगिम ने चिगो दो गो तपाला कु निसु निपंग मेन मा बन नारुगा काका तब पुलिक दुना कम तो सो गुसा सिसा ना यूथ गद कम आयगा नीतों पाक्सोम ने गोकेंजिला योना लिगु लिपो को इरना को कादु एगम ने कातों को बगद सिगिम ने न्यूदा कम लोदुम गदुना कम तो मेंटला दोन्या लोलो गवर्नर बे होंग दोलुगा नली थागे री थागे नारा अब वाइन री एम कम कागो तातु सोगो अपा जी एम ने अलाब तिगदोब मोलेंदो ना कम तु इटानगर सोक फ्रेश इन्फॉर्मेशन वीडियो पी आई बी का पहला लोक लोअर सुबन श्री मोको ग जर्नलिस्ट ओक सेंट क्लेरेट कॉलेज ग मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ग कॉलेज आओ गा दमे गोकुम दोला मेंटम रुपा का लोदुम गतु दोन्या लोलो गोमल एम ने रेस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म इन्फॉर्म सिटीजन ओक नशा मुक्त भारत फॉर बेटर सोसाइटी अमला ताकि जानो का तुला मीडिया लोग रिलिक ने गा दम ने योना न्यूज को जिले दुदु एगम ने अलग बुकादार कर ने रिचो रू तो काम लरो गुतु मेंटल मीडिया से की आके नाके का मना मोन मम ने तपु कपु तो रिरा दुना कम तु ईशियांग डिस्ट्रिक्ट द वोमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट राष्ट्रीय फोसन मा आलो अमने लोदुम दोला आंगन का उत्सव अमला मिशन बत्सल्व्या ओक मिशन शक्ति का कबा अमने तेरु अलोलो लोदुम गतु दोन्या लोलो डेप्यूटी कमिश्नर डली सोनाली का ओका आईसीडीएस ग निगम एमटी पादुन कोम फलिक दोला आंगन का उत्साह गा बाम ने मेंटम तो सोगो उंगा आवम ने योब तोरगले ग नान दोनाम तिनाम जिकेन दाग दे ओक योब रगदु ग ना चिचा जोसा कैन दाग दे ग म्या लुब मेंटम जीतु मेंटल मिशन बत्सले ओक मिशन शक्ति सिगिम ने दिन छि बागर गर्मो नाम लगा बसो का अबु ना निगम गा दम ने लखेन ग व्हाट्सएप ग्रुप को मोगरेला ए तो काम तो ओको डिस्ट्रिक्ट ग योना एजेंसी ओके वेलफेयर का दूध एगम ने लखेन गोब व्हाट्सएप ग्रुप लो मेंटो मृतम मृदो बम तो रूरल डिपार्टमेंट ओके पंचायती राज ग मिनिस्टर निर्मल ओजिंग तसिंग सियांग अपर मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट लो का हाई लेवल कमिटी के चेयरमैन ब दुदुला तरु आलो लो यिंग क्योंग लो दिनसिना कबागो हेड ऑफ डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स पारामिलिट प्रोसेस ओके कब अब नानिगम का दम ने दुगतो कबा दोदा लो मिनिस्टर ब दिनसि जाबा दोलोंगी का दम ने को मेंकेन लानोनो देमो नाम लगाब लगसगा योगा डिपार्टमेंट का इंगोल एकार दे एगम ने अलेब मेंटो मृतम तो काम तु ओक डिपार्टमेंट का देम कोम रोगुला नोनु अले बिंगो दोला सिन सिबो मोतु मिसी दोलु रिगम नस्तो देनम कोम काला रिपोर्ट एम ने बुबाब जिलिप तो काम तु तानगा दुन गलो मेके नगम सिना खास वने ठानगर लोक तफादु चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया निर्म जस्टिस सूर्यकांत दिन सिनागोम गो मेकिन जिला एक जस्टिस सिस्टम सिगिम ने दो कोस्तो ना एलु कैंसर ना रितु रे नाम ओक रे विक्टिम्स गादे सिगिम ने तोराला दूत माब यद जस्टिस पाप मदु नगम इंगो दोला जस्टिस एम जिला जो काम ना रोको तो सिलोगो द विक्टिम्स गादे योलो जस्टिस पात्र ना ब्रे अमला मबल रदु ओक आयग लीगल राइट्स एम कम चेंज सिकुमाब रे ने याका को कादो सोक जा लगाब दिन सिजाब मदुला बिहार ग बोधमर्क लोदीपुर लो बिहार स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी एम अमला मोकोक जिदु ना कम तु सोगो विक्टिम आला इका दार काम ने रू तो कम तु सोगो पुलिस प्रोटेक्शन हॉस्पिटल्स कोर्ट काउंसलिंग ओक साइकोलॉजिकल सपोर्ट एम ने पार एम तु फाइनेंस मिनिस्टर नली निर्मला सीतारामन यूनाइटेड फोरम ग बैंक यूनियन गद ग दोनी लोम गो भारत देश सोको स्टेट बैंक स्टेट रिदु बा नम ने तादुला सिलो दौबार जित आलो सोगो बैंक ने कुली रे अमला मेकेन जितु बैंक स्टेट रिदागलो UPI payment, internet banking or mobile banking got the river at the Ramla making jitu. India soka marathon juking the Shawal Vorwell Asian Games 2026 lo silver medal ko patu. Oka Indian women comedy kabade team akom gold medal na patu. Oka mentor bako Indian men's kabade team akom Iran amne nugum yala Asian Games 2026 lo gold medal amne pabatu. ka tanaga da sirga galo meken agoma.

0: Burger. Radio tamega tam lekeng goda rogam jabam do la. Siroga galo figo ye gam ne gorab do la kaju gundo. Nembe boya potom galo ke alungo paku ponu am ne gundo talaju.
1: Pakeyo ya.
2: Tagap sa agom go. HIV bemar higum alluba hensla yenam higi naru lok dinsna.
3: HIV bemar higi yolok nyomi hitakko amyomne HIV bemar gan lok ilala HIV gan namne yupam dobam hila beji syringe nigbam hiklok ok anne HIV gayomne aki lok awam sin nyogla ju.
2: Amge mubatoka amumba dubam hiklok alakia ya hiklok Gombagom yahik loka, dobam tibam hik loka, ok, taru pik loka HIV higi nyong madona ka.
3: HIV test ika hila yeru tolaka, hengor bolo nomne moklasin ilado. Noka gunam hunam emsin, aluba gupu hikulasin ilado.
2: HIV higum bosioka, aluba den hen lajuka, test kotka, ok HIV gan namne arik mabjuka, higi arik sa kama.
3: HIV ga lugu laga higimne, aluba hen nam lagaba, National AIDS Helpline. 1097 number hogo call ru tolaka
2: hakna dins na bahigum gumin hoin lagaba arunachal pradesh state aids control society dhs nahalagan pela lokka jilentu
4: dosto bhi aap sun rahe the galo shatav ka samachar गालो श्वेताव का कार्यक्रम आप आगे और भी सुन सकते हैं हमारे मीडियम वेब चैनल 444.6 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ तथा डीआरएम 666 किलोहर्ट्ज़ पर अब आप बने हुए हैं मेरे साथ आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर जहां होती है दिल से दिल की बात और अब प्रस्तुत है आपके लिए कार्यक्रम सुबह सवेरे नई सुबह नया उजाला मन में सकारात्मकता का दीप जला लेना हर मुश्किल आसान लगने लगेगा बस खुद पर थोड़ा यकीन बना लेना जय दोस्तों इस सुबह के साथ आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम सुबह सवेरे में दोस्तों इस सेगमेंट पर आप मेरे साथ जुड़ेंगे कुछ खास बेहतरीन फिल्मी गीत और हम कुछ खास बातें भी करेंगे हेल्थ से जुड़ी लेकिन इससे पहले चलिए कार्यक्रम में आपको सुना रहे हैं बेहतरीन फिल्मी सॉन्ग्स दोस्तों आपके लिए आज के सेगमेंट पर लिया है फिल्म खामोशी से पहला गीत गीत के बोल है बाहों की दरमिया और इस गीत को आवाज दी है हरिहरन और अलका याग्निक ने

दोस्तों आप सुन रहे थे ये गीत खामोशी फिल्म से और आप बने हुए हैं मेरे साथ कार्यक्रम सुबह सवेरे में। अब चलिए दोस्तों कुछ खास बातें करते हैं हेल्थ से जुड़ी। दोस्तों हमें हेल्दी रहने के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड रूटीन की जरूरत नहीं होती, रोज की छोटी छोटी आदतें सबसे ज्यादा काम आती हैं। जी हाँ, रोज आप 30 मिनट वॉक या हल्का एक्सरसाइज करें। खाने में सब्जी, फ्रूट्स, दाल, होल ग्रेन्स और प्रोटीन को शामिल करें। दिन भर पानी पर्याप्त मात्रा में पिए और मील के टाइम रेगुलर रखें और बहुत ज्यादा ऑयली, स्पाइसी और प्रोसेस्ड फूड कम करें। और दोस्तों सबसे जरूरी है 7 से 9 घंटे की नींद। जी हाँ, और रोज 5 से 10 मिनट आप हल्का डीप ब्रीदिंग और रिलैक्सेशन करें। इससे हमारी माइंड फोकस रहती है और हमें हेल्दी रहने में मदद करती है। और साथ ही आप ध्यान रखें कि स्मोकिंग, टबाको आप कम सेवन कर रहे और बहुत देर तक लगातार ना बैठे। हर 30 से मिनट में थोड़ा चल फिर लें और अपना वेट, बीपी और रूटीन हेल्थ चेकअप्स पर नजर रखें। और साथ ही दोस्तों गैस्ट्रिक और कॉन्स्टिपेशन

बचने के लिए सुबह हल्की एक्सरसाइज और वॉकिंग काफी मददगार हो सकती है। आज सुबह 20 से 30 मिनट ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, यह सबसे बेहतर ऑप्शन है। और नीज टू चेस्ट पॉज यानी पवन मुक्तासन, आप इसे 20 से 30 सेकंड कर सकते हैं। दोस्तों, अभी चलिए इसी के साथ ही कार्यक्रम में हम आगे चलते हैं और आपके लिए पेश कर रहे हैं बेहतरीन गीत फ्रॉम द फिल्म सरफरोश। और गीत के बोल है इस दीवाने लड़के को, और इस गीत को आवाज दी है अलका याग्निक और आमिर खान ने।

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते हैं, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।

दोस्तों आप सुन रहे थे ये गीत अभिजीत भट्टाचार्य और निशा पंडित की आवाज में फिल्म खूबसूरत से। और अब आपके लिए पेश कर रहे हैं गीत जानम समझा करो फिल्म से। दोस्तों गीत के बोल हैं चांदनी और इस गीत को गाया है उदित नारायण ने।

दोस्तों इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम सुबह सवेरे यहीं पर समाप्त होते हैं और अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आप बताने श्रोताओं का समाचार।

0: 件か。エシアンゲームズ2026をインディアンマラトンランナーサワン・バルワールメンスマラトンイベントをシルバーメダルララマトインディアンウィメンスカバティティームをイランカバティティームにヘミンラ2026エシアンゲームズをゴールドメダルララマトヘラインディアンメンスカバティティームヘタレイランカメンスカバティティームに40-34パーヘミラシニャモロカコハネゴールドメダルにララマトハラルコトセカポロカ28ホケラ30ヤユナイテッドフォーラムオブバンクユニオンズアタンヘインディアガンダホカマランジャイステッソバンクバンコールマラムキンドホパソロサンディアロホマランジャイステッソカバンクホリケンドヘラファイナンスミニストリーヘブヨルコラルネインディアガンダホカカピュジャービクティムスライツセンターミビハルホカステッドリーガルサービスオトリティキャンパスオブヨムコビラマトヘカセンターホアトリーガルライツミカチマパマネビクティムスアタミリーガルエイドサイコロジカルサポートホカウンセリングビリラマキンドヘラチーフジャスティスオブインディアジャスティスサーリアカンタブヨルコラルネヘカ Victims Rights Center ミカ、モコビラムイホ、Transgender Helpline ホ Multi Utility Vehicles マラミ、プレゴブムビラマト。Minister for Rural Development and Panchayati Raj Ojinta Singh, Buyo Yingkyong Hoka, DC Office Conference Hall Udeho, Upper Siang Hoka, Head of Departments, Administrative Officers, Ho Paramilitary Forces Hoka, Officers Atami, Meeting Ako Dukungalamate. Heka Meeting Ho Minister Ojinta Singh, Hoka Sab Akwapana Atami, Siang Upper Multipurpose,Project Pugomi Takatarala, Hoka Project Meka, Putadita Hoka, Lemba Miu Ata Agin Hoka, Tusitume Laka, Insamusa Pugomi, Tonsor Henyo Lamate, Halalukoto. Rastriya Posan Marga Daipa, Department of Women and Child Development Atahe, Buyo Isiang District Ho, Angan Ka Utsab Program Me, Maglamate.ヘミトゥシラ Women and Child Development Department アタンハモロカミサンワッサリアホミサンサクティクダイパカステークホルダーコーディネーションミーティングドクンササナミタレドクングラマトヘカプログラムホディピュティダイレクターカムディストリクトチャイルプロテクションオフィサー MT パドゥンモアンガンカウツァプログラムカオブジェクティブスミホカミュアコアパナアタミルコラマトヘラ DC ソナリカタレ WCT デパートメントアタミモロカステークホルダーアタミカミシャンワッサリアホミシャンサクティチカイニシエティプゴミチリアパカセタンプログラムムグラムコホパ WCT デパートメントミモアサンダララマトハラルコトイタナガルホカPress Information Bureau Atang Hubuyo, Responsible Journalism, Informed Citizen and NASA Mukta Bharat for Better Society Team Pugomi Lupasala, Hira Fact Checking, Research Verification, Ho Media Literacy Pugomi Tai Lumasala, Vartala Program Ako Maglamatu. Heka Vartala Program Ho, Lower Subansri Hoka Puyupotala na Journalist Atala,St. Claret College, Mass Communication Department, Hoka Students Himiatahe, Akwa Palamate, Halalukoto. Sipu Zero Music Festival Mika Solamutoho, Muni State Hoka Governor, Kiti Parnayak, Momala, Heka Music Festival Mi Kakahala Ate. Zero Music Festival He, Sanche Himia Atampakota, Hemper Platform Ayako,ヘラ Governor Parnayak ムゼロホチャイホルパラルネ Governor Parnayak カゼロホカチャイホムホンレンバホカナラアワワイナリムラミカカハラホナラアワワイナリカファウンダータギリタタヒラモカメンバーサタンギホインタレクマラタルマトヘラルコトスロカタヌプルコサナハムカネ
1: Yeah.
0: सी तगे गसा पुई कोने लो कोली मलाजा आया पा तले तोला बूथ म्या तंग का उदे हो सोलर पैनल मुले बि तुपा होंगुनुमी पुलो कमया 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी बिनीला मुदुपा हला गवर्नमेंट पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली हला नीति योजना को मुले बिला मत हका योजना में सेवा संकल्प अभियान के दलीपा मुलु भी तुपा हला हो बूथ म्योता में सोलर पैनल पर रजिस्ट्रेशन मु भी तुपा हला डिपार्टमेंट ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश अतंग सका पुलो का 27 हो गला 17 अक्टूबर लिए मुनु स्टेट होगा पोंसा पोंसा लेम्बा ग्रा हो सेवा सेतु गला कैंप पाको मगला मुकिंदो सका सेवा सेतु कैंप में पावर डिपार्टमेंट अतंग सियांगो का बोलिंग लेम्बा हो 27 सितंबर हो मगला मकिंदो स्टेट का मनाजा डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर्स हो 29 सितंबर हो मगला मकिंदो स्टेट का मनाजा इलेक्ट्रिकल डिवीजन हो फर्स्ट फिफ्थ सेवन हो 12 अक्टूबर हो मगला मकिंदो सका स्कीम होम यू आता हो का उदय होना डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन गदोन हो का उदय होना स्मार्ट मीटर गदोन हकाता हं आतो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर नंबर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इलेक्ट्रिसिटी बिल आधार डिटेल हो बैंक अकाउंट डिटेल चिका डॉक्यूमेंट्स नि बिल ला अप्लाई मुला केंदो मिवाता हुजा लोना आतो उदे हो 1 किलोवाट का सोलर पैनल मुल कोला मुचिन हका मिवाता मि गवर्नमेंट हु 33,000 सब्सिडी बिल ला मुकिंदो 2 किलोवाट का सोलर पैनल मुल कोने मि 66,000 सब्सिडी बिल ला मुकिंदो हो 3 किलोवाट का सोलर पैनल मुल कोने मि 85,800 सब्सिडी बिल ला मुकिंदो हरा सोलर पैनल में मुले दुपाका ते को याने निमा पो में वाता को लेत्रेल बिल मापा बैंक को के लोन ला लातार मुला केंदो ते को 2 लेक लोन ला नहु बैंक में 5.75% इंटरेस्ट बिली ला मकिंदो को हो 6 लेक चिकान लोन ला नमी उहु 7.9% इंटरेस्ट बैंक को बिली ला मकिंदो को सरुका लुको पोई लुको सने हम कने
1: सीनो नुमे ताग सनु पोई लुको ली मला रो आया पा तल्या तोला एच आई वी का पुगो मी चिंग तोला दोन मला जा पाया दो
2: एच आई वी आई ओ को इंसे में दू ये मिलो को इमी दो बस को बेजी ने मे मी वा को मी ने लला मी वा को मी हिरन ने नां को इंसे दू ओ अनु एच आई वी गुदो को दा नंगा मी अनिया सिंह को त्रो इंसे दू
1: ओ जलो हेंदर गुतो दुबा सको अलग अलग सको पोबा सुलियो दुबा तामसुली हो तारु असु जालो हुको कु इंसे मदू
2: एच आई वी मी तेस मुको केंदो म्यो दू तो रंपा चिंपा दोपा और ट्रीटमेंट मुदोपा और सांगो आया सांडोपा
1: एच आई वी में बुसुमा पा लुकस केंदो तेस मुको केंदो एन हेमाला बुकीमा सिमे आया पा कची नंबो नेशनल एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 हो कॉल मुकेंदो सिकपु गोमी पब्लिक इंटरेस्ट हो अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी DHS नार लगा नोक मुलिंबुदो

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

दोस्तों भी आप सुन रहे थे या पता नहीं श्रोताओं का समाचार। ये आकाशवाणी का अरुण एफएम है जहाँ होती है दिल से दिल की बात। और दोस्तों अब आपके लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मॉर्निंग एंटरटेनमेंट। कार्यक्रम मॉर्निंग एंटरटेनमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, इस सेगमेंट पर आप मेरे साथ जुड़ेंगे समाचारों के साथ और कुछ खास बेहतरीन फिल्मी गानों के साथ। तो चलिए कार्यक्रम में सबसे पहले हम नजर रखते हैं आज के मुख्य समाचार अरुणाचल टाइम्स के, और उसके तुरंत बाद आपको सुनवाएंगे बेहतरीन फिल्मी सॉन्ग्स। दोस्तों अरुणाचल टाइम्स की हेडलाइंस है, रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मिनिस्टर ओजिंग तासिंग ने सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट सर्वे को लेकर अधिकारियों के साथ मीटिंग की। जीरो में रेस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म पीआईबी ने फेक न्यूज फैक्ट चेकिंग वेरिफिकेशन और मीडिया लिटरेसी पर बर्टलाव प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। यूथ और एंटरप्रेन्योरशिप गवर्नर केटी परनाइक ने अरुणाचल के युवाओं से इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप और टेक्नोलॉजी बेस्ड वैल्यू एडिशन को अपनाने की बात की। ईस्ट सियांग के महबू में क्लास 9 से लेकर 12 के स्टूडेंट्स के लिए कुछ साइंस और एग्जीबिशन प्रोग्राम आयोजित किया गया। प्रोग्राम की टीम थे हिमालयन बायोडायवर्सिटी पर क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट। और जीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक के दौरान वॉलेंटरी ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया गया। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में 53 यूनिट्स ब्लड कलेक्ट किया गया। 75 डोनर्स ने पार्टिसिपेट किया और टवांग बैडमिंटन एसोसिएशन ने ग्रेटर कामंग बैडमिंटन टूर्नामेंट से पहले ऑफिशियल जर्सी लॉन्च की। टूर्नामेंट 29 सितंबर से सेपा में स्केड्यूल्ड है। दोस्तों ये थे अरुणाचल टाइम्स के कुछ मुख्य समाचार। अब चलिए कार्यक्रम में आगे चलते हैं और सुना रहे हैं आपको बेहतरीन फिल्मी सॉन्ग्स फ्रॉम द फिल्म किस्मत कनेक्शन। और गीत के बोल है बाखुदा, और इस गीत को आवाज दी है अतीब असलम, प्रीतम चक्रवर्ती और अलका याग्निक ने।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Pay Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per liter in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
3: Get attractive offers up to ₹55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
4: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है कार्यक्रम मॉर्निंग एंटरटेनमेंट में। और दोस्तों, कार्यक्रम में आप सुन रहे थे गीत किस्मत कनेक्शन फिल्म से, और अब आपके लिए पेश कर रहे हैं यस बॉस फिल्म से गीत। गीत के बोल है एक दिन आप, और इस गीत को आवाज दी है कुमार शानू और अलका याग्निक ने।

दोस्तों इस गीत के साथ ही कार्यक्रम मॉर्निंग एंटरटेनमेंट यहीं पर समाप्त होते हैं और अब से कुछ पलों में आप सुनेंगे तागिन श्रोताओं का समाचार।

si All India Radio Station Itanagar silugay tayin program nga magkogay layin nga bintam gay na si yangaray. Lower Subansiri District ka Zero lo muyo lo ka Zero Music Festival nga sobam jitu ko. Arunachal Pradesh nga Governor K.T. Parnayak so festival nga muyo attend jila manang-manang nga at chileba harte kinula rito ko. Ho coaching ba governor ni may bimpa kunam nga India lo si je kay yachok ba Zero Music Fest nga sobam jitu ko. Chungo do go lo ka ni dede ajila so festival nga attendu ba o ka local dungne dede nga aleba marko ayin ugu ka padu ba si alanago ako ridung jitu ko ala pimpa lindu ko. Ho coaching ba governor ni may Nara Aba Winery ka founders Mrs. Tage Rita Take nga ka Hong Nampam lo pamisula gam nga rotam bintam jipa ko ala bimpa lindu ko. St. Claret College ka Department of Mass Communication Major Paper lane de de galakob PIB Press Information Bureau Itanagar kilo gam ugo Rami Suduba Responsive Journalism Informed Citizen Oka Nasha Mukt Bharat for Better Society Team nga Purbing Jipako alabim patuko. So program loka fact check क्रॉस चेक ओके मीडिया लिटरेसी ग अरालोक गाम गा रोतम बिंतम जिपको अला बिंपादु को राष्ट्र पोषण मा 2026 के अरालोक ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट आदि आंगन का उत्सव अको इनोग्रेट सेशन ब ऑर्गेनाइज जिपको अला बिंपालिंदु को हो कोचिंग पे पासीघाट लो स्टेक होल्डर्स दे दे गलको ब मिशन वात्सल्य ओक मिशन शक्ति ग अरालोक मीटिंग गो आको दुंगपाम गो पाम्बम जीतुकु अलाबिम पादुको सो प्रोग्राम लो डेप्यूटी कमिश्नर ओक केबी डिग्निटरीज आदि पार्टिसिपेट जिला वेलफेयर स्कीम गा अलब पामोदुब गाम गा रोतम जीतुको Government of Arunachal Pradesh ke Rural Development and Panchayati Raj Minister Oka Siang Upper Multipurpose Project High Level Committee ke Chairman Berina Mr. Ojing Tasing Muyu Inkyong ke DC Conference Hall lo Head of Departments Administrative Officers Oka Paramilitary Officers ke lakob meeting go Dungpam go Pambam Jila Officers de nga Ni anti-dam supporters dede nga aleba miala oka communicate jila ribolo alere ala bimpatuko. Chief Justice of India Justice Surya Kant bimpakunam nga sijelo de ni adi atuboga legal rights nga chima pama ne dungduko. Olaga ba sijelo ka legal assistant nga easily available duba. Legal support system nga si ridong jituko ala bimpatuko. So support system si Bihar ga State Legal Service Authority campus lo mipa ko ala bimpa lindu ko. Japan lo ridung dune Asian Games 2026 lo India ga marathon runner. Sawan Barwal men's marathon event lo silver medal papa ko ala bimpa lindu ko. Ho ga chung ba men's kabaddi लो ईरान लो का 40x34 ब ईरान इंडिया गोल्ड मेडल गा या पको अला बिंपा लिंदु को यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ग नेशन वाइड बैंक स्ट्राइक रिदु ब प्रपोज नम लगा ब फाइनेंस मिनिस्टर लो का बिंपा को नाम गा सिलु संडे आलो लो पब्लिक ओक रीजनल रूरल बैंक्स दे दे आदि कुलीला का अला ऑर्डर गा जी लिंदु को हो लगा वह बुनु बैंक्स उगु इमरजेंसी काम दुंग बोलो सिलुनी रिमेलक अला बिंपातुको सिलुगे ताइनिंग बिंसे का हर्बो

दोस्तों मैं आप सुन रहे थे थागिन श्रोताओं का समाचार। ये आकाशवाणी का अरुण एफएम है, जहां होती है दिल से दिल की बात। और दोस्तों आपके लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार। दोस्तों कार्यक्रम सदाबहार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस सेगमेंट पर आप सुनेंगे बेहतरीन पुराने गीत और साथ ही आप को अपडेट्स मिलेंगे वेदर की। और चलिए कार्यक्रम में इससे सबसे पहले गीतों से पहले हम नजर रखते हैं आज की वेदर रिपोर्ट्स की। दोस्तों आज राजधानी ईटानगर में मौसम के लिए आईएमडी के फोरकास्ट के मुताबिक पार्टली क्लाउडी रहने की संभावना है। मिनिमम टेम्परेचर लगभग 24 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा। आईएमडी ने इस दिन कोई वेदर वार्निंग नहीं दी है। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में मौसम ज्यादातर बादल वाला रहेगा और कुछ जगहों पर बारिश थंडरस्टॉर्म की संभावना है। आईएमडी के लेटेस्ट अवेलेबल फोरकास्ट में 27 सितंबर के दौरान अरुणाचल में आइसोलेटेड स्केटर्ड रेनफॉल की संभावना बताई गई है। आज का ओवरऑल हाल हम देखें तो वेस्टर्न और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना, पापुम्परे बादल और कभी कभी बारिश की संभावना। ईटानगर के लिए आईएमडी ने 27 सितंबर यानी आज के दिन 34 डिग्री सेल्सियस और नो वार्निंग दिया है। इस कमेंग कुरुंगो में और आसपास के आइसोलेटेड एरियाज में थंडरस्टॉर्म और बारिश की संभावना। अपर सियांग दिबांग वैली और लोहित में कुछ एरियाज में हल्की से बारिश की संभावना और टिराब लोंगडिंग और चांगलांग में बादल के साथ शावर्स और थंडरस्टॉर्म की संभावना है। तो दोस्तों ये थे वेदर के अपडेट्स और चलिए कार्यक्रम में आगे चलते हैं और आपके लिए पेश कर रहे हैं रेट्रो सॉन्ग्स फ्रॉम द फिल्म अम्मीली। दोस्तों गीत के बोल है मैंने कहा फूलों से और इस गीत का आवाज दी है लता मंगेशकर ने।

दोस्तों, इस गीत के बाद अब कार्यक्रम सदाबहार में आपके लिए पेश कर रहे हैं नूर इफ़म से गीत। दोस्तों, गीत के बोल हैं आचार्य और इस गीत का आवाज दी है लता मंगेशकर और नितिन मुकेश ने। दोस्तों, ये फिल्म रिलीज हुई थी 1979 में और ये हिंदी सिनेमा की एक यादगार रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। इसमें फारूक शेख और पूनम ढिल्लों लीड रोल्स में हैं। नूरी और यूसुफ की लव स्टोरी फिल्म का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है। फिल्म की शूटिंग और कहानी माहौल कश्मीर की नेचुरल ब्यूटी को बहुत अच्छे से दिखाता है। दोस्तों, 1970s का रोमांटिक अंदाज फिल्म में रोमांस को सिंपल, इमोशनल और मेलोडियस तरीके से प्रेजेंट किया गया है। फिल्म आज भी फारूक शेख, पूनम ढिल्लों की जोड़ी और अपने म्यूजिक के लिए याद की जाती है।

0: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per litre. Smart Play Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, next gen K Series 1.0 litre dual jet, dual VVT engine, and spacious interiors.
1: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
2: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
3: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
2: और लाइट बिल के
3: अब 0 रुपए कैसे दूं?
2: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है कार्यक्रम सदाबहार में। और कार्यक्रम में अब आपके लिए पेश कर रहे हैं गीत द ग्रेट गैम्बलर फिल्म से। ये केवल है दो लफ्जों की और इस गीत को आवाज दी है अमिताभ बच्चन, आशा भोसले और शरद कुमार ने।

दोस्तों इसी के साथ ही कार्यक्रम सदाबहार यहीं पर समाप्त होते हैं और अब से कुछ पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज और शिलांग केंद्र से प्रसारित समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सभी युद्धग्रस्त देशों से मौजूदा संघर्षों के दौरान तनाव कम करने और ऊर्जा तथा व्यापारिक मार्गों से सुरक्षित आवागमन जारी रखने का आह्वान किया। रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के दावे का पुरजोर समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आज खुले रहेंगे। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट, खराब मौसम के बीच चार धाम यात्रा स्थगित। और भारत वेस्टइंडीज के बीच 3 मैच की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला आज दोपहर तिरुवनंतपुरम में। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि मौजूदा संघर्षों के बीच सभी पक्ष संयम बरतें, तनाव कम करें और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए

0: डॉक्टर जयशंकर ने सभी युद्धग्रस्त देशों से मौजूदा संघर्षों के दौरान तनाव कम करने और ऊर्जा तथा व्यापारिक मार्गों से सुरक्षित आवागमन जारी रखने का आह्वान किया। एक रिपोर्ट।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष का जिक्र करते हुए कहा कि ये युद्ध अब भी अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संघर्ष समाप्त करने के आह्वान को दोहराया। उन्होंने वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमलों को अस्वीकार्य बताया। आतंकवाद पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत को आतंकवाद से अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। उन्होंने सीमा पार आतंकवाद को वैश्विक व्यवस्था के लिए सीधी चुनौती बताया और आतंकवाद के वित्त पोषण पर रोक लगाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
2: आतंकवाद शांति के लिए लगातार खतरा बना हुआ है। अगर इसे किसी देश का समर्थन हासिल हो और इसका मकसद सीमा पार हमले करना हो तो ये वैश्विक व्यवस्था के लिए सीधी चुनौती बन जाता है। ऐसी गतिविधियों में शामिल सरकारों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। आतंकवाद के प्रति कड़ी नीति में कोई ढील नहीं दी जानी चाहिए। खासकर इसके वित्तीय पहलुओं का पर्दाफाश किया जाना चाहिए और उन्हें रोका जाना चाहिए।
1: श्री जयशंकर ने कहा कि ग्लोबल साउथ के सामने खाद्य, ईंधन, उर्वरक और वित्त से संबंधित बड़ी चुनौतियां हैं। उन्होंने बताया कि भारत 78 देशों में करीब 600 विकास परियोजनाओं में सहयोग कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि हर देश को अपनी जरूरतों के अनुसार AI विकसित करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
0: रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि रूस सुरक्षा परिषद में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के पक्ष में है। रूस भारत और ब्राजील को स्थायी सदस्य बनाए जाने का समर्थन करता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद प्रादेशिक भाषाओं में भी इसे प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पहल के जरिए इस सपने को कैसे वास्तविकता में बदला गया है। एक रिपोर्ट।
3: तमिलनाडु देश के प्रमुख सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME राज्यों में से एक है। राज्यों में कारोबारी एक ही पोर्टल से अलग अलग विभागों से जरूरी मंजूरियां ले सकते हैं। MSME के विकास के लिए राज्य में अलग मंत्रालय भी है। MSME क्षेत्र देश की GDP में करीब 31% का योगदान देता है और कृषि के बाद रोजगार देने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। कोयम्बटूर में विनिर्माण, कपड़ा और इंजीनियरिंग से जुड़े 80,000 से अधिक पंजीकृत MSME हैं। कोयम्बटूर के लीड बैंक के जिला प्रबंधक कार्तिकेय ने आकाशवाणी को बताया कि मुद्रा योजना शुरू होने के बाद जिले के उद्यमियों ने कारोबार और उत्पादन बढ़ाने में काफी रुचि दिखाई है। उन्होंने कहा कि मुद्रा योजना की 4 श्रेणियों में मिलने वाले ऋण से उद्यमियों को कारोबार बढ़ाने और वित्तीय जरूरतें पूरी करने में मदद मिली है। तमिलनाडु में कुल 7,59,847 सूक्ष्म, 1,01,861 लघु और 2,818 मध्यम उद्योग पंजीकृत हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी मोबाइल फोन 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
5: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए आज सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। एक रिपोर्ट।
6: यह निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रविवार को सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, एटीएम लिंक शाखाओं और बैंकों तथा एटीएम के लिए नकदी हेतु करेंसी चेष्टों की पूरी तरह से चालू रखने की स्वीकृति दी है। इस बीच सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने हड़ताल के दौरान एटीएम से निःशुल्क मासिक सीमा से अधिक बार लेन देन का शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। समाचार कक्ष से मैं इशिका।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज केरलम जाएंगे। इस दौरान वे कोल्लम में अमृतानंदमयी मठ में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति का दोपहर में बालारामपुरम में श्री उत्तराडोम थिरुनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के मुद्दे को लेकर विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। श्री नवीन ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि एसआईआर का निर्णय आयोग ने सर्वसम्मति से लिया है। आज विश्व पर्यटन दिवस है। इस वर्ष विश्व पर्यटन दिवस का विषय है पर्यटन को नए रूप में विकसित करने के लिए डिजिटल एजेंडा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये थीम पर्यटन के भविष्य को आकार देने में तकनीक की भूमिका पर जोर देती है। एक रिपोर्ट।
7: भारत का पर्यटन क्षेत्र देश की आर्थिक तरक्की, रोजगार और लोगों की आजीविका का महत्वपूर्ण साधन बन गया है। देश की जीडीपी में पर्यटन का 5% से अधिक योगदान है। साल 2025 में भारत में घरेलू पर्यटकों की संख्या 428 करोड़ से अधिक हो गई है, जबकि विदेशी पर्यटकों की संख्या 2 करोड़ 50 लाख से अधिक हो गई है। भारत ने डिजिटल पर्यटन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ई वीजा और इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसी सुविधाएं शुरू की गई है। भारत ने 2014 में ई वीजा की शुरुआत की थी, जिससे विदेशी पर्यटकों के लिए भारत आना आसान हो गया है। इस समय 172 देशों के नागरिकों को यह सुविधा उपलब्ध है। नई दिल्ली में आज होने वाले मुख्य कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर्यटन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई नई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। इन पहलों का उद्देश्य टिकाऊ और समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ पर्यटन के क्षेत्र में नए अवसर पैदा करना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश की आशंका है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के कारण आज चार धाम यात्रा स्थगित रहेगी। एक रिपोर्ट।
8: मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के सभी जिलों में गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली और तेज हवाएं चलने की संभावना है। हवाओं की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। पिछले 24 घंटों में उधम सिंह नगर और नैनीताल में सबसे अधिक वर्षा हुई। लगातार बारिश के बीच प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले हिस्सों में बर्फबारी भी हुई है। इस बीच मौसम की चेतावनी को देखते हुए राज्य में आपदा प्रबंधन तंत्र सतर्क है और संवेदनशील क्षेत्रों, नदी नालों तथा जल भराव वाले इलाकों पर निगरानी रखी जा रही है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम में अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से जारी मूसलाधार वर्षा से कई जिलों में सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 15 लोगों की मौत की खबर है।
9: गुरुवार से शुरू हुई मूसलाधार बारिश राजधानी लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, श्रावस्ती और इटावा समेत राज्य के कई हिस्सों में जारी है। 63 जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, जिससे जगह जगह जलभराव हो गया है और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राहत आयुक्त डॉक्टर ऋषिकेश भास्कर यशोद ने बताया कि पिछले 24 घंटों में राज्य में सामान्य से 19 गुना ज्यादा बारिश हुई है। भारी बारिश के कारण तापमान में भी भारी गिरावट आई है और फसलों, विशेष तौर पर गन्ना, धान और सब्जियों को काफी नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: उड़ीसा के कई हिस्सों में जारी मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति बनती जा रही है। नदियां

0: उफान पर हैं और निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: जी धन्यवाद जागृति। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज दोपहर 2 बजे से तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। दूसरा मैच 30 सितंबर को गुवाहाटी और तीसरा मुकाबला 3 अक्टूबर को न्यू चंडीगढ़ में होगा। इसके बाद दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की 2020 श्रृंखला भी खेली जाएगी। और जागृति अगर बात करें जापान में जारी एशियाई खेलों में, तो भारतीय पुरुष और महिला तीरंदाजी टीमों ने इस प्रतियोगिता में अपने अपने वर्गों के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पुरुषों की तिकड़ी साहिल जाधव, गणेश मणिरत्नम और कुशल दलाल ने भूटान को करीबी अंतर से हराकर दक्षिण कोरिया के खिलाफ सेमीफाइनल में प्रवेश किया। महिलाओं की टीम चिकिता तनिपार्थी, ज्योति सुरेखा वेन्नम और प्रतिका प्रदीप ने कजाकिस्तान को हराकर दक्षिण कोरिया के खिलाफ सेमीफाइनल में जगह पक्की की। महिलाओं के शॉर्टबोर्ड स्पर्धा में भी शुगर शांति गायन और कमाली प्रकाश दोनों तीसरे दौर में पहुंच गई हैं। भारत ने अब तक एशियाई खेलों में 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य पदकों सहित कुल 30 पदक जीते हैं।
0: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के डेरा इस्माइल खान जिले में कल एक विस्फोट में 12 लोगों की मौत हो गई और 35 घायल हो गए। तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी ने हमले की जिम्मेदारी ली है। और आज की समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। जनसत्ता ने निर्वाचन आयोग की बैठक को प्रमुखता दी है। विशेष गहन पुनरीक्षण के सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए। दैनिक भास्कर ने डिफेंस रिफॉर्म शीर्षक से लिखा है, रक्षा सौदों की मंजूरी में लगने वाले समय को घटाने की तैयारी में सरकार, छोटे रक्षा सौदों को कैबिनेट से छूट पर विचार। दैनिक जागरण ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के बयान को प्रमुखता दी है। पाकिस्तान आतंकवाद का सीरियल प्रैक्टिशनर, कहा पश्चिम एशिया में व्यापारिक जहाजों और नाविकों को निशाना बनाना अस्वीकार्य। जापान एशियाई खेलों में भारत के प्रदर्शन पर हिंदुस्तान ने गर्व शीर्षक से शब्द दिए हैं। कबड्डी में भारत को 2 स्वर्ण, निशानेबाज और एथलीट भी चमके। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है, कबड्डी में भारत का सोने पर सुहागा। राजस्थान पत्रिका ने विश्व पर्यटन दिवस पर विशेष खबर दी है, नींद, खामोशी, नो फोन और गांव की धीमी जिंदगी बनी लोगों की नई मंजिल। पहले दुनिया देखने निकले थे, अब दुनिया से दूर होने, मन की शांति के लिए करते हैं यात्रा। नवभारत टाइम्स ने स्वास्थ्य के नजरिए से एक शोध प्रकाशित किया है, चाय के साथ रोज 100 ग्राम नमकीन बना सकती है बीमार। पैकेज चिप्स, नमकीन, इंस्टेंट नूडल्स, मीठे फ्लेवर्ड ड्रिंक्स और प्रोसेस्ड मीट में कैलोरी ज्यादा है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सभी युद्धग्रस्त देशों से मौजूदा संघर्षों के दौरान तनाव कम करने और ऊर्जा तथा व्यापारिक मार्गों से सुरक्षित आवागमन जारी रखने का आह्वान किया। रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के दावे का पुरजोर समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आज खुले रहेंगे। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। खराब मौसम के बीच 4 धाम यात्रा स्थगित। और भारत वेस्टइंडीज के बीच 3 मैच की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला आज दोपहर तिरुवनंतपुरम में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Saira Mujtaba. The headlines. External Affairs Minister S. Jayashankar calls upon all warring nations to de-escalate tensions and keep energy and trade routes open during ongoing conflicts. Russia strongly backs India's claim for permanent seat in UN Security Council. Prime Minister Narendra Modi to share his thoughts in Mann Ki Baat program on Akashvani at 11 a.m. today. All public sector banks and regional rural banks to remain open today for convenience of customers. IMD issues red alert for very heavy rainfall in Uttarakhand. Char Dham Yatra suspended in view of adverse weather conditions. And in men's cricket, first one-day international 3-match series between India and West Indies to be played in Tiruvananthapuram this afternoon. And now the news in detail. India has called upon all parties to exercise restraint, de-escalate tension.

0: श्रोता भी आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र और शिलांग केंद्र से प्रसारित समाचार। ये आकाशवाणी का अरुण एफएम है, जहां होती है दिल से दिल की बात। और दोस्तों, अब से कुछ पलों में आपके लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम हेलो ईटानगर।
1: हेलो ईटानगर।

दोस्तों कार्यक्रम हेलो ईटानगर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जी हाँ, इस सेगमेंट पर आप मेरे साथ जुड़ेंगे, कुछ खास इन्फॉर्मेशन आज के दिन से जुड़ी और सुनवाएंगे कार्यक्रम में आपको बेहतरीन फिल्मी सॉन्ग्स। उससे पहले चलिए कार्यक्रम में हम नजर रखते हैं आज के दिन भारत के इतिहास में क्या हुआ और क्यों खास है आज का दिन। दोस्तों आज ही के दिन भारत के इतिहास में 1907 को शहीद भगत सिंह का जन्म बंगालयालपुर यानी अब पाकिस्तान में हुआ था। वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक थे और आज ही के दिन 1833 को समाज सुधारक राजा राम मोहन रॉय का ब्रिस्टल इंग्लैंड में निधन हुआ। उनका योगदान सामाजिक और शैक्षणिक सुधारों में महत्वपूर्ण रहा। दोस्तों आज के दिन 1781 में हैदर अली और ब्रिटिश सेना के बीच सालंगपुर की लड़ाई का उल्लेख इतिहास में मिलता है। दोस्तों आज का एक और खास दिन है वर्ल्ड टूरिज्म डे, यानी आज ही के दिन 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है। इस दिन का संबंध 1970 में UNWTO के स्टेटस को अडॉप्ट किए जाने से है और पहली बार इसे 1980 में मनाया गया था। दोस्तों इस साल 2026 में इसका थीम डिजिटल एजेंडा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू रीडिजाइन टूरिज्म है, जिसमें टूरिज्म में टेक्नोलॉजी और AI की बढ़ती भूमिका पर जोर दिया गया है। दोस्तों अब कार्यक्रम में हम चलिए आगे चलते हैं और आपके लिए पेश कर रहे हैं फिल्मी सॉन्ग्स और उसके बाद हम वर्ल्ड टूरिज्म डे के बारे में और विस्तार से जानेंगे। अब आपके लिए पेश कर रहे हैं गीत गैंगस्टर फिल्म से, गीत के बोल है लम्हा और इस गीत को आवाज दी है अभिजीत भट्टाचार्य ने।

दोस्तों आप सुन रहे थे ये गीत गैंगस्टर फिल्म से। अब चलिए कार्यक्रम में हम आगे चलते हैं और बातें करते हैं वर्ल्ड टूरिज्म डे के ऊपर। दोस्तों आज वर्ल्ड टूरिज्म डे यानी विश्व पर्यटन दिवस है, हर साल 27 सितंबर को मनाया जाता है। इसका मकसद टूरिज्म की इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल और एनवायरमेंटल इम्पोर्टेंस के बारे में दुनिया में अवेयरनेस बढ़ाना है। वर्ल्ड टूरिज्म डे की शुरुआत कैसे हुई चलिए जानते हैं। दोस्तों 27 सितंबर 1970 को वर्ल्ड टूरिज्म डे ऑर्गेनाइजेशन के स्टेटस अडॉप्ट किए गए थे। इसी तारीख को बाद में वर्ल्ड टूरिज्म डे के लिए चुना गया। पहली बार 1980 में वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया गया। इस दिन टूरिज्म को सिर्फ घूमने फिरने के रूप में नहीं बल्कि रोजगार, लोकल कम्युनिटीज, कल्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जुड़े सेक्टर के रूप में समझा जाता है। और दोस्तों इस साल की टीम है डिजिटल एजेंडा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू रीडिजाइन टूरिज्म, यानी डिजिटल टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के जरिए टूरिज्म को नए तरीके से बदलना। इस टीम का मतलब है कि एआई और डिजिटल टेक्नोलॉजी टूरिज्म में कई तरह से बदलाव ला सकती है। टूरिस्ट अपनी ट्रिप को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और एआई की मदद से प्लान कर सकते हैं। एआई डेस्टिनेशन, होटल, ट्रांसपोर्ट और एक्टिविटीज के बारे में पर्सनलाइज्ड इन्फॉर्मेशन देने में भी मदद कर सकता है। दोस्तों डिजिटल टेक्नोलॉजी से नए और कम जाने पहचाने टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को प्रमोट करने में भी आसान हो सकता है और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल टूरिज्म को ज्यादा सस्टेनेबल बनाने और डेस्टिनेशंस को बेहतर मैनेज करने में किया जा सकता है। लोकल कम्युनिटीज के लिए टूरिज्म से एम्प्लॉयमेंट और लाइवलीहुड के नए अपॉर्चुनिटीज भी बन सकते हैं। दोस्तों भारत में टूरिज्म का संबंध हेरिटेज, पिलग्रिमेज, नेचर टूरिज्म, कल्चर, लोकल हैंडीक्राफ्ट्स और एम्प्लॉयमेंट से है। 2026 में इंडिया वर्ल्ड टूरिज्म डे के मौके पर डिजिटल टूरिज्म को भी प्रमोट कर रहा है, जिसमें नेशनल डिजिटल टूरिज्म स्टैक और देखो अपना प्रदेश 2.0 जैसे इनिशिएटिव्स शामिल हैं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27

0: सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है कार्यक्रम हेलो ईटानगर में। और कार्यक्रम में आपके लिए पेश कर रहे हैं गीत दावत ए इश्क फिल्म से, और इस गीत को आवाज दी है सलमा अली कौर कादे ने।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि मौजूदा संघर्षों के बीच सभी पक्ष संयम बरतें, तनाव कम करें और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने सभी युद्धग्रस्त देशों से मौजूदा संघर्षों के दौरान तनाव कम करने और ऊर्जा तथा व्यापारिक मार्गों से सुरक्षित आवागमन जारी रखने का आह्वान किया। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि रूस सुरक्षा परिषद में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमरीका का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के पक्ष में है। रूस भारत और ब्राजील को स्थायी सदस्य बनाए जाने का समर्थन करता है। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए आज सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। रिजर्व बैंक ने रविवार को सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, एटीएम लिंक शाखाओं, बैंक तथा एटीएम के लिए नकदी हेतु करेंसी चेस्ट को पूरी तरह से चालू रखने की स्वीकृति दी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज केरलम जाएंगे। इस दौरान वे कोल्लम में अमृतानंदमयी मठ में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति का दोपहर में बालारामपुरम में श्री उत्तराडोम थिरुनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के मुद्दे को लेकर विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। श्री नवीन ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि एसआईआर का निर्णय आयोग ने सर्वसम्मति से लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद प्रादेशिक भाषाओं में भी इसे प्रसारित किया जाएगा। आज विश्व पर्यटन दिवस है। इस वर्ष का विषय है पर्यटन को नए रूप में विकसित करने के लिए डिजिटल एजेंडा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये थीम पर्यटन के भविष्य को आकार देने में तकनीक की भूमिका पर जोर देती है। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से हो रही मूसलाधार वर्षा से कई जिलों में सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 15 लोगों की मृत्यु हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रभावित जिलों के जिलाधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने और प्रभावित लोगों को तत्काल राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। उधर उत्तराखंड में लगातार बारिश के कारण आज चार धाम यात्रा स्थगित रहेगी। मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी और पौड़ी के लिए तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश की आशंका है। विभाग ने बताया है कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, मध्य प्रदेश और पंजाब में बिजली गिरने की आशंका है। ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति बनती जा रही है। नदियां उफान पर हैं और निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। जापान एशियाई खेलों में स्क्वाश स्पर्धा में अनाहत सिंह और अभय सिंह का मुकाबला मलेशिया के खिलाड़ियों से होगा। एथलेटिक्स में तेजस्विन शंकर, एनसी जो सोजन, पारुल चौधरी और शैली सिंह चुनौती पेश करेंगे। हॉकी में भारतीय महिला टीम सिंगापुर से खेलेगी। बैडमिंटन में पीवी सिंधु और भारतीय मिक्स्ड जोड़ी पदक से एक जीत दूर है। तीरंदाजी, मुक्केबाजी, भारोत्तोलन और तलवारबाजी में भारत को पदक की उम्मीद है। भारत ने अब तक प्रतियोगिता में 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 30 पदक जीते हैं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला आज दोपहर 2 बजे से तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोता भी आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी का अरुण एफएम है, जहां होती है दिल से दिल की बात। और दोस्तों, अब आपके लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्मी गपशप। कार्यक्रम फिल्मी गपशप में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस सेगमेंट पर आप जुड़ेंगे मेरे साथ फिल्मी खबरों और बेहतरीन फिल्मी सॉन्ग्स के साथ। जी हाँ, तो चलिए कार्यक्रम को शुरू करने से पहले हम नजर रखते हैं आज के बॉलीवुड अपडेट्स पर। दोस्तों, आज की बॉलीवुड अपडेट्स में नई फिल्म्स और रिलीजेस की द वन पोर्स ऑफ द पोर्स सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की फैंटेसी थ्रिलर 25 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज हुई। कहानी इंडियन फोकलोर और मिस्टीरियस पोर्स के अराउंड है। फिल्म को रिव्यूज में मिक्स रिस्पॉन्स मिला है और करीना कपूर और प्रीति जिंटा की फिल्म दायरा सितंबर रिलीजेस में शामिल है। ये क्राइम थ्रिलर जेनर की फिल्म है और डोंट बी शाय आलिया भट्ट के प्रोडक्शन से जुड़ी कमिंग ऑफ एज रोमांटिक कॉमेडी 25 सितंबर को प्राइम वीडियो पर आई। हुंगा द रोर, अनित पद्दा, फतिमा सनाशे और रघुबीर यादव वाली क्राइम ड्रामा सीरीज जो हॉटस्टार पर रिलीज हुई है। दोस्तों, बॉलीवुड गॉसिप्स और एंटरटेनमेंट के अपडेट्स में आलिया भट्ट लव एंड वॉर, संजय लीला बंसाली की लव एंड वॉर से आलिया भट्ट का नया लुक रिसेंटली डिस्कशन में रहा। जिनेद अमान ने भी उनके कैबरेट टीम्ड फर्स्ट लुक पर रिएक्शन दिया। शाहरुख खान, मेहुना, फराह खान ने मेहुना सीक्वल को लेकर बात की है, जिसकी वजह से फैंस के बीच डिस्कशन चल रहा है। आमिर खान, उन्हें सिंगापुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीन आइकन अवार्ड मिलने की रिपोर्ट आई है। बिग बॉस 20 सलमान खान के वीकेंड का वार एपिसोड और कंटेस्टेंट से जुड़ी डेवलपमेंट्स एंटरटेनमेंट न्यूज में काफी डिस्कशन हो रही है। बॉक्स ऑफिस के कुछ बड़ी खबरें, मिर्जाफर द मूवी के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन पर लेटेस्ट रिपोर्ट्स में 325 करोड़ से ज्यादा का फिगर दिया गया है, जबकि हनुमान अंश ने 50 डेज कम्प्लीट करने की रिपोर्ट है। अब चलिए दोस्तों, कार्यक्रम फिल्मी गपशप में आगे चलते हैं और पेश कर रहे हैं आपके लिए फिल्मी सॉन्ग्स फ्रॉम द फिल्म और रोमियो। गीत के बोल है आशिकों की कॉलोनी और इसकी को आवाज दी है विशाल भारद्वाज, मधुवंती बख्शी और जावेद अली ने।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
4: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
3: बन गया बजट?
4: हाँ,
3: 5000 बच गए।
4: तो नई साड़ी ले ले।
3: ना,
4: पिछले महीने तो ली थी।
3: एक और
4: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
3: बढ़िया,
4: जाओ भाई।
5: RBI कहता है,
6: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
7: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio 50.

0: 9+ safety features, including 6 airbags, next-gen K-Series 1.0-liter dual jet, dual 50 engine and spacious interiors.
1: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
2: दोस्तों ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है कार्यक्रम फिल्मी गपशप में. और चलिए कार्यक्रम में अब आपके लिए पेश कर रहे हैं और एक बेहतरीन गीत फ्रॉम द फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया जाए. हाँ दोस्तों, इस फिल्म की टाइटल ट्रैक आपको सुना रहे हैं और इस टाइटल ट्रैक को आवाज दी है अजीज कौर, राघव और तनिष बख्शी ने.

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है कार्यक्रम फिल्मी गपशप में। और ब्रेक से पहले आप सुन रहे थे गीत तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फिल्म से गीत। और दोस्तों, अब कार्यक्रम में आपके लिए पेश कर रहे हैं अपने प्रदेश की शान रेत और रिबा की और हंसिका पारिक के गीत आया नाम। जी हाँ दोस्तों, ये गीत रिलीज हुई थी 24 अगस्त 2026 को। रितो रिबा इसके कंपोजर हैं और लिरिक शाहिल ने लिखे हैं। गाने में गालो लैंग्वेज लिरिक्स का भी हिस्सा है। दोस्तों, इसके गीत की खास बातें, प्योर रोमांटिक फील, गाना गहरी मोहब्बत, अपनापन और किसी खास इंसान के साथ जिंदगी पूरी होने की फीलिंग को बयां करता है। रितो रिबा की आवाज, उनकी सॉफ्ट और इमोशनल सिंगिंग गाने को इंटीमेट रोमांटिक मूड देती है। और हंसिका पारिक के साथ रितो रिबा की फेयर इन गाने को कन्वर्सेशनल लव सॉन्ग जैसा फील देती है। दोस्तों, शुरुआत और कुछ पोर्शंस में गालो लिरिक्स का यूज है, जबकि मेन रोमांटिक वर्सेस हिंदी में है। इस गाने को नॉर्थ ईस्ट इंडिया की कल्चरल आइडेंटिटी का टच मिलता है। तो चलिए, आपके लिए पेश कर रहे हैं रितो रिबा के गीत आया नाम।

0: superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
3: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है कार्यक्रम फिल्मी गपशप में। और कार्यक्रम में आप सुन रहे थे गीत पुष्पा फिल्म से, और अब आपके लिए पेश कर रहे हैं ओम शांति ओम फिल्म से गीत। गीत के बोल हैं दीवानगी, और इस गीत का आवाज दी है शान, उदित नारायण, श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान और राहुल सक्सेना ने।

दोस्तों के साथ ही कार्यक्रम फिल्म गपशप यहीं पर समाप्त होते हैं और अब से कुछ पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह 138वीं कड़ी होगी। इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका प्रसारण होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद प्रादेशिक भाषाओं में भी इसे प्रसारित किया जाएगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज केरलम जाएंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति कोल्लम में अमृतानंदमयी मठ में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन दोपहर में बलरामपुरम में श्री उथराडोम थिरुनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में कई रेल परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री शाह साबरमती लोको शेड में नवनिर्मित WAG-12 लोकोमोटिव मेंटेनेंस शेड राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस अवसर पर श्री शाह उच्च क्षमता वाले WAG-12 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को भी रवाना करेंगे। इसके बाद श्री शाह साबरमती रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इस दौरान वे देश की पहली तरल प्राकृतिक गैस LNG से चलने वाली डेमू रेलगाड़ी को भी रवाना करेंगे। ग्राहकों की सुविधा के लिए आज सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक खुले रहेंगे। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। रिजर्व बैंक ने आज सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, ATM से संबद्ध शाखाओं और बैंकों तथा ATM के लिए नकदी हेतु करेंसी भंडार को पूरी तरह से चालू रखने की स्वीकृति दी है। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के मुद्दे को लेकर विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। श्री नवीन ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि SIR का निर्णय आयोग ने सर्वसम्मति से लिया था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मौजूदा संघर्ष के बीच सभी पक्षों से संयम बरतने, तनाव कम करने और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में कल डॉक्टर जयशंकर ने सभी युद्धग्रस्त देशों से मौजूदा संघर्ष के दौरान तनाव कम करने और ऊर्जा तथा व्यापारिक मार्गों से सुरक्षित आवागमन जारी रखने को कहा। उन्होंने सीमा पार आतंकवाद को वैश्विक व्यवस्था के लिए सीधी चुनौती बताते हुए आतंकवाद के वित्त पोषण पर

0: लगाने की आवश्यकता पर बल दिया। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोफ ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए श्री लैवरोव ने कहा कि रूस सुरक्षा परिषद में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमरीका का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के पक्ष में है। उन्होंने रूस, भारत और ब्राजील को स्थायी सदस्य बनाए जाने का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा परिषद में सुधार के अंतर्गत पश्चिमी देशों के लिए अतिरिक्त स्थायी सीट नहीं बढ़ाई जानी चाहिए। उन्होंने विकासशील देशों को अधिक प्रतिनिधित्व देने का समर्थन किया। आज विश्व पर्यटन दिवस है। इस वर्ष का विषय है पर्यटन को नए रूप में विकसित करने के लिए डिजिटल एजेंडा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यह विषय पर्यटन के भविष्य को आकार देने में तकनीक की भूमिका पर बल देती है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। राज्य में लगातार हो रही वर्षा से आज चार धाम यात्रा स्थगित रहेगी। हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज वर्षा की आशंका है। विभाग ने बताया कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, मध्य प्रदेश और पंजाब में भी गरज चमक के साथ वर्षा की आशंका है। उड़ीसा के कई हिस्सों में बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति बनती जा रही है। नदियां उफान पर हैं और निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। जापान एशियाई खेलों की स्क्वाश स्पर्धा में आज अनाहत सिंह और अभय सिंह का मुकाबला मलेशिया के खिलाड़ियों से होगा। एथलेटिक्स में तेजस्वी शंकर, एनसी सोजन, पारुल चौधरी और शैली सिंह चुनौती पेश करेंगे। हॉकी में भारतीय महिला टीम सिंगापुर से खेलेगी। बैडमिंटन में पीवी सिंधु और भारतीय मिक्स जोड़ी पदक से एक जीत दूर है। तीरंदाजी, मुक्केबाजी, भारोत्तोलन और तलवारबाजी में भी भारत को आज पदक मिल सकते हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Tanvi Khurana. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in his monthly radio program Mann Ki Baat on Akashvani at 11 a.m. today. It will be the 138th episode. The program will be broadcast across the entire Akashvani and Doordarshan network, the AIR news website and the news on AIR mobile app. Akashvani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. India has called upon all parties to exercise restraint, de-escalate tensions, ensure protection of civilians and uninterrupted flow of energy and commerce during ongoing conflicts. Addressing the UN General Assembly in New York last night, External Affairs Minister S. Jaishankar pointed out that the repercussions of wars are experienced far outside the borders of directly engaged nations. He said, hostilities continue to destabilize global security, threatening progress and slowing development far beyond their immediate regions. Dr. Jaishankar said, India is prepared to do everything possible to help improve the situation, particularly in the areas of food and energy security.
2: We remain deeply concerned over continuing hostilities. The targeting of commercial shipping and seafarers transiting international waterways is simply unacceptable. India calls upon all parties to exercise restraint, de-escalate tensions, ensure protection of civilians and uninterrupted flow of energy and commerce.
1: Russian Foreign Minister Sergei Lavrov has strongly backed India's claim for a permanent seat in the United Nations Security Council. In his address at UN General Assembly in New York last night, Mr. Lavrov said Russia is in favor of broadening the representation of Asia, Africa and Latin America, and Moscow supports India's and Brazil's candidatures for a permanent seat. He advocated for more seat allocation to the Global South and voiced strong support for India and Brazil. All public sector banks and regional rural banks will remain open today for the convenience of customers. This step has been taken in view of the proposed three-day nationwide bank strike called by the United Forum of Bank Unions from tomorrow. Reserve Bank of India has granted approval for all bank branches, offices, ATM link branches and currency chests to remain fully operational today. Meanwhile, several public sector banks have decided to waive ATM transaction charges above the free monthly limit during the three-day bank strike. Union Home Minister Amit Shah will participate in a series of key development programs in Ahmedabad today. He will dedicate the newly constructed WAG-12 locomotive maintenance shed to the nation at the Sabarmati Loco Shed. On this occasion, Mr. Shah will also flag off the high horsepower WAG-12 electric locomotive. Later in the day, Mr. Shah will reach the Sabarmati Railway Station to dedicate various station redevelopment projects to the public. In Uttarakhand, many parts of the state have been receiving rainfall over the past 24 hours. The Meteorological Department has issued a red alert for Dehradun, Tehri and Pauri, forecasting heavy to very heavy rainfall with extremely heavy rain at isolated places. Heavy rainfall is also likely in other parts of the state. Amid continued rainfall, the Chardham Yatra will remain suspended today. In Uttar Pradesh, continuous heavy rainfall has disrupted normal life with 15 people reportedly losing their lives so far. World Tourism Day is being observed across the globe today. The day highlights the importance of tourism in connecting people, fostering cultural exchange and supporting economic development. The theme for this year is Digital Agenda and Artificial Intelligence to Redesign Tourism. In men's cricket, first one-day international of the three-match series between India and West Indies will be played today at the Greenfield International Stadium in Thiruvananthapuram. The match will start at 2 p.m. IST. Both Rohit Sharma and Virat Kohli set to return to India's ODI lineup after a two-month break from this format. And that is the end of this news bulletin.

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: श्रोता अभी आप सुन रहे थे दिल्ली के से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी का अरुण एफएम है जहाँ होती है दिल से दिल के बाद, और प्रस्तुत है आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड।
1: रेडियो ऑन डिमांड सुबह के 10:10 से सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। जी हाँ दोस्तों, एसएमएस के जरिए भी आप अपने मनपसंद गीतों का रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं 9436887808 पर। जी हाँ, हमारा फोन नंबर है 9436887808। इस नंबर पर हमें आपके एसएमएस का इंतजार रहेगा।

दोस्तों, कार्यक्रम रेडियो अंजुमान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं हूँ आपके आरजे साथी दांपा। दोस्तों, आप अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट हमें जल्द से जल्द भेजिए ताकि हम अपनी आपकी फरमाइश पूरी कर सके। तो चलिए, देर न करते हुए कार्यक्रम में नजर रखते हैं सबसे पहला सॉन्ग रिक्वेस्ट की और इस वक्त हमें सॉन्ग रिक्वेस्ट भेजा है सरिहा जहान करवियांगलोंग असम से, जोगेंद्र इंटपी और दोनों कीरी रोंगपी ने, और लिखा है आज महान गायक महेंद्र कपूर जी की पुण्यतिथि है, श्रद्धांजलि के रूप में उनकी आवाज में गाना सुनवाने का कष्ट करें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जोगेंद्र जी और दोनों कीरी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दोनों ने रिक्वेस्ट किया है हमराज फिल्म से गीत की क्या बोल है तुम अगर साथ देने का वादा करो, और ये गीत वो डेडिकेट करते हैं अपने असम और अरुणाचल के सभी श्रोताओं को। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। पेश कर रहे हैं आप दोनों के फरमाइश पर ये गीत।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: एचआईवी के बारे में सही जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।
3: एचआईवी संक्रमित खून, असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई सिरिंज और माँ से बच्चे तक फैल सकता है।
2: लेकिन याद रखें, साथ बैठने, हाथ मिलाने, गले लगाने, साथ खाने या मच्छर के काटने से एचआईवी नहीं फैलता।
3: एचआईवी की जांच कराएं, समय पर पता चले तो इलाज से स्वस्थ और लंबा जीवन जिया जा सकता है।
2: एचआईवी से डरे नहीं, जानकारी बढ़ाए, जाँच कराए, भेदभाव मिटाए।
3: अधिक जानकारी के लिए नेशनल एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी DHS नाहरलगुन द्वारा जनहित में जारी।
4: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, KYC अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत KYC अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
8: दोस्तों मन की बात, आप सबका फिर से स्वागत है कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड में। और चलिए कार्यक्रम में हम और आगे चलते हैं और नजर रखते हैं सॉन्ग रिक्वेस्ट की ओर। इस वक्त हमें सॉन्ग रिक्वेस्ट आई है बहादुर जी से, नागालैंड से। और बहादुर जी ने सॉन्ग रिक्वेस्ट किया है फिल्म प्यार का रॉक से, और गीत के बोल है इस दिल पे है तेरा नाम, और इस गीत का आवाज दी है उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने। बहादुर जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। पेश कर रहे हैं कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड पे आपके रिक्वेस्ट पर ये गीत।

दोस्तों, इस गीत के बाद अब कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड में हमें रिक्वेस्ट आया है पासीघाट अरुणाचल से राज सोना जी से, और राज जी ने रिक्वेस्ट किया है सौदागर फिल्म से गीत। गीत के बोल है इलू इलू, और इस गीत को आवाज दी है कविता कृष्णमूर्ति, मनहर उदास और सुखविंदर सिंह ने। राज जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। पेश कर रहे हैं कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड में आपके रिक्वेस्ट पर ये गीत।

दोस्तों, इस गीत के बाद कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड में अब रिक्वेस्ट आया है हमारे रेगुलर लिस्नर से, हितेंद्र दास जी से। और हितेंद्र जी ने रिक्वेस्ट किया है गीत जूली जूली और फिल्म है जीते हैं शान से। आपको बता दूं कि इस गीत को आवाज दी है अनु मलिक और कविता कृष्णमूर्ति ने। हितेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। पेश कर रहे हैं कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड में आपके रिक्वेस्ट पर ये गीत।

0: हमको मैरी नहीं मांगता, हमको लेली नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता।
1: तो कौन मांगता?
0: ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली, तू ही तो मेरी जान है, जान है।

0: रिजेक्ट किया।
1: थैंक यू हनी, थैंक यू।
0: हमको लेली नहीं मांगता, हमको मैरी नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बांद्रा नहीं मांगता।
1: तो कौन मांगता?
0: ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया।

0: तो लेली नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बांद्रा नहीं मांगता,
1: तो कौन मांगता?
2: ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली।

दोस्तों, इस गीत के बाद कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड में रिक्वेस्ट आई है हमारे रेगुलर लिसनर से, अमल वसुमतारी जी से, असम से। और अमल जी ने रिक्वेस्ट किया है गीत फाल्गुनी पाठक की एल्बम से चोरी, और ये गीत वो डेडिकेट करते हैं अपने दोस्तों को, रमेश, लक्की, विमल, बाइकॉन गागे, अंजलि, अश्मिता, रूपाली, सुनीता बसुमतारी, मैनाऊ मेनू, कविता, कल्पना और कंचन हाजंग जी को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। पेश कर रहे हैं अमर बसुमतारी जी के फरमाइश पर ये गीत।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with Surround Sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per liter in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to ₹55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
3: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
6: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड में। और कार्यक्रम

मेरियोन जिमान में अब हमें रिक्वेस्ट आया है अर्जुन राभा जी से डिब्रूगढ़ असम से, और अर्जुन जी ने रिक्वेस्ट किया है गीत मासूम फिल्म से। ये क्या बोल है ये जो तेरी पायल, और इस गीत को आवाज दी है अभिजीत भट्टाचार्य और साधना सरगम ने। अर्जुन जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, पेश कर रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गीत।

माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का 128वीं कड़ी और जिसके तुरंत बाद आप सुनेंगे क्षेत्रीय गालो बोली में मन की बात का संस्करण। शायद आपको ये भी बता दूं कि हमारी से पहली प्रसारण सभा में साथ दे रहे थे प्रसारण निष्पादक पी दोले तथा तकनीकी अभियंता एचआर ब्रह्मा और आगे के सफर में आपसे जुड़ेंगे आरजे सोनी जी। शायद आपको फिर से बता दूं कि अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का 128वीं कड़ी और जिसके तुरंत बाद आप सुनेंगे क्षेत्रीय गालो बोली में मन की बात का संस्करण। और अब मुझे यानी अपना आरजे साथी दांपा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
1: The best of entertainment, information, education, अब आपकी एक उंगली के इशारे पर कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन।
5: कोई बोले राम राम।
4: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध। आराधना चैनल।

0: best of entertainment, information, education अब आपकी एक उंगली के इशारे पर कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें
3: पर्सनल लोन ऑफर
4: फिर से ब्लॉक करता हूं
3: फ्री ट्रिप टू दुबई
4: ये भी ब्लॉक कितना ब्लॉक करूं यार
5: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता हर बार नया नंबर आ जाता है
4: तो क्या करूं
5: कॉल उठाओ फिर ट्राई डीएनडी ऐप पर रिपोर्ट करो कैटेगरी सेलेक्ट करो बैंकिंग ट्रैवल इंश्योरेंस और सबमिट बस कुछ सेकंड्स का काम
4: मतलब सबका स्पैम कम होगा
5: हाँ रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है सिर्फ ब्लॉक नहीं रिपोर्ट जरूर करें ट्राई

0: PND app. Download now from Play Store or App Store and start reporting.
1: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
2: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
1: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
2: कहाँ से पता चलेगा?
1: उद्गम से। RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर कर लॉग इन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
3: आज ही सर्च करूंगा।
1: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
0: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे। तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
7: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात के सितंबर माह में फिर से एक बार आपको मिलने का अवसर मिल रहा है। मैं देश के सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मन की बात में हम देशवासियों के सकारात्मक प्रयासों को मंच देते हैं, देश की उपलब्धियों की बात करते हैं। भारत की ऐसी ही एक बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि को एक दिन बाद 10 साल होने जा रहे हैं। ये उपलब्धि है सर्जिकल स्ट्राइक की। 10 वर्ष पहले 28-29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। LOC के उस पार जाकर हमारे वीर जवानों ने जिस तरह आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की थी, वो देख दुनिया हैरान थी। सर्जिकल स्ट्राइक ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था। आतंकवादी हमलों के कारण भारत ने लंबे समय तक जो दर्द झेला था, सर्जिकल स्ट्राइक उस कष्ट के खिलाफ हमारी निर्णायक प्रतिक्रिया थी। बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। साथियों, आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। एक समय था जब भारत में सीरियल ब्लास्ट होना बहुत सामान्य बात हो गई थी। सितंबर के इस महीने में यानी 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में हुए सीरियल ब्लास्ट में अनेक निर्दोष लोग मारे गए थे। इसके कुछ सप्ताह बाद ही मुंबई में 26/11 का इतना बड़ा हमला हुआ था। साथियों, पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी, लेकिन उस पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता था। समय बीतने का इंतजार किया जाता था। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है और हम इसके नतीजे भी देख रहे हैं। साथियों, इस साल 9/11 के आतंकी हमले को भी 25 वर्ष हुए हैं। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जिन निर्दोष लोगों ने अपना जीवन खोया था, उनमें अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा लोग भारत के थे। मुझे याद है 2014 में PM बनने के बाद जब मैं अमेरिका गया था तो न्यूयॉर्क में मैं इन निर्दोष नागरिकों को अपनी श्रद्धांजलि देने पहुंच गया था और आज फिर एक बार मैं भारत के करोड़ों नागरिकों की ओर से पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, इन दिनों देश की एक बहुत बड़ी तस्वीर तैयार हो रही है। इस तस्वीर में आप भी हैं, आपका परिवार भी है, आपके अड़ोस पड़ोस के लोग भी हैं। मैं बात कर रहा हूं भारत की जनगणना की, देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में। इसका पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। 32 करोड़ से अधिक परिवारों की जानकारी दर्ज की जा चुकी है। इन दिनों लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के दुर्गम और बर्फीले इलाकों में भी ये काम चल रहा है। वहां से कई प्रेरक अनुभव हमारे सामने आए हैं। उत्तराखंड में जनगणना की शुरुआत चमोली के माणा गांव से हुई। माणा को देश का पहला गांव कहा जाता है। माणा में सबसे पहले 83 साल की पूर्णिमा रावत जी से इसकी शुरुआत हुई। उत्तरकाशी के बगोरी गांव में होमस्टे चलाने वाले हरदेव सिंह राणा जी ने डिजिटल माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज की। साथियों, जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है। साथियों, इसके लिए आपको जनगणना के ऑनलाइन पोर्टल पर जाना होता है। ये पोर्टल है sec.census.gov.in। इस पोर्टल पर जाकर आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कीजिए, अपना स्थान दर्ज कीजिए, अपने परिवार से जुड़ी जानकारी भरिए और उसे सबमिट कर दीजिए। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 15 से 20 मिनट का समय लगता है। इसके लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट भी अपलोड नहीं करना है। जानकारी सबमिट करने के बाद आपको एक विशेष आईडी मिलेगी। जब गणना कर्मी आपके घर आए तो आप उन्हें ये आईडी बता सकते हैं। आपके द्वारा दी गई जानकारी की पुष्टि होने के बाद वो जनगणना का हिस्सा बन जाएगी। साथियों, अब तक मोबाइल से 2,60,00,000 से ज्यादा लोग जनगणना पोर्टल पर अपनी जानकारी भर चुके हैं, स्वगणना कर चुके हैं। आपका भी इसमें थोड़ा सा समय खर्च होगा, लेकिन देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी सही जानकारी, आपके परिवार की सही जानकारी देश के भविष्य की सही तस्वीर तैयार करने में मदद करती है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज 27 सितंबर की यह तारीख एक विशेष कारण से और भी विशेष हो गई है। आज एक ऐसे महानुभाव की 100वीं जन्म जयंती है जिन्होंने संस्कृति, समाज और राष्ट्र के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। मैं बात कर रहा हूं विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्रद्धेय स्वर्गीय अशोक सिंहल जी की। 27 सितंबर 1926 को आज के ही दिन आगरा में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने समाज में रहकर तपस्वियों जैसा जीवन जिया। उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन को जो दिशा दी, जो ऊर्जा दी, आज उसी का परिणाम है कि हम अयोध्या में भव्य मंदिर को साक्षात देख रहे हैं। मेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है, मैंने न केवल उनके उस जीवन को करीब से देखा बल्कि मुझे उनके साथ इस मिशन से जुड़ने का भी अवसर मिला। जब मैं राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान में शामिल हो रहा था तब भी मुझे बार बार अशोक जी की याद आना बहुत स्वाभाविक था। साथियों, अशोक जी के बारे में ऐसी कितनी ही बातें हैं जिनकी उतनी चर्चा नहीं होती। राम मंदिर आंदोलन के साथ ही उन्होंने सामाजिक भेदभाव और विषमता के खिलाफ भी एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी। उनका जन्म एक बेहद समृद्ध परिवार में हुआ था। उनके पिता एक सिविल सेवा अधिकारी थे। उनके भाई बहनों में भी अधिकांश लोग बड़े बड़े पदों पर रहे। वे खुद भी आईआईटी बीएचयू से ग्रेजुएट थे, लेकिन इस सब के बावजूद उन्होंने समाज और संस्कृति के लिए अपना जीवन समर्पित किया। यही महान लोगों की पहचान होती है। आज मैं उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर उनके करोड़ों प्रशंसकों की ओर से उन्हें नमन करता हूं, मेरी तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, इस साल की शुरुआत हमने स्वाभिमान के एक महापर्व के साथ की थी। ये पर्व था सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। आज से 1000 साल पहले 1026 में मोहम्मद गजनी ने पहली बार सोमनाथ मंदिर को विध्वंस किया था। लेकिन जो लोग सोमनाथ को तोड़कर भारत की पहचान मिटाने आए थे आज उनका कोई वजूद भी

और सोमनाथ मंदिर पूरी भव्यता के साथ विशाल समुद्र के किनारे भारत को अमरता का आशीर्वाद दे रहा है। इसलिए हमने पूरे गर्व के साथ इस साल सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया। साथियों, ये चर्चा में आज मन की बात में फिर से क्यों कर रहा हूं, इसकी भी एक खास वजह है। 1026 ईस्वी में जब गजनी द्वारा सोमनाथ विध्वंस हुआ था, उसी साल गुजरात के ही मोढ़ेरा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर पर भी हमला हुआ था, उसे तोड़ा गया था। यानी मोढ़ेरा मंदिर विध्वंस को भी इस साल 1000 साल हुए हैं, जबकि उस समय इस मंदिर को बने सिर्फ एक ही साल हुए थे। 1025 में इस मंदिर का निर्माण राजा भीमदेव ने कराया था। साथियों, आप उस कालखंड के बारे में सोचिए, जब इतना बड़ा आक्रमण हुआ हो, सोमनाथ मंदिर जैसा आस्था का इतना बड़ा केंद्र खंडित किया गया हो और कई जगहों पर भी हमले हुए हो, तो किसी भी समाज या शासन का मनोबल टूट सकता था। लेकिन राजा भीमदेव प्रथम ने न केवल गजनी का मुकाबला किया था, बल्कि कुछ ही समय में मोढ़ेरा सूर्य मंदिर का पुनर्निर्माण भी करवा दिया। इसी जीवटता के कारण सोमनाथ मंदिर का भी बार बार विध्वंस के बावजूद पुनर्निर्माण होता रहा। साथियों, मोढ़ेरा सूर्य मंदिर पर भी बाद के कालखंड में हमले रुके नहीं। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने एक बार फिर वास्तुकला के इस भव्य मंदिर को तोड़ दिया था। लेकिन साथियों, हम भारत के लोग सूर्य की उपासना केवल वास्तु और मंदिरों के जरिए ही नहीं करते। हमारी सूर्य उपासना उसका एक अर्थ ये भी होता है, प्रकाश, ऊर्जा, विज्ञान और निरंतरता की प्रेरणा। इसलिए मोढ़ेरा भी आज न केवल सूर्य मंदिर के लिए जाना जाता है, बल्कि गुजरात का ये गांव देश का प्रथम सूर्य ग्राम सोलर विलेज बन चुका है। मोढ़ेरा आज पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलता है और उसने देश के सामने सस्टेनेबिलिटी का उदाहरण प्रस्तुत किया है। मोढ़ेरा में पर्यटकों के लिए कई आकर्षण और सुविधाओं की शुरुआत भी हुई है। जनवरी में मकर संक्रांति के बाद वहां मोढ़ेरा नृत्य महोत्सव का आयोजन भी होता है। इसमें भारत के सांस्कृतिक और शास्त्रीय नृत्यों की अद्भुत प्रस्तुति होती है। मैं चाहूंगा आप सब भी एक बार मोढ़ेरा अवश्य जाएं और भारत की इस गौरवशाली विरासत के दर्शन करें। साथियों, अतीत से हमारा जुड़ाव आज भी बहुत जीवंत है। इसके पीछे उन लोगों का समर्पण और परिश्रम है जो इसे और गहरा बना रहे हैं। तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली के मनप्पारई में ऐसा ही एक अनूठा प्रयास हो रहा है। एक कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ तमिल स्टडीज से जुड़े ए सेल्वा राजू जी इसे आगे बढ़ा रहे हैं। एक लेक्चर के दौरान उन्हें अपने एक स्टूडेंट से कुछ प्राचीन प्रतिमाओं की जानकारी मिली थी। इस विषय पर चर्चा के बाद उन्होंने फील्ड विजिट का प्लान बनाया। इस विजिट के दौरान उन्हें अलग अलग जगहों पर कई प्रतिमाएं मिली और प्राचीन मंदिर मिले। अतीत से जुड़ने का यह एक रोचक प्रयास है। इस प्रकार हम अपनी विरासत को और बेहतर तरीके से जान सकते हैं। देश के दूसरे हिस्सों में भी ऐसे प्रयास किए जा सकते हैं। ये हमें अपने इतिहास को करीब से देखने और समझने का अवसर देते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों बाद 2 अक्टूबर है, पूज्य बापू की जयंती का दिन। बापू ने हमें जीवन के बहुत से मंत्र दिए हैं, स्वच्छता भी उनमें से एक है। हम अक्सर अपने आसपास स्वच्छता से जुड़े अनेक प्रयासों को देखते हैं। ये प्रयास बहुत प्रेरक और उत्साह बढ़ाने वाले हैं। सोशल मीडिया पर भी ऐसी तस्वीरें, ऐसे वीडियो, ऐसी रील्स बार बार हमारा ध्यान खींचती है। हाल के दिनों में मैंने ऐसे कई प्रयास देखे हैं। कहीं मध्य प्रदेश में कुछ नौजवान नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, उनके छोटे से प्रयास में पूरा समाज जुट रहा है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में युवा पुरानी बावड़ियों और कुओं की सफाई कर रहे हैं। इससे हमारी पुरानी धरोहरों

उसे फिर से संवारने का काम हो रहा है। मुंबई में कुछ युवा समुद्र तटों को साफ रखने की पहल कर रहे हैं। हर हफ्ते किसी न किसी बीच पर सैकड़ों युवा साथी इकट्ठा हो रहे हैं, स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं। यहाँ दिल्ली में बच्चे और युवा लोगों को कचरा अलग अलग रखने और अपने आसपास सफाई रखने के लिए जागरूक कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में युवा छात्रों और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर पिकनिक स्थलों पर बाजारों की सफाई कर रहे हैं। साथियों, इन सभी प्रयासों में एक बात बहुत सहजता से दिखाई देती है, कहीं शुरुआत एक व्यक्ति ने की, फिर उसके साथ कुछ और लोग आ गए, कारवा बढ़ता गया। यही तो जनभागीदारी है। बापू के प्रति हमारी सबसे सुंदर श्रद्धांजलि भी स्वच्छता ही है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम पर्यावरण की रक्षा करते हैं तो हम केवल पेड़ पौधों या जीव जंतु को ही नहीं बचाते, हम उस पूरी जीवन व्यवस्था को मजबूत करते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे कुछ प्रयास इस भावना को बहुत सुंदर तरीके से सामने ला रहे हैं। साथियों, असम में सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। एक समय था जब यहाँ हाथियों का बसेरा हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे जंगल की जमीन पर इंसानी दखल बढ़ता गया, जिसे हाथियों ने इस इलाके से दूरी बना ली। 3 साल पहले इस जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया और अब इसके अद्भुत परिणाम सामने आए हैं। हाथी यहाँ फिर लौट आए हैं। जिस इलाके में बरसों से उनकी चहल पहल नहीं थी, आज वहां फिर हाथियों के झुंड दिखाई दे रहे हैं। साथियों, असम में ही एक और सुंदर प्रयास हुआ है। ये प्रयास एक बहुत छोटे से जीव पिग्मी हॉक को बचाने का है। एक समय इसके अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा था, तब केवल 6 पिग्मी हॉक के साथ एक कंजर्वेशन प्रोग्राम शुरू किया गया। उन्हें फिर जंगलों में बसाया गया, उनके रहने के लिए ग्रासलैंड्स को भी संवारा गया। आज इस प्रोग्राम की वजह से पिग्मी हॉक की संख्या 190 से ज्यादा हो चुकी है। साथियों, प्रकृति के साथ हमारा रिश्ता सिर्फ उसे सहजने तक सीमित नहीं है। कई बार हम प्रकृति को संभालते हैं तो वही प्रकृति हमारे जीवन का सहारा बन जाती है। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में कुछ महिलाएं इसी रिश्ते की प्रेरक मिसाल पेश कर रही है। जारखाली की ये महिलाएं मैंग्रोव के जंगल तैयार कर रही हैं। इनमें से ज्यादातर वो महिलाएं हैं जिनके पति की टाइगर अटैक में जान चली गई थी। पति को खोने के बाद उन्हें सुंदरबन से ही आजीविका का सहारा मिला। उनके द्वारा लगाए गए मैंग्रोव आज गांवों के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच बन रहे हैं और इन्हें लगाकर इन महिलाओं की कमाई भी हो रही है। साथियों, हम पर्यावरण को सहेजें, प्रकृति के संतुलन का सम्मान करें और उसकी विविधता को सुरक्षित रखें। हमारा हर ऐसा प्रयास भविष्य की पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। मेरे प्यारे देशवासियों, हाल ही में देश के लाखों युवाओं ने नशे के विरुद्ध ड्रग्स के खिलाफ एक बहुत महत्वपूर्ण संकल्प लिया है। युवाओं ने खुद भी नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञा ली है और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ली है। ये सब हो रहा है नशा मुक्त युवा अभियान के तहत। ये अभियान 100 सप्ताह तक चलेगा। इसमें माई भारत के वॉलेंटियर शामिल है, एनएसएस से जुड़े हमारे युवा भी इसका हिस्सा है, स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय भी साथ आए हैं और अनेक सामाजिक और आध्यात्मिक संस्थाएं भी इससे जुड़ी हैं। पिछले कुछ दिनों में ही देश भर में हजारों संकल्प समारोह और जागरूकता के कार्यक्रम हुए हैं। साथियों, इस अभियान में एक बात मुझे विशेष रूप से अच्छी लगी, नशा मुक्ति का संदेश हमारे युवा खुद अपनी भाषा में अपने तरीके से इस संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने मन की बात में भी युवा साथियों से आग्रह किया था कि वे अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से इस अभियान से जुड़े और मुझे खुशी है कि हजारों युवा इस आह्वान पर आगे आए हैं। माय भारत पर एंथेम, स्लोगन राइटिंग

और नुक्कड़ नाटक जैसी अलग अलग प्रतियोगिताएं हुई है। इसी तरह सोशल मीडिया पर हमारे युवा हैशटैग नशामुक्त युवा के साथ अपना क्रिएटिव कंटेंट साझा कर रहे हैं, यानी संदेश भी युवाओं का है, माध्यम भी युवाओं का है और इसे आगे ले जाने की ऊर्जा भी युवाओं की ही है। आने वाले दिनों में इस अभियान के तहत हेल्थ चेकअप और ध्यान शिविर जैसी गतिविधियां भी होंगी। साथियों, जल्द ही हमारे अनेक पर्व और त्योहार भी आने वाले हैं। इस बार त्योहारों की खुशियों के बीच हम अपने आसपास भी नजर डालें। अगर कोई युवा किसी गलत आदत की ओर बढ़ रहा है तो उससे बात करें। अगर कोई नशे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है तो उसका साथ दें। नशा मुक्त युवा विकसित भारत के इस संकल्प को हम सब मिलकर आगे बढ़ाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, लाल किले से मैंने इस बार स्पोर्ट्स के लिए टैलेंट हंट अभियान का ऐलान किया है। भारत लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करता रहे इसके लिए गांवों और कस्बों तक पहुंचकर स्पोर्टिंग टैलेंट को खोजना जरूरी है। वहीं कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इसी काम के लिए खुद को समर्पित कर दिया है। उनका एक ही पैशन होता है, टैलेंट को खोजना और उन्हें तराशना। हमारे पंजाब में यही काम राजेंद्र सिंह जी कर रहे हैं। राजेंद्र सिंह जी ऐसे एक व्यक्ति हैं जिनके नाम में सीनियर भी जुड़ा हुआ है। वे 1980 के ओलंपिक में हॉकी में गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम का हिस्सा थे। 1982 के वर्ल्ड कप में छाए रहे थे। 2001 में भारत ने पहली बार मेंस जूनियर वर्ल्ड कप का खिताब जीता था। वहीं 2003 में देश ने सीनियर एशिया कप टाइटल पर कब्जा किया था। इन दोनों ही टूर्नामेंट में वे कोच की भूमिका में थे। अब वे राउंड ग्लास हॉकी एकेडमी के जरिए अपने पैशन को आगे ले जा रहे हैं। उनके प्रयासों से गांवों में नई हॉकी एस्ट्रोटर्फ बिछाई जा रही है। राजेंद्र जी का फोकस एकदम क्लियर है, ऐसे गांवों में बच्चों की पहचान करना जहां बेहतरीन कोचिंग की सुविधाएं कम है। ऐसे प्रयासों से कई खिलाड़ी भारत के जूनियर और सीनियर लेवल पर अपनी जगह बना रहे हैं। राजेंद्र सिंह जी के इस समर्पण की जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। मेरे प्यारे देशवासियों, आंवला हम सभी के लिए बहुत जाना पहचाना है। ज्यादातर घरों में इससे बने अचार और मुरब्बे का प्रयोग होता है। बहुत से लोग आंवले का जूस पसंद करते हैं और सर्दियों में च्यवनप्राश हमारी दिनचर्या का अहम हिस्सा बन जाता है। हमारे बड़े बुजुर्ग तो पीढ़ियों से आंवले के गुणों के बारे में बताते आए हैं। साथियों, यही आंवला आज उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में नई संभावनाओं का माध्यम बन रहा है। प्रतापगढ़ और आंवले का रिश्ता बहुत पुराना है। पीढ़ियों से यहाँ के किसान आंवले की खेती कर रहे हैं। आंवले ने प्रतापगढ़ को एक मजबूत पहचान दी है और अब यही पुरानी पहचान यहाँ के किसानों और महिलाओं के लिए नए अवसर लेकर आ रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP के माध्यम से यहाँ आंवले से जुड़े स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा मिला है। आज प्रतापगढ़ में आंवला प्रोसेसिंग से जुड़ी करीब 100 यूनिट काम कर रही है और इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाएं भी बड़ी भूमिका निभा रही है। ऐसा ही एक समूह है देवगढ़ कमासी गांव का, सावित्री फुले सेल्फ हेल्प ग्रुप। इससे जुड़ी महिलाएं आंवले से कैंडी, मुरब्बा और जूस बना रही है। ODOP के तहत नए बाजारों तक पहुंच बढ़ने से उनकी आय में भी बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह एक गांव में विंध्यवासिनी सेल्फ हेल्प ग्रुप है। इस ग्रुप की महिलाएं आंवले का अचार, डाइजेस्टिव पाउडर ऐसी कई चीजें तैयार कर रही हैं। इन महिलाओं को प्रोसेसिंग के लिए मशीनरी मिली, लोन की सुविधा मिली, स्थानीय व्यापार मेले से जुड़ने का अवसर भी मिला और देखते ही देखते उनकी आय काफी बढ़ गई। साथियों, हमारे देश के हर क्षेत्र में
ऐसी कोई न कोई विशेषता जरूर है, कहीं कोई खास फल है, कहीं कोई पारंपरिक कला है, तो कहीं कोई अनोखा हुनर है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इन्हीं विशेषताओं को आगे बढ़ाने का अभियान है। हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि हमारे गांव और छोटे शहरों की ये पहचान सिर्फ स्थानीय बाजार तक सीमित न रहे, वे देश और दूसरे हिस्सों तक पहुंचे और दुनिया के बाजारों तक भी पहुंचे। इससे वोकल फॉर लोकल अभियान को भी बल मिलता है, ये देश को आत्मनिर्भर बनाने की भी प्रेरणा देता है। आने वाले त्योहारों में भी हमें वोकल फॉर लोकल वाले मंत्र को तो कभी भी भूलना नहीं है। मेरे प्यारे देशवासियों, सितंबर का ये महीना कुपोषण से लड़ाई को समर्पित है। पोषण माह में अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोग और संस्थाएं इस नेक कार्य के लिए एक साथ आती हैं। कुपोषण से मुकाबला करने के लिए इस साल कई सराहनीय पहल की गई है। छत्तीसगढ़ ने हर घर मुनगा घर घर मुनगा ये अभियान शुरू किया है। इसमें लोगों को पौष्टिक मुनगा यानी मोरिंगा को अपने खान पान में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। गुजरात ने भी वांगी स्पर्धा यानी मिलेट से बने व्यंजनों का कंपटीशन शुरू किया है। इस पहल के जरिए सस्ते और पौष्टिक स्थानीय खानपान को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब तक 2 लाख से ज्यादा लोग इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले चुके हैं। महाराष्ट्र भी इस दिशा में सराहनीय प्रयास कर रहा है। वहां टीचर्स, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और बच्चों के माता पिता जागरूकता अभियान से जुड़ रहे हैं। मिजोरम में भी इस साल लोगों ने साथ मिलकर पोषण वाटिकाओं की देखभाल के लिए एक अभियान शुरू किया है। यह मिजो समाज के तलो मडयाना की परंपरा के अनुरूप है। इसका अर्थ है निस्वार्थ सेवा और दूसरों की मदद में हमेशा आगे रहना। ऐसे प्रयास बेहद सराहनीय है। मुझे आंगनवाड़ी केंद्रों से जुड़े उन सभी लोगों पर भी गर्व है जो इस तरह की पहल का हिस्सा रहे हैं। ये आंगनवाड़ी केंद्र अब पोषण ट्रैकर से डिजिटली जुड़ गए हैं। करीब 9 करोड़ लाभार्थी इसमें रजिस्टर्ड हो चुके हैं। इससे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की बेहतर देखभाल संभव हुई है। हमें कुपोषण के खिलाफ इस लड़ाई को इसी तरह आगे लेकर जाना है। हमें हमारे समाज को कुपोषण से पूरी तरह मुक्त करना है। साथियों, हम सब ने इस महीने पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ गणेश उत्सव मनाया है। देश भर में पूरे भक्तिभाव से गणपति बप्पा का स्वागत किया गया। यह पावन अवसर पूरे वातावरण को उमंग और उल्लास से भर देता है। साथियों, विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश ज्ञान बुद्धि और शुभ कार्यों के आरंभ के प्रतीक है। उनके प्रति अगाध श्रद्धा सिर्फ भारत में ही नहीं है। जैसे श्रीमान पंथोन थिरखानोन जी, उन्हीं की बात ले लीजिए, वे वैसे तो थाईलैंड के हैं। यहाँ भगवान श्री गणेश की पूजा फ्रा फिकानेत के रूप में की जाती है और जब वे 19 वर्ष के थे तब उनके पिता ने उन्हें भगवान श्री गणेश की एक फोटो भेंट की थी। यहीं से उनमें अद्भुत भक्ति जागृत हुई। वे भगवान श्री गणेश से जुड़ी परंपराओं के अध्ययन में 4 दशक से भी अधिक समय बिता चुके हैं। उन्होंने भारत और नेपाल सहित एशिया के कई देशों की यात्रा की है। महाराष्ट्र से उनका विशेष लगाव रहा है। अष्ट विनायक परंपरा के बारे में जानने के बाद वे कई बार यहाँ आ चुके हैं। उनके प्रयासों से थाईलैंड के श्रद्धालुओं के बीच भी अष्ट विनायक यात्रा लोकप्रिय हो चुकी है। वर्ष 2002 में उन्होंने उत्तरी थाईलैंड के चियांग माई में गणेश हिमाल म्यूजियम की स्थापना की। आज इसमें 10,000 से अधिक गणेश प्रतिमाएं हैं। म्यूजियम में उन भक्तों के लिए अष्ट विनायक की प्रतिमाएं भी मौजूद हैं
जो भारत नहीं आ सकते।

0: यहां हर रविवार सुबह करीब 10 बजे गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। गणपति से जुड़े विशेष अवसरों पर भी अनुष्ठान होते हैं। यह बताता है कि भारत की आस्था, कला और सांस्कृतिक परंपराएं दूसरे देशों में भी कैसे लोकप्रिय हो रही है। मेरी कामना है गणपति बप्पा का आशीर्वाद सभी पर हमेशा बना रहे। साथियों, मन की बात के हर एपिसोड के बाद मुझे अनेक विषयों पर आपके संदेश मिलते रहते हैं। आप इसी तरह प्रेरणा से भरी गाथाएं भेजते रहिए। जब आप अपने आसपास हो रहे ऐसे प्रयासों की सराहना करते हैं तो उनका उत्साह और बढ़ जाता है। मन की बात के माध्यम से उनके बारे में जानकर देश के दूसरे हिस्सों के लोग भी प्रेरित होते हैं। ये यात्रा इसी तरह आपके सहयोग से निरंतर आगे बढ़ती रहे। आने वाले त्योहारों को आप अपने परिजनों और दोस्तों के साथ पूरे आनंद और उल्लास से मनाएं। मैं आप सभी को एक बार फिर शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
3: आकाशवाणी दिल्ली है, लीजिए सुनिए माननीय प्रधानमंत्री।
4: श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम मन की बात दिल्ली केंद्र से। अब इसी कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे गालो भाषा में गोन्याक एते के द्वारा।
5: तानारुआ मागंब इजानु नो गदाग प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ग आपु मनामम रेडियो लो मेंकेंजिनाम मन की बात ग एक्सोगोला हमुमगोला पी नान एपिसोडम गालोब में लेंजिनामम तपाए गदाग नोक काल ताले हिनाम गद्दा आगंब मन की बात ग हत पोल होगोंगो लगदा अमाजाब नुन्नम पारख हिनाम होमोयम पादुकुदन्ना मो गदा नारुम होगो तोमरग दुना मन की बात होगो मो गदा ग अलना अगराला इकामें का तनाम आबालो आगोमाई जाबदना गदा ग पुनाम पानाम आबालो आगोम जाबदना भारत गदा होक अम्बई आकेन ताको नाम आबागो इजा अन्य न्यूयता दुको हेगी आबा हेगी सर्जिकल स्ट्राइकर अन्य न्यूये को ग 28-29 ग हत पोल ग 2016 ओगो गदा ग हिप्पाई गद पाकिस्तान ग नीले होदोना आतंकवाद गद ग नाम ना सुलो सर्जिकल स्ट्राइक इतो एलओसीएम राब बोदोला मुनुक निगा हिप्पाई गद ग नीले होदोना आतंकवादी गदम मोतुमोरे नामम नारुह कागिका आतंकवाद नीले होदोना गद ग अदना इलुकिसार नाम ग एंद्र का सोमेनला सर्जिकल स्ट्राइक इनाम हिगी मुनुक इलुकिसार नाम एंद्र का सोम मुन्नम एंकुर मोलपमला इरिकमेंडक नाम मगो इनेना अन्यालोगो बालाकोट ग एयर स्ट्राइक लोक कलेला ऑपरेशन सिंदुरलो ब गदा हिगी युमदा रोदाग ब मैसेजम जितो आतंकवाद यादलो मेना मनम तमा बा

इको मैं को मेद रगब मना ला अमला अजन गादा आतंकवाद ग मुतुमोरे नाम हेगी मु गदाम अद ना अनि आलोलो ब इंद्र का सोम एम मो का लकलो गदा होगो सीरियल ब्लास्ट हेगी कॉमन जा बक्तो हित पोल ग लोई गो लालोम 2008 ओगो दिल्ली लोक सीरियल ब्लास्ट हेगी नी हे मापा माब येस ना गादम हिलक दो भई तो हेम इरो को किब होप्ता को किजा लोकदा मुंबई लो 2611 लो आतरुना लोमना ममितो अजन गादा लक ऑक्सिन आतंकवाद एटेकला इरोब पाकिस्तानम इरिकमेन दिक्तो कामला मेनियार्तो इगदोला लकलो यसिन हिम अन्नपान नमुमातो होमोया इन रोदोक बदेन तोया हिया तो इजा भारत ग दाहिगी आतंकवाद ग आबालो जीरो टॉलरेंस पॉलिसियम इंगला इंदुकु हिम होक हम्ब इनामम का पता पाला ये दु अजन गद्दा 11 सितंबर ग आतंकी अटैक नाम मसिन अन्य हम निगोला न्यूंगुदुकु अमेरिका ग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर लोक यो हेनिया पाया माना हिलकना अमेरिका लोक नियम मेम्मा ब मुख भारत ग दाहोक नेगा दया का यारु तो मोम पादु 2014 ओगो मो प्राइम मिनिस्टर इरोब अमेरिका इन ला न्यूयॉर्क लो मो होक हिलक हियाना नारु भारत ग दाग नेगत ग लगा ब कुमलक जोलक तो इजासिन मोलक दा भारत ग दाग करोर नेगत ग पेले लोक होक हिलक हियाना नाम रूम तो मालू लगा ब म पाहक पादुना गदाग मोके काले ताले हिनाम गद्दा इजामलो गदाग अत्रुना लोकसागो मोलाइदु होगो लोकसा होगो नोसिन दागदु नोक नाम रूम तुमसिन ओक नोक नाम दोगो दोरसिन होगो दागदु मोक मेंदु नाम सेंसस अबाहिम गदाग नारु स्टेट ओक यूनियन टेरिटरी लो होक फर्स्ट फेज इंगाम का हमुम गो ला अनि करोरम सिम पोयाना नाम रूम तुम ग आबाम एल के राका इजा लद्दाख हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर ओक उत्तराखंड ग मोकिस बोस्कानो एम्पाना तापाम दोन मोकलोसिन हिम ने इलायदु ओकया का काघिनाम एक्सपीरियंस मुनुकलो आदु उत्तराखंड लो सेंसस ग आबाम चमोली ग माना दोलू लोक ग इरोप तो माना हिम भारत ग दा ग फर्स्ट दोलू अम्दु माना होगो इतियारू ब असम पीन गोला आउम अन्यना पूर्णिमा राबत जिम हिम इरोप तो उत्तर काशी ग बगोरी दोलू लो होमस्टे मोला ये न हरदीप सिंह राणा जिम डिजिटल लोक म मग हेन नाम पा नाम होगो एंट्रिला अग इस्तो अजन गद्दा सेंसियास हेगी मुनुग नेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी मो 15 अगस्त ऑक्सिन नारु गदाग निगादम रिक्वेस्टो होक लगाब नुन होमोय लालेन रू तो कामला सेंसास लगाब नुनुक हेंकलोक अग एल्लक एरा नाम हेगी हुबिदा जादा दंग नक नो मोबाइल लोक कई नूग ओक नाम रूम तुमम होगो एलिक निगलिकला इलादो होगो नो हिंदी आगोम ओक कब उईगो ला अक आगोम गो होगो नो ऑप्शन हम पाए आजन गादा अक अगलगा बनुन सेंसस ग ऑनलाइन पोर्टल ग होके इंदु बैदना होक पोर्टल census.gov.in होगो पोर्टल होगो इंदला नो नोक मोबाइल नंबर लोक लॉग इन तोका नोक एक दू कॉम एल लिख तोका नोक नाम रूम तुम ग बाबम एल लिख तोका ओक सबमिट तोका होगो हम्ब इनाम होगो नो 15-20 मिनट्स को न्यूम ब लगिए होक लगा ब नो डॉक्यूमेंट्स इन अपलोड नाम दरकार मा
नारू बाबम आप लोद इरोब नोम आकिन स्पेशल आईडी को पाए यदलो सेंसस इन गद नोक नामलो आईडी ओगोनो मुन्नम हिम आईडी हिगिम का तुम लदु आजन गद इजालोब मोबाइल लोक के 2,60,00,000 लेकम सिन पोया ना निगद सेंसस पोर्टल होगो अलग बाबम एल्लिक एराला भोरेगा गदाग नोक काल ताले हिनाम गद्दा हिलो 27 सितंबर ग हिगी आलो हिगी आकेन स्पेशल अबालोक यारूब स्पेशल ना गोन्ना हिलो आकेन अदना हेन पानग 100 अन्य बर आलो म कल्चर सोसाइटी ओक नेशन ग लगाब अग गुनाम हुनाम सेक्रिफाइस तो मोक मेंदुनाम वर्ल्ड हिंदू परिषद ग फॉर्मर इंटरनेशनल कार्यकारी अध्यक्ष पोपुम अशोक सिंगल जी ग बाबलो 27 सितंबर 1926 ग हिलो ग आलोलोई आग्रालो मुने बला मु राम ने ब को मोक आंदोलन बदाम का तोमना एनर्जी का तोमना हिलो ओक रिजल्टम अयोध्या ग आत्रुना मंदिरम मुनु का पदु ओ माजीब लाकीजाब मुसीलांगुम इदना ओमुग गुनाम हुनाम के बाबम न्यूम बाइर लोक का कामा ओमुग सातलो मिशन हो के येलिक नाम ममसिन पाला आजन गद्दा अशोक अबो सिविल सेवालो ऑफिसर भी तो मग नाम रूम तुम असी अनी अबर गद्दसिन अत्रुना ऑफिसर भी तो मसिन आईआईटीएम बीएचयू लोक ग्रेजुएट तो एक दोला अम बिदला सिन म सोसाइटी लगा ब आग गुनाम हनाम म गुल खुल तो हेलो म ग बर आलो होगोंगो म ने आया काल ब म नारू ग पेले लोक म ने म पाला कुमलक दुना गदा ग ओक काल तले हिनाम गद्दा हिने ग अन्य हिमुन अत्रुना गद लोक न्यूरप लोरप तो हिगी गद हिगी सोमनाथ स्वाभिमान गद हिलोग लोक के 1,000 अन्य को के ओगो 1026 ओगो मोहम्मद गजनीम इतियारूब सोमनाथ मंदिरम मोयाकमो सागनाब इतो एक दोला यमुनु सोमनाथ मंदिरम मोयाकमो सागला पयाक पसाक पला गदा होगो गदाम ने बदनाम मोतब आबेद हिलो मुनुक लोयो आमेन काकमा सोमनाथ मंदिर इजा अत्रुना हिबुआंगुरलो भारत गदा हिम आशीर्वाद जिला दोदु अम्बिलांगुन हिन्य मुदुमुर जादाला सोमनाथ स्वामी गदम लोदुम तो आजन गादा मेंकिन मकेन्ना मन की बात होगो लगदा योबबे मेंदु को अम्योम होक्सिन आगोम जालो को कादकना 1026 अन्य को के ओके गजनीग सोमनाथम हेयक हेसक दाग ओगोई अन्य ओगो गुजरात गई मोडेरालो ताकोनाम सूर्य मंदिर लो सिन लोमला या तो हिम सिन पयाक पसक तो मोडेरा मंदिरम पयाक पसक नाम गसिन हिन्य 1,000 अन्य आसुब्दुकु ओगो पयाक पसक दो ओगो हिम मंदिर ही मोनाम अन्य न्यू केन गो न्यूम बे तो 1025 ओगो हिम मंदिर हिम ने मोन्ना राजा भीमदेव आजन गद्दा मोडेरा सूर्य मंदिर लोसिन ओग होमय ओगोसिन लोमनाम गुनाम अब इबबल्ल तो कोकबक दा अलाउद्दीन किलजिम लगदा अमाजाब अत्रुना मंदिरम पयाक तो एक दो लाजन गद्दा मु गदा होक नी गद्द दोन्यम ने कुमनाम होक मूर्ति ओक मंदिरम न्युम्मा मुनु दोन्यम कुमनाम तोरनाम गानाम आतोरमो नाम लगा बसिन हुन कुम्द जोदना अकग लगा ब मोडेरा हिगी इजा सूर्य मंदिर लगा ब न्यूम ताकोमा हिगी गुजरात ग फर्स्ट सूर्य दोलू सोलर विलेज ब इका जनवरी लो
मकर संक्रांति इरोब आलो मोडेरा ननम आबाम इदना होगो गदग ट्रेडिशनल ओक क्लासिकल ननम आबाम आदक हिरूब कातम तातम दोना मो मुदना नुन नारुव लको मोडेरा होगो इनरुतो का ओक भारत गदग होक का केंतन हेरिटेजम कारु तोका आजन गद्दा लक कोई मोक गुनाम हुनाम अबा येरो दुर्व सिन इजा दुर्बुदाल दुनाक हो कोकिलो सिन निगत ग सेक्रिफाइस ओक तोरकोगा को नाम हिगिम ताको मुदुना तमिलनाडु लो तिरुचिरा परली ग मन परैलो अंबई अकेन इकाता लाइदु अकेन कॉलेज लो डिपार्टमेंट ऑफ तमिल स्टडीज अबालोक एल सेल्वा राजू जीम हिम इन लगदु अकेन लेक्चर जी दाखलो मु ग अकेन स्टूडेंट लोक एनसेन पेले लोक बाबम सिन हेंतो होक टॉपिक आबालो जब मिन हिरो को कब म फील्ड बिजित लगा ब मुरप मोरप तो गदा गंगो का कालु तले हिनम गद्दा ह्यूम आलोजा 2 अक्टूबर आदा तादा मग हगनाम उज गांधी ने बर आलुआ उज गांधी बापू ओन नम गनाम हनाम होगो दना अगराला आलना बदाम का तुम का दरक दरक हिगी ओके आके ना बागोन्ना ओनो ओनो नाम बाइर बासर दोगो दोर लोके दना हपहा पा बाम कादु हिगी उन नम माजीब काघिमोना सोशल मीडिया लो सिन हकना वीडियो रील्स लोदक ब आला मुनुक अनिक अगम मासिना पुकम लादक हिलोमा लोंगो होके इकामें कतानामम कापादक मध्य प्रदेश लो गसा हसाना यामेक हिबुम ने हपहा पाला इलाइदु मगा जी ना इकातानाम लो दना सोसाइटी येमिन गदुकु अंबई दादा आंध्र प्रदेश तो यूत लकलो के पोंड ओक कुआम हपालाइदु मुनुक लके कोई मोके हेरिटेज का दम का केंताइन दोबे मोलाइदु मुंबई लो सिन यू तक हागोरांगुरम हपालाइदु हप्ता दिकुब हागोरांगुर लो ददु ना यूत येला दरक दरक स्वच्छता अबाहिम मगप्लाइदा दिल्ली लो सिन ओमे ओक यूत नजरिया में का द नारू एम लूसु कोयम अतक अतक ब ल नाम ओक अग दुख निकम योब दरक दरक ब ल के दो द एम मेन तो मु तुम लाइ दू वेस्ट बेंगल लो यूत ओक स्टूडेंट्स का द जुग हिदला पिकनिक दो को मोक ओक बोजारबो कर नारू लो हापागलाइ दू गदागंग ओक काल तले हिनाम गद्दा मुन एनवायरमेंटम तुर्बुदाले नाम होगो मुनु हन हब तापुम तारुकम न्यूम ब तुर्बुदाले मा मुनु होगो कब कब आबा आबा हम सिन तुर्बुदोना गदाग अदक अदक मोकलोक इकाता नाम हिगी होके आबालो काकेन रूप कातम दंगना आजन गद्दा असमलो सोनाई रूपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोदु लकलो हिगी होत गद ग ये पार दो पार बही तो एक दोला दल दल ब मुनुक एक मोटुमिस लो निगा द नाम ना सुमोला ये लकुन में होत गाद द ओ दो लल ब इन लतोकु अन्य न्यूम को क्यों गो हिम को देस गाद हिम एनक्रोचमेंट नाम ये पाक लल तोकु ओके जा होके गुदेन हमो आलना रिजल्टम का पादुकु होत ते इजा होगो मोकिस होगो आकुर्दुकु आजन गद्दा असमलो आके नालना का केन्ना इकाता नाम गो कादु हिगी इकाता नाम हिगी आजी ना पिगमाय होगम तुर्बुनाम लकलो होक आइडेंटिटी लो प्रॉब्लम का तो ओगो आक फिगमाय होग आबालो आकेन जाबरग जब तक हिनाम प्रोग्राम गो इरोप तो ओके हिगिम आमा जाब मोतुमलो ये मोतोकता इजा होक प्रोग्राम लोक फिगमाय होग गोल लाकु एक्सो गोला आसाम को नाम सिन पोयानागो ब इदुकु आजन गद्दा
nechara hogo unuk ayamin se limit kamadangna unnam yaka jago nechara turbo dale donake West Bengal ge Sundarban lo ananyama ke hoke ayamins namam kag himla yedak jarkali ge hig anyama ga dhigi mangrove ge motuma molanug layedu hoke ananyama atugonna munuk nil loem abu pat mok momarjinam lok nim gad nil log ngero hirob munu hoke Sundarban hoke munu Ambin ponem ne tumuk name ki la yeduku. Munuk lalik nam mangrove ija dolu laga ba akin necharam tu se bala nagoba iduku. Gudaga ngoka kalitale hinam gadda. Alogoloja gudaga a de na yud gadda. Dodik tudik abaga against ba drugs abahogo. Alruna agar kosom dog hinamamika. Yud gadda munai dodik tudik. Dengne kone abam, odobam la kosom doghika. Oke hekna alna mesejam, kab kab gad dem sin hendobam la menka. Higi gad higi, nasha mukt Bharat yuva abhyan loke iduna. Higi abhyan higi, 100 hopta gob higim iye. Hogo Bharat gudag volunteers gad de yelugdu. NSS lok yena youth sin hogo yelugdu school college ok university sin yelugdu ok society karyakarta gad sin hogo yemin gadu ajan gadda akumdama ba munuk adagadak na gud sin adatada hin gud ga mken moen ga sat longun alga bair basram sin kal tala ye plage Youth gad the Alman agarala, imurme murta dubolo, agam agom japtoka. Yamunu dodik tudik dingne kone abahim, topla, hokke nen lepa emla, ingoka dubolo, agumne modotrutoka. Nasha mukt Bharat, yuba vikasit Bharat ge, kosomdog hinam him, inlagalajuka. Gudagang hoka kalitali hinam gadda. Lal ki le lok ngo sports kheli ke pa laga ba talent hunt abhyanam menkento Bharat gida ka du lalla ba in ladu hok laga ba dolu dolu lo ba pudla kheli ke pa sporting talentam manam lagi du munuk Punjab lo hamba alna agar lo Rajinder Singh ji ilai du Rajinder Singh mug saatlo senior ga dasin yemin gadu mu 1980 ok hockey lo gold medal pan team lo ke akin gon naku 1982 ga world cup lo takoto 2001 lo bharat ke da first ba men's junior world cup am pato ok 2003 lo gda higi senior asia cup title pan go ba ito Hoka tournament ani hoka mu coach baito. Ijamu round glass hockey academy ga loka mu ga peshanam in lagadu. Mu ga ikamen katanam hoka dolulo ali hockey astro tarpa kapatapala majda. Rajinder Singh mu namonama darak pichakdu. Gudaga hoka kali tali hinam gadda. Amlangu naruga lagaba hennam go baidu. Tutianga namlo hoke monam achar oke. Murabe amdolaidu. Ake naniya amla hoke juusamne ensom kasam laidu. Oke ikraik homoilosin hegi ngunuk yeg nam go baidu. Ajan gadda. Hegi amla ija Uttar Pradesh ga Pratap garlo akin ali mughila. Inam go ba ida hogo rik nam ine ok ananyam laga ba akin alna agar go lalela adu one district one product hoke hogo amla hogo hoke nigad ga punam pa nam go le da ija pratapgar lo amla processing hogo mud mad 100 unit go ba agarila yedu ok self help group lo yene ananyam ga desin Atru na rolem ne ilayedak.
아젠가다 그다가

0: alna agar lega ba naruwa, lakin go ba adna. Gumaga mana higim torpak nam lega ba, hini koiksa agaram, irop men ropka. Chhattisgarh har ghar monaga, ghar ghar mongahim abhyanhim iropka. Hogoni gaddam, nitrichas monga, moringahim, alg donam tunam abahogo, लालक नाम लगा ब एनकरेज लाइए तो गुजरात असिन तमिलों के मोनाम असिन ओग इकामिंग का ही नाम कंपटीशन नम यूरोप का महाराष्ट्र असिन होगो आबा होगो आलना अगर इकाता दू होगो सार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ओक ओमेगात ग अनवा बोसिन होगो अवेयरनेस होगो येमिन गदू होगो मूद माद 9 करोड़ बेनिफिशियरी गोब रजिस्टर का होक ओमेआव न्यूजर कीत ना अन्याम ओक आओ ओजिकान अनगादम अल्ब पागला निगला इनाम पाका आजन गादा मुन नारू होग हुत पोल होगो मुगाब जादाला गणेश गुदम लोदुम का गुदा होगो नारू मोकलो गणपति बाप्पा ने इर्गाजाब तोमरका मने आत्रुब कुमनाम जोनाम हेगी भारत के दाहोग न्यूम ब दोमा श्रीमान पंटोन थिरकानोन जी मने लालेला काकतो का म थाईलैंड लोक होगो भगवान श्री गणेश ने फ्रा फिकानेत गाइब म लाहिम कुम्द जोतना म यादोगो म ग अन्य अल्बोएक न्यूयेगोला कोनायर्स बेद ओगो म ग अबो म ने भगवान श्री गणेश ग लोकसागो म ने आमीन बजितो म भारत गदा ओक नेपाल ओक एशिया होक याका गदा लो इन लायतो महाराष्ट्र म माजीब अल्बम तो अस्त विनायक ट्रेडिशनल ग बाबम हेनरोको क ब म होगो याका गो इनला आलायतो 2002 ओगो म नॉर्थ थाईलैंड ग चियांग माइलो गणेश हिमाल म्यूजियम एस्टैब्लिश तो आजन गद्दा मन की बात ग नारू एपिसोड ग कोके बंगो अदक अदक आबालो नुनुक मैसेज हम पायार दाग नुनु हम भई अलना काग ही नाम आबा आबालो के जिलक लियार तो का याद लो नुन नुनुक बाहर बासर लो के अलना इकामें का तनाम आबाम कोई दो द ओगो मुनुक इनाम में नाम मुनाम हंग नाम आसिना पुक यारूब पुक्त गात दोना मन की बात ग अबा होक मुनुक लाम्बाम गुदाग मोक मोक नी गद हेनला मुगिदा हिगी अबा हिगी नुनुक मुदुम हाग दुम लोक हम बे इयारिये आ देना गुदम नुन नुनुक नाम रूम तुम ओक आजन रपेक लो येदला इर्गामुआब गुत लोत का मोनु नारू एम लगदा गुद आगाम जिदुना अक गो अक जा आगाम ब
1: श्रोताओं आप सुन पा रहे थे कार्यक्रम मन की बात गालो भाषा में गण्यक एते के द्वारा आपसे थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per litre. Smart Play Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, next gen K Series 1.0 litre dual jet, dual 50 engine, and spacious interiors.
1: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों पर सेना के सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया के सामने भारत की आतंकरोधी नीति का एक नया उदाहरण पेश किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया ये देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी।
3: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है।
3: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
2: प्रधानमंत्री ने विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अशोक सिंघल की 100वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि राम जन्मभूमि आंदोलन को उन्होंने जो दिशा और ऊर्जा दी, अयोध्या में भव्य मंदिर उसी का निर्माण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने इस साल की शुरुआत सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के साथ की। श्री मोदी ने बताया कि 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर के साथ गुजरात के मोढेरा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर को भी ध्वस्त कर दिया गया था।
3: 1026 ईस्वी में जब गजनी द्वारा सोमनाथ विध्वंस हुआ था, उसी साल गुजरात के ही मोढेरा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर पर भी हमला हुआ। यानी मोढेरा मंदिर विध्वंस के भी इस साल 1000 साल हुए हैं, जबकि उस समय इस मंदिर को बने सिर्फ एक ही साल हुए थे। राजा भीमदेव प्रथम ने न केवल गजनी का मुकाबला किया था, बल्कि कुछ ही समय में मोढेरा सूर्य मंदिर का पुनर्निर्माण भी करवा दिया। इसी जीवरता के कारण सोमनाथ मंदिर का भी बार बार विध्वंस के बावजूद पुनर्निर्माण होता रहा।
2: प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी की जयंती का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता बापू द्वारा दिए गए जीवन के कई मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है।
3: कुछ ही दिनों बाद 2 अक्टूबर है पूज्य बापू की जयंती का दिन। बापू ने हमें जीवन के बहुत से मंत्र दिए हैं, स्वच्छता भी उनमें से एक है। हाल के दिनों में मैंने कहीं मध्य प्रदेश में कुछ नौजवान नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, उनके छोटे से प्रयास में पूरा समाज जुड़ रहा है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में युवा पुरानी बावड़ियों और कुओं की सफाई कर रहे हैं, इससे हमारी पुरानी धरोहरों उसे फिर से संवारने का काम हो रहा है, स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत देश भर के लाखों युवाओं ने हाल ही में मादक पदार्थों के सेवन और नशे के खिलाफ एक महत्वपूर्ण संकल्प लिया। उन्होंने नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञा की है और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ली है। नशा मुक्त युवा अभियान 100 सप्ताह तक चलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सितंबर का महीना कुपोषण से लड़ाई को समर्पित है। पोषण माह में अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोग और संस्थाएं इस नए काम के लिए एक साथ आते हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्होंने कहा कि रूस भारत और ब्राजील को स्थायी सदस्य बनाए जाने का समर्थन करता है। सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आज ग्राहकों की सुविधा के लिए खुले हैं। यह निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। राज्य में लगातार हो रही बारिश से

प्यारे श्रोताओं, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करना चाहती हूँ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आप इस वक्त सुन रहे हैं हमारे आज के सेकंड ट्रांसमिशन को, और ये ट्रांसमिशन अब से लेकर शाम के 4:30 बजे तक रहेगा। और इस कार्यक्रम के सभी और इस सभा के सभी कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने में हमारा साथ दे रहे हैं एचपीटी में मौजूद सहकर्मियों के साथ प्रसारण निष्पादक गोपाल राय और तकनीकी अभियंता एचएम भूषण। और प्यारे श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो साथी बामिन सुम्पी। तो चलिए श्रोताओं, शुरू करते हैं हमारे सभा के पहले कार्यक्रम को, कार्यक्रम हिंदी फिल्मी सॉन्ग्स को, और आपको जल्द से सुनवाते हैं ये प्यारा संगीत।

प्यारे श्रोताओं, जीवन में ऐसी सोच रखे, जो खोया उसका गम नहीं, पर जो पाया है वो किसी से कम नहीं। जो नहीं है वो एक ख्वाब है, पर जो है वो लाजवाब है।

0: संगीत,
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात,
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स और आप हमारे साथ बने हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए श्रोता, बढ़ते हैं हमारे अगले कार्यक्रम की ओर, जो कि है कार्यक्रम गीतमाला।

यार श्रोताओ, आपको पता है हमारे कार्यक्रम गीत माला खास करके हमारे फौजी भाइयों के लिए, फौजी जवानों के लिए है जो देश की सीमा पर खड़े होकर हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो आइए उनके मनोरंजन के लिए हम ये कार्यक्रम सुनवाते हैं आपको। इस कार्यक्रम का पहला गाना आप सुनेंगे अब।

हमारे वीर जवान, ये बात हमेशा याद रहे कि दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है।

एक सैनिक ने क्या खूब कहा है, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोर आया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोर आया हूँ, मुझे छाती से अपने तू लगा लेना ए भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोर आया हूँ। जय हिंद।

किसी सैनिक के अगर मन की बातों को बखूबी अगर कागजों पर उतारा गया हो तो उसके बोल कुछ ऐसे रहेंगे। ना किसी हिंदू की है ना किसी मुसलमान की है, हर हिंदुस्तानी के खून से बनी ये माटी हिंदुस्तान की है। लाखों कुर्बानियों के बाद ये आजादी हमने पाई है, कितने अशफाक और भगत ने अपनी जान गंवाई है। नफरत और मजबूत मजहब की दीवारें ना मैं उठने दूंगा कभी, तिरंगा शान हमारी है, इसको ना झुकने दूंगा कभी। जब तक सांसें चलती है प्यार ही बस पैगाम रहेगा, प्राण है जब तक तब तक दिल में केवल हिंदुस्तान रहेगा, केवल हिंदुस्तान रहेगा।

श्रोताओ, आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतमाला। आपसे थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: आतंकी ठिकानों पर सेना की सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया के सामने भारत की आतंकरोधी नीति का एक नया उदाहरण पेश किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया ये देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी। उन्होंने कहा कि अब भारत आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर चल रहा है और उसका नतीजा है।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है।
1: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
0: प्रधानमंत्री ने विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अशोक सिंघल की 100वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि श्री सिंघल ने अपना पूरा जीवन संस्कृति, समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया।
1: 27 सितंबर 1926 को आज के ही दिन आगरा में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने समाज में रहकर तपस्वियों जैसा जीवन जिया। उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन को जो दिशा दी, आज उसी का परिणाम है कि हम अयोध्या में भव्य मंदिर को साक्षात देख रहे हैं। मेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है। मैंने न केवल उनके उस जीवन को करीब से देखा बल्कि मुझे उनके साथ इस मिशन से जुड़ने का भी अवसर मिला।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत देश के लाखों युवाओं ने हाल ही में नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञा की है और इसकी जानकारी दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ली है। ये अभियान 100 सप्ताह तक चलेगा। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त युवाओं और विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सितंबर का महीना कुपोषण से लड़ाई को समर्पित है। पोषण माह में अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोग और संस्थाएं इस नेक काम के लिए एक साथ आते हैं।
1: इस पहल के जरिए सस्ते और पौष्टिक स्थानीय खानपान को बढ़ावा दिया जा रहा है। महाराष्ट्र भी इस दिशा में सराहनीय प्रयास कर रहा है। मिजोरम में भी इस साल लोगों ने साथ मिलकर पोषण वाटिकाओं की देखभाल के लिए एक अभियान शुरू किया है। यह मिजो समाज के तलो मडियाना की परंपरा के अनुरूप है। इसका अर्थ है निस्वार्थ सेवा और दूसरों की मदद में हमेशा आगे रहना। ऐसे प्रयास बेहद सराहनीय है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत भविष्य में युद्ध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अपनी क्षमता विकसित कर रहा है ताकि आत्मनिर्भर और भविष्योन्मुखी रक्षा प्रणाली का निर्माण किया जा सके। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश को केवल तकनीक आयात पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा है बल्कि रक्षा तकनीक को विकसित करने का प्रयास भी कर रहा है। जापान एशियाई खेलों में आज अंकुश ने मुक्केबाजी के 80 किलो वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक पक्का किया। तीरंदाजी में भारतीय पुरुष रिकर्व टीम और महिला टीम ने भी सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पुरुषों की ऊंची कूद में श्रीशंकर मुरली और डेविड फाइनल में पहुंच गए हैं। महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में विद्या रामराज और अनु राघवन ने फाइनल में प्रवेश किया। वहीं पुरुषों के 400 मीटर बाधा दौड़ में संतोष कुमार भी फाइनल में पहुंच गए हैं। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 से सहित 30 पदकों के साथ 11वें स्थान पर है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। राज्य में लगातार हो रही बारिश से आज चारधाम यात्रा स्थगित रहेगी। हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश में भी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Abhishek Mukhopadhyay.

पहली नजर में प्यार हो जाने के गहरे और जादुई एहसास को अगर आप व्यक्त करते हुए किसी गाने में सुनना चाहते हैं तो ये गाना आपके लिए है। इस गाने में लता मंगेशकर ने बड़ी ही बखूबी से 1960s के दशक के रोमांस की सादगी और शालीनता झलकती है इस गाने में। इस गाने के बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने और बड़ी ही बखूबी से, बड़ी ही बारीकी से उस मीठी घबराहट का जिक्र है जो किसी खास को देखने पर दिल में होती है। तो आइए आपको सुनवाते हैं ये गीत फिल्म झुक गया आसमां से लता मंगेशकर की आवाज में।

एक जिद्दी पड़ोसी है। पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

संगीतकार ओपी नैयर अपनी धुनों में एक खास लय यानी कि रिदम के लिए जाने जाते थे, जिसे हॉर्स रिदम, घोड़े की ताप जैसी लय भी कहा जाता था। और उनकी इसी लय को, इसी रिदम को आप सुन पाएंगे हमारे इस अगले गीत में। ये हमारा अगला गाना जो है, इसे श्रीनगर की खूबसूरत दाल लेक में फिल्माया गया था शम्मी कपूर और शर्मिला टैगोर के ऊपर में। और श्रोताओ, ये गाना उस फिल्म का है जिस फिल्म से शर्मिला टैगोर ने डेब्यू किया था। और अपनी पहली ही फिल्म में कश्मीर की एक मासूम कली के रूप में उनकी सादगी, शर्मीलापन और उनकी डिंपल वाली मुस्कान ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। तो आइए सुनते हैं इस गीत को।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

यह 1963 में आई थी एक फिल्म जिसका नाम था फिर वही दिल लाया हूं, और इस फिल्म में थे जॉय मुखर्जी और आशा पारेख। और इस फिल्म का एक बेहद ही लोकप्रिय और सदाबहार गीत है जो मैं आपको थोड़ी देर में सुनवाऊंगी। ये गाना अपने दौर के चुलबुले रोमांस और शानदार संगीत का एक बेहतरीन नमूना है। इस गाने के बोल लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने, और उन्होंने बड़ी ही बखूबी से रोमांटिक रोमांटिक वर्ड्स को दर्शाया है। ये गीत बताती है कि भले ही दुनिया में लाखों खूबसूरत चेहरे हों, लेकिन दिल को तो सिर्फ वही एक चेहरा पसंद आता है जो उसके ख्यालों की मलिका हो। तो आइए सुनते हैं ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज में।

बार बार सुनो, हजार बार सुनो। जी हाँ श्रोताओ, हम यही कहना चाहते हैं आपसे कि आप बार बार सुनिए अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। और श्रोताओ, यही बोल हमारे गाने के भी, अगले गाने की बोल भी यही है, बार बार देखो हजार बार देखो। जी हाँ श्रोताओ, ये गाना है फिल्म चाइना टाउन का, जो आई थी 1962 में। और इस गाने ने हिंदी सिनेमा के क्लब डांस और रॉक एंड रोल संगीत की परिभाषा ही बदल दी थी।

श्रोता, मोहम्मद रफी के जितने भी गाने हैं उनकी आवाज ही उन गानों की यूएसपी है। और जी हाँ श्रोता, इस गाने में भी उन्होंने यही कमाल किया है अपनी आवाज से। उन्होंने इस गाने को इतनी जबरदस्त एनर्जी, स्टाइल और जिंदा दिली के साथ गाया कि आज 60 से भी ज्यादा साल बीत चुके हैं उसके बाद भी ये गाना क्लबों में लोगों को थिरकने पर मजबूर कर देता है। और श्रोता, मोहम्मद रफी के दिलचस्प आवाज के साथ अगर आपको शम्मी कपूर के सिग्नेचर डांस स्टाइल, उनके चेहरे के हाव भाव और उनकी अनोखी एनर्जी देखने को मिले तो इस गाने को आइकॉनिक होना ही था। तो आइए सुनते हैं इस गाने को मोहम्मद रफी की आवाज में।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल 0 आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: श्रोतो, आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक का ये आखिरी गीत फिल्म हम जोली से। आप सुनेंगे इस गीत को आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में।

हिंदी क्लासिक म्यूजिक 60s to 80s इस कार्यक्रम को, और आप हमारे साथ बने हुए हैं अरुण एफएम 103.1 MHz पर। चलिए श्रोता, अब आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं हमारा कार्यक्रम हिंदी फिल्मी सॉन्ग्स। और इस गाने में और इस कार्यक्रम में पहला गीत आपके लिए पेश है।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: सेमीफाइनल में प्रवेश कर पदक सुनिश्चित किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सेना के सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया के सामने भारत की आतंकरोधी नीति का एक नया उदाहरण पेश किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया ये देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है।
1: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
0: प्रधानमंत्री ने विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अशोक सिंघल की 100वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि श्री सिंघल ने अपना पूरा जीवन संस्कृति, समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया।
1: 27 सितंबर 1926 को आज के ही दिन आगरा में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने समाज में रहकर तपस्वियों जैसा जीवन जिया। उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन को जो दिशा दी, आज उसी का परिणाम है कि हम अयोध्या में भव्य मंदिर को साक्षात देख रहे हैं। मेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है, मैंने न केवल उनके उस जीवन को करीब से देखा बल्कि मुझे उनके साथ इस मिशन से जुड़ने का भी अवसर मिला।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने इस साल की शुरुआत सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के साथ की। श्री मोदी ने बताया कि सोमनाथ मंदिर के साथ गुजरात के मोढ़ेरा में सूर्य मंदिर को भी ध्वस्त कर दिया गया था।
1: 1026 ईस्वी में जब गजनी द्वारा सोमनाथ विध्वंस हुआ था, उसी साल गुजरात के ही मोढ़ेरा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर पर भी हमला हुआ। यानी मोढ़ेरा मंदिर विध्वंस को भी इस साल 1000 साल हुए हैं, जबकि उस समय इस मंदिर को बने सिर्फ एक ही साल हुए थे। राजा भीमदेव प्रथम ने न केवल गजनी का मुकाबला किया था बल्कि कुछ ही समय में मोढ़ेरा सूर्य मंदिर का पुनर्निर्माण भी करवा दिया। इसी जीवरता के कारण सोमनाथ मंदिर का भी बार बार विध्वंस के बावजूद पुनर्निर्माण होता रहा।
0: श्री मोदी ने लोगों से मोढ़ेरा की गौरवशाली विरासत को देखने की अपील की। प्रधानमंत्री ने आगामी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती की चर्चा करते हुए कहा कि स्वच्छता बापू के जीवन के मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है।
1: कुछ ही दिनों बाद 2 अक्टूबर है, पूज्य बापू की जयंती का दिन। बापू ने हमें जीवन के बहुत से मंत्र दिए हैं, स्वच्छता भी उनमें से एक है। हाल के दिनों में मैंने कहीं मध्य प्रदेश में कुछ नौजवान नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, उनके छोटे से प्रयास में पूरा समाज जुड़ रहा है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में युवा पुरानी बावड़ियों और कुओं की सफाई कर रहे हैं, इससे हमारी पुरानी धरोहरों उसे फिर से संवारने का काम हो रहा है, स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि देश भर में नशा मुक्त युवा अभियान हाल ही में शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त युवाओं और विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा।
1: युवाओं ने नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञा ली और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ली। ये सब हो रहा है नशा मुक्त युवा अभियान के तहत। इसमें माय भारत के वॉलंटियर शामिल हैं और जागरूकता के कार्यक्रम हुए हैं। नशा मुक्ति का संदेश, हमारे युवा खुद इस संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। माय भारत पर एंथेम, स्लोगन राइटिंग और नुक्कड़ नाटक जैसी अलग अलग प्रतियोगिताएं हुई है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सितंबर का महीना कुपोषण से लड़ाई को समर्पित है।
1: इस पहल के जरिए सस्ते और पौष्टिक स्थानीय खानपान को बढ़ावा दिया जा रहा है। महाराष्ट्र भी इस दिशा में सराहनीय प्रयास कर रहा है। मिजोरम में भी इस साल लोगों ने साथ मिलकर पोषण वाटिकाओं

0: की देखभाल के लिए एक अभियान शुरू किया है। यह मिजो समाज के तलो मडयाना की परंपरा के अनुरूप है। इसका अर्थ है हमेशा आगे रहना। ऐसे प्रयास बेहद सराहनीय है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि इस महीने पूरी श्रद्धा और उत्साह से गणेश उत्सव मनाया गया। थाईलैंड के
2: विदेश में भी है, वहां भगवान गणेश की पूजा का फ्रा फिकानेत के रूप में की जाती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के साबरमती में देश की पहली एलएनजी चालित रेलगाड़ी को रवाना किया। उन्होंने 1,500 करोड़ रूपये से अधिक लागत वाली रेल विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षो में भारतीय रेलवे में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं।
3: नरेन्द्र मोदी जी आए हैं, उन्होंने अनेक प्रकार की नई सुविधाएं रेलवे में लाए, रेलवे को आधुनिक किया और अब जेएनपीटी मुंबई से वडोदरा तक पहली लॉन्ग होल डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन का सफलतापूर्वक ट्रायल पूरा हो गया है। देश में माल की आवाजाही के लिए टैक्स कम है, मगर उस वक्त डबल डेकर मालगाड़ी की कल्पना सफल हो जाए तो हमारी वहन क्षमता दोगुनी हो जाएगी।
2: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि भारत भविष्य के लिए अपनी युद्ध क्षमता विकसित कर रहा है। आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश को केवल तकनीक आयात पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा है, बल्कि रक्षा तकनीक को विकसित करने का भी प्रयास कर रहा है।
4: पिछले 12 वर्षों में हमारे डिफेंस सेक्टर की न केवल क्षमता बढ़ी है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने को लेकर हमारे अप्रोच में भी बहुत बड़ा बदलाव आया है। अब हमारा ध्यान वर्तमान की जरूरतों को पूरा करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आज हम आत्मनिर्भर और फ्यूचर ओरिएंटेड डिफेंस इकोसिस्टम बनाने की दिशा में भी तेजी से अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं।
2: थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि देश की रक्षा तैयारियों के लिए उत्पादन में आत्मनिर्भरता काफी नहीं होगी, बल्कि लंबे संघर्ष की स्थिति में अपनी सैन्य क्षमता बनाए रखना और अनुकूलन क्षमता भी महत्वपूर्ण है। एक रक्षा सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि युद्ध का स्वरूप, तकनीक और अवधि तेजी से बदल रही है, जिसके लिए क्षमता विकास और आत्मनिर्भरता भी तेजी से विकसित करनी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में जानेंगे कि कैसे सरकार का स्टार्टअप अभियान रोजगार सृजन को बढ़ावा दे रहा है और प्रमुख तकनीकी क्षेत्रों के लिए काम कर रहा है।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में स्टार्टअप इंडिया का आह्वान किया, जिसने एक जीवंत उद्यमिता संस्कृति की नींव रखी और रणनीतिक क्षेत्रों में निजी भागीदारी के लिए नए रास्ते खोले। पिछले दशक में स्टार्टअप्स की संख्या 350 से बढ़कर 2 लाख से अधिक हो गई है, जिससे 25 लाख से अधिक नौकरियां पैदा हुई हैं। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। बेंगलुरु को भी इस स्टार्टअप इकोसिस्टम से फायदा पहुंचा है। यहां 17,000 से अधिक स्टार्टअप्स का केंद्र है, जो वैश्विक बाजार के लिए उत्पादों का डिजाइन और इंजीनियरिंग कर रहा है। सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिकुलर प्लेटफॉर्म या सी कैंप भारत का प्रमुख रिसर्च और इनोवेशन हब है और सबसे बड़े लाइफ साइंसेस इंक्यूबेशन में से एक है। इनएक्सेल के सह संस्थापक और निदेशक नीतीश कुमार जहांगीर आकाशवाणी से बात करते हुए सी कैंप और भारत सरकार से मिले सहयोग के लिए धन्यवाद देते हुए बताया है।
6: इनएक्सेल में हमारा जो विजन है इस टू मेक श्योर की जो नई नई टेक्नोलॉजीज को डेवलप करके कि आप जो पीएचसीज हैं और जो लास्ट माइल हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें आप टेक्नोलॉजी के थ्रू कैसे हम नवजात शिशु की जो डेथ रेट है उसको रिड्यूस करें, एआई के थ्रू अदर टेक्नोलॉजी के थ्रू हम कैसे गैप को कम से कम करें, मेटरनल मोर्टेलिटी है जो मदर्स की डेथ रेट है और उसको हम कैसे कम करें, आईसीयू में हम और कैसे इम्प्रूवमेंट लाएं। इनएक्सेल को जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बहुत सपोर्ट मिला है।
5: स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न एक सहायक इकोसिस्टम बनाने में मदद कर रहे हैं, जिससे स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न देश अपनी डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ उठा सके और एक वैश्विक इनोवेशन हब के रूप में उभर सके। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड

0: अलर्ट जारी किया है। राज्य में लगातार हो रही बारिश से आज चारधाम यात्रा स्थगित रहेगी। हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश की आशंका है। वहीं दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश में भी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। आज विश्व पर्यटन दिवस है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अब पर्यटन रोजगार, स्थानीय अर्थव्यवस्था और विकास का एक सशक्त आधार भी बन रहा है। श्री शेखावत ने कहा कि देश की समृद्ध विरासत, संस्कृति और प्राकृतिक विविधता देश के लाखों युवाओं के लिए नए अवसरों का स्रोत बननी चाहिए। एशियाई खेलों में आज अभय सिंह और अनाहत सिंह ने स्क्वैश सिंगल्स में रजत पदक हासिल किए। दोनों खिलाड़ी अपने अपने फाइनल मुकाबले में मलेशियाई खिलाड़ी से हार गए। मुक्केबाज अंकुश पंघाल ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर पदक सुनिश्चित किया। वहीं तीरंदाजी में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने रिकर्व और कंपाउंड दोनों स्पर्धाओं के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पुरुषों की ऊंची कूद में श्रीशंकर मुरली और डेविड फाइनल में पहुंच गए हैं। महिलाओं के 400 मीटर बाधा दौड़ में विद्या रामराज और अनु राघवन ने फाइनल में प्रवेश किया। पुरुषों के 400 मीटर बाधा दौड़ में संतोष कुमार भी फाइनल में पहुंच गए हैं। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 14 रजत और 14 कांस्य सहित 32 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है। तिरुवनंतपुरम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला एक दिवसीय क्रिकेट मैच खेला जा रहा है। वेस्टइंडीज ने ताजा समाचार मिलने तक 4 ओवर में किसी नुकसान के 38 रन बना लिए हैं। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल 2 दिन के राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का नई दिल्ली में उद्घाटन करेंगे। कृषि विभाग आगामी रबी मौसम के लिए प्रमुख प्राथमिकताओं और तैयारियों पर विचार विमर्श करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। सम्मेलन में केंद्र और राज्य समन्वय को मजबूत करने और कृषि उत्पादन, उत्पादकता, स्थिरता और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कार्यनीति विकसित करने पर भी वे विचार विमर्श करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज एक दिन के आधिकारिक दौरे पर केरल पहुंचे। वे कोल्लम के अमृतापुरी में माता अमृतानंदमयी के 73वें जन्मदिन समारोह में शामिल हुए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि माता अमृतानंदमयी का पूरा जीवन मानवता के प्रति प्रेम और सेवा के संदेश से परिपूर्ण रहा है। उपराष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री वीडी सतीशन के साथ मिलकर नेपाल में बाढ़ग्रस्त इलाकों के लिए माता अमृतानंदमयी मठ की ओर से भारत में नेपाल के राजदूत सुरेंद्र थापा को 2 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में श्री लावरोव ने कहा कि रूस भारत और ब्राजील को स्थायी सदस्य बनाए जाने का समर्थन करता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ने विश्व को भारत की आतंकवाद रोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि आतंकवादी हमलों का वह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने नशा मुक्त अभियान के लिए लोगों से मिलकर काम करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने लोगों से जनगणना में शामिल होने और स्वगणना सुविधा का उपयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। गृहमंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के साबरमती में देश की पहली LNG चालित रेलगाड़ी को रवाना किया। उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और एशियाई खेलों में अभय सिंह और अनाहत सिंह ने स्क्वैश सिंगल्स में रजत पदक हासिल किए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से प्रसारित मिडडे न्यूज तथा दोपहर समाचार, और आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुन पा रहे हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब श्रोताओं, अरुण एफएम पर वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम का, यानी कि कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s का। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे 90s के दशक के कुछ बेहतरीन गानों को, और आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे 90s की बेहद ही खूबसूरत अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे के कुछ यादगार गानों को। तो चलिए शुरू करते हैं इस कार्यक्रम को हमारे पहले गाने के साथ। आप सुनेंगे इस गाने को हरिहरन और साधना सरगम की आवाज में।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं सोनाली बेंद्रे के कुछ यादगार गीतों को। श्रोताओं, सोनाली बेंद्रे ने अपने करियर की शुरुआत एक मॉडल के रूप में की थी और उन्होंने 19 साल की उम्र में ही ईयर 1994 में आई फिल्म आग से अपने करियर की शुरुआत की थी और इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर लक्स न्यू फेस ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था। उसके बाद उनकी और सारी कई फिल्में आई थी जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर तो उतना अच्छा कमाल नहीं किया, पर उनके गाने बेहद यादगार रहे हैं आज भी। और चलिए आपको सुनवाते हैं ऐसी उनकी फिल्म दिल जले से इस गीत को।

श्रोताओ, हम बात कर रहे हैं सोनाली बेंद्रे की फिल्म दिल जले के बारे में। सोनाली बेंद्रे की बहुत सारी फ्लॉप फिल्मों के बाद फिल्म दिल जले से उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर कमबैक किया था। इस फिल्म में थे उनके साथ अजय देवगन और इस फिल्म से उनकी जोड़ी काफी हिट रही है। इस फिल्म की गाने की बात करें तो बहुत ही पॉपुलर हुए थे बहुत सारे गाने, उसमें से एक गाना आपने अभी सुना है और हम आपको एक और गाना सुनवाने चाहते हैं जो इससे भी ज्यादा पॉपुलर हुई थी, जिसे आप सुनेंगे कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। सूर्य घर।
4: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
5: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
4: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।

फिल्म दिलजले के बाद सोनाली बेंद्रे की अगली फिल्म आई थी मेजर साहब 1998 में। इस फिल्म में उनके साथ थे अमिताभ बच्चन और अजय देवगन। उस दौर में अमिताभ बच्चन के करियर में कठिन समय चल रहा था और मेजर साहब की सफलता ने उनके करियर को भी एक बार फिर नई रफ्तार दी थी। और अमिताभ बच्चन और अजय देवगन की जोड़ी को दर्शकों ने पहली बार बड़े पर्दे पर देखा और इसे काफी पसंद किया है। और इस फिल्म की सफलता की बहुत बड़ी कारण थी इस फिल्म के गाने। तो आइए आपको सुनवाते हैं इस फिल्म का ये एक बहुत ही प्यारा सा गाना।

प्यारे श्रोताओं, आप आनंद ले रहे थे इन सारे गीतों का हमारे कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s में, जिसे आप सुन रहे थे अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। और श्रोताओं, आपसे थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे अंग्रेजी में समाचार, जिसके तुरंत बाद आप सुन पाएंगे मिश्मी कमाल श्रोताओं का कार्यक्रम। तो कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

siam pema khandu tourism san wan wing fa culture nang chenchen kra la ne king fa celebrate kan ne khaim san me ra an tourism de fi king wan opportunity than san me king lat we show to khan chaut kat ne ga kum but khai san san me wi ka tin nang hera an chok khrem de pema khandu wan to king wan king fa to tourism town hum ta he to king fa culture and heritage and preserve to kadom sa kara king fa environment san big lat long than exit safak ne tha ne ka tourism promote kat nem sa ne khai man rango when governor lieutenant general kati patnaik ka jiro valley hai hong village hai nara aba winery san ne phone achil me wi kara mr tagi rita tha ke san gavi team san nya winery san sa phone ka chil me wi kara governor vika wan to an tagi rita an ni wan te kon kun ka chil me to wi wan to show king lat dong ar chal rato kung nam la saman san showing use ke man to to wing ga hala kiwi se saman ne kiwi agriculture sector hala wan la ne ka wine tra ka all india he jiatic thi kat ne wi wi ne msaw ne tak tak type ko ka chal me wi kara to ja king around our on first organic kiwi wine wan wi ka tra kar ne wi ne appreciate ko ka chal me wi gango wan तो अन्य उनकी ना आगे तो बड़ा है नरा आबास ने अभी का वन तो उनसन एग्रीकल्चर सिस्टम सन खुद करने का तो भी हला नहीं थी मदद कम मिलने का कहे कचल में रोटी नंग है रावन गो एवं मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट पंचायत राज एंड मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज ओजिंग ताशिंग का वी एवं चेयरमैन सुचलमैन चेयरमैन सुचलमैन जा पावर हाईलाइट कॉम्पिटिशन पा मल्टी प्रपोज जा डेम मन पा तो वी दोम तो आहे ग्लात चोक नंग पुलिस नंग इन दंग फुट कम नचल में तो डेम द सब मावा द सब मा वन बार ही तुक टांग है तो वन वन ये थोक ने का वी दोम चल में तो सो ग्लात चोक नंग सिट रुने रा ने का प्राइ ने का तो शाउट का छोट हा तो विंग पा ग्लात लुंग रही मने शाउ कम इफेक्ट समुद उठा उन सोट प्राइ ने का हाई अपर शंक्स डीसी थाव का चल में वही का तो ग्लात चोक से नंदन एग्रीसिप सम तहे तो डीसी ऑफिस ने पहला मिलिट्री सने था मोचल में वे का तो अन्य वन कसे थे तक थे तो ग्लास तो ना मुझे मतलब ने कसे मीटिंग तक ने का क्रेप मोचल में और तीन अंग है वांग ngo we injun sun pha main environment chen wan archery hit wan to semi final tin ot chal me to ngo e wan which ngo e wan ching to ko main sun wan we sa sun ka wan ko भूटान वन पॉइंट किसम का पे कदा चल में रा वोमेंसन का वन सात पॉइंट का पे कदा चल में जा काजिस का तन सन वे तीन अंग हेरा तो वे सहला वे सहला वे वन वन सहिल जवाब गणेश उनसो का मणि रत्नन कौशल अवि दलत उनसन का विंग भूटान रू ने पे कदा चल में रक में सहला वन चकिता त्रिपाणी उनसो का ज्योति सुखा विना एंड पार्टिकल प्रदीप उनसन का कजिस का तांसन पेग तब डा तो विंग वन तो सेम फाइनल है वन मेन एंड ओबेन किन से वन तो साउथ कोरिया सन पाई किली मटाओ डा वार डोंगा अंसो में किंग बाक मान लाइक उनसों पायम का है वार तो कमान तुम जाती गेट निंग आम

श्रोताओं, आप सुन रहे थे ताई खामती श्रोताओं का कार्यक्रम, और इनके कार्यक्रम को आगे भी अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप ट्यून इन कर सकते हैं आकाशवाणी ईटानगर के मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज पर। और श्रोताओं, आप हमारे साथ बने हुए हैं अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, बढ़ते हैं हमारे अगले कार्यक्रम की ओर और आपको देते हैं कुछ बॉलीवुड की अपडेट्स।

श्रुता हाल ही में संजय लीला भंसाली की आने वाली फिल्म लव एंड वॉर का पोस्टर सामने आया है और इस फिल्म के पोस्टर के सामने आते ही आलिया भट्ट और विक्की कौशल ने शाही अंदाज में रैंप पर जलवा बिखेरा है। मुंबई में मनीष मल्होत्रा के मिजवान फैशन शो में एक्टर विक्की कौशल और आलिया भट्ट शो स्टॉपर बने और उन्होंने लव एंड वॉर फिल्म में अपनी ऑन स्क्रीन जोड़ी की एक झलक पेश की है। उनका रैंप वॉक संजय लीला भंसाली की इस फिल्म के नए कैरेक्टर पोस्टर्स के रिलीज होने के साथ ही हुआ है। संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित और प्रोड्यूस किए गए इस प्रोजेक्ट में रणबीर, आलिया और विक्की कौशल एक साथ नजर आएंगे। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट इससे पहले ब्रह्मास्त्र में साथ काम कर चुके हैं। आलिया और विक्की कौशल ने राजी में साथ काम किया था, जबकि रणबीर और विक्की आखिरी बार फिल्म संजू में नजर आए थे, लेकिन पहली बार होगा कि जब इन तीनों को एक ही फिल्म में हम देख पाएंगे। फिल्म लव एंड वॉर दो सैन्य अधिकारियों के बीच है। उनके जीवन में जब एक महिला आती है तो उनके इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। ये फिल्म रिलीज होगी 21 जनवरी 2027 को और हमें तभी पता चलेगा कि इस फिल्म में इन किरदारों ने किस तरह का काम किया है। तो आई श्रोता, उससे पहले हम आपको सुनवाते हैं उनके कुछ पुराने फिल्मों के गीतों को।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम बॉलीवुड अपडेट अरुण FM 103.1 MHz पर। और अब से थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे वांचो श्रोताओं का कार्यक्रम। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: ta ra haning ka ba ma atata ang apono le ko ka taida chele ban ke bo ma atata to ju ta kya ta kon hayaba ma bangnu ching se theba national aids helpline 1097 ma itto twa kai eya ka bangnu san pak ma le dhs nahal gan to ke arunachal pradesh state aids control society ji ma khang e aile kha kha kha ka ju ivai
1: श्रोताओ आप सुन रहे थे वांचो श्रोताओं का कार्यक्रम और आप हमारे साथ बने हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओ अगर आप वांचो श्रोताओं के आगे के कार्यक्रम को भी सुनना चाहते हैं तो आप ट्यून इन कर सकते हैं मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओ अरुण एफएम पर वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम का यानी कि हिंदी फिल्मी गीतों का। तो चलिए श्रोताओ आपको सुनवाते हैं कुछ बेहतरीन गाने।

0: project ajuna ngawe chichauda laga chikha special youth oriented program he my health my prat lane my bharat arunachal pradesh done youth wing raj yoga education research foundation and brahma kumaris itanagar brahma kumaris raj yoga meditations and de addiction center delhi public school jolang itanagar me ambrogine akahi bachikha echa program he minister of youth and sports affair government of india ko komane mea alambro physical health mental well being done health lifestyle de addictions ge bane akahi bachikha indian men's ne women's compound archery team he tota category mane asian game tano ema he aichi nagoya japan mane akha maho uni semi final ma ke hi bachikha men's trio sahil jadhav ganesh मनी राथम दोने खुशल दलाल में भूटानवा 235-232 पॉइंट माने आने सेमीफाइनल मा खिया माहो साउथ कोरिया गोतानो एमआईया वेचिखा वुमेन्स टीम चिकिता तानीपार्थी ज्योति सुरेखा वेनम दोने प्रीतिका प्रदीप में कजाकिस्तान वा 235-230 माने आने गेने सेमीफाइनल मा खिया ही बा माहो साउथ कोरिया गो तानो एमआईया वे चिखा इंडियन वुमेन शॉर्ट बोर्ड तानो एमामा सुगर संति गायन ने कमाली प्रकाश में थर्ड राउंड मा खिया ही बा माहो सुगर संति में चेन वुंग यू चाइनीज टाइपिया वा 7.33 माने आने गेने माहो कमाली प्रकाश में सिंगापुर माची कैमिली मेरिया व 7.57 पॉइंट माने आने ही बाचिखा क्वार्टर फाइनल है अने तानो एमआई ओ महो इंडिया एचओ लीबर आसुहु मेडल आने ही बा महो गोल्ड मेडल होलोनी सिल्वर होलोपी ब्रॉन्ज होलोपी आने ही बाचिखा एचमता आशियाओ से खेमो ने है तांदो अन्य मिनाची आशी चाहूजी
1: HIV embe chipo asawe auda kaga
2: HIV hembe he HIV gila mingchi iyu ga doga ga kandune ji doga ga HIV hembe gila injection thapo BGG tha doga ga mane HIV khi ali oda HIV hembe gila nani me a ga mane kha doga I
1: HIV embe he japa ji ge akon ga ge jepa hatu ga ge ai odone arundo me thoba mane HIV embe khi gumi
2: अलने HIV हेम्बे गई जिंगाची तमाको आतुसुवे अरुंदा खागा हेम्बे गई ओबोचामा असागा गई गो अबो एंगो याबु इजिगा आतुचितोगा हिवे HIV हेम्बे इजी मी कबा असागा अलाजीजी तमाको आगुतेने आतुसुजी इचा HIV हेम्बे चिप्रोमा इचिबु असावदा वोगा इबुया है नेशनल एड्स हेल्पलाइन जी नंबर खगे जीरो खिनी उमा कॉल एजी इचा को बह अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज नाहरलगुन में चिमे लाहेगा
3: श्रोताओं आप सुन रहे थे ईद मिश्मी श्रोताओं का कार्यक्रम। अगर आपके इनके कार्यक्रमों को आगे भी सुनना चाहते हैं तो आप ट्यून इन कर सकते हैं आकाशवाणी ईटानगर के मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज पर। और श्रोताओं आप हमारे साथ बने हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। और आइए श्रोताओं हिंदी फिल्मी गीतों के कार्यक्रमों को जारी रखते हुए आपको सुनवाते हैं एक और गीत।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
0: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं।

श्रोताओ, आप सुन रहे थे इन सारे प्यारे गानों को हमारे कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स में, और अब से थोड़ी देर बाद आप सुन पाएंगे तांगसा श्रोताओं का कार्यक्रम। और श्रोता, उसी के साथ ही समाप्त होता है हमारा आज का दूसरा ट्रांसमिशन, और अब से थोड़ी देर में हमारे तीसरे ट्रांसमिशन के लिए आपके साथ जुड़ेंगे आरजे सुलोकना। तो इसी के साथ ही मैं आपकी रेडियो साथ ही आप वामिन सुपी आपसे विदा लेती हूँ। हम कल फिर मिलेंगे हमारे सेकेंड ट्रांसमिशन में।

एर आकाशवाणी इटानगर डिब्रुगढ़ मचौसा डुबात देवबासा पांग हाजनेरा खक्रक पांग सेप्टेम्बर जिलिंग रंगख्रास ने तारीख आरो रंगजा बलै बै खु मिनिट थौर नांसो नांतांसा प्रोग्राम तफांग्राय मचौ रंगजा रुंग्रांग रो खवांग कोनका मामाय र इंडियन आर्मी र पाकिस्तान मुंग नांग टेररिस्ट तोंचंग प लोंरो रे नांग मुंग आन्या काउंटर टेररिज्म पॉलिसी प मुंगकांग म तखय तु मुरो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी र मचौसा आकाशवाणी नांग अपि मन की बात प्रोग्राम नांग मुंगवांग मई म मसौ फानबाय त परिजु फान त इंडिया र निनापसा सगान नांग सर्जिकल स्ट्राइक टेंथ एनिवर्सरी सरियंग चिंगो मोदी र फान त आरो सराय इंडियन आर्मी हेर टेररिज्म सांगनांग एक्शन लामने लोंगमंग मुरो लाइन ऑफ कंट्रोल प लाइखाम मुंगकांग प कांगयांग तुंग फानद आरो टेररिस्ट मैर इंडिया सांगनांग लोंगरो मुंगर रमांग मरन दखा रो सर्जिकल स्ट्राइक प कुरित मो मोदी र फानद बालाकोट एयर स्ट्राइक म आरो ऑपरेशन सिंदूर मसो कचै पांसै तुंगनांग टेररिस्ट र लोंत मासम प नरीम लोंचिंग रो इंडिया र रोतंग प्राइम मिनिस्टर फांत रमांग नंग नांगमुंग नांग बुमलांग प अलिंगदै फोकतवांग मचोहै इंडिया र टेररिज्म संगनांग जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लामलु प लामरो चम कयांग र प मुंगकांग मुंगवांग मैर खैरुंग प्राइम मिनिस्टर फांत चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू र मचौसा वोल तोरियम दे सकान स्टेट वांगमई म ग्रीटिंग स्कूत तोरियम र मई हेंग नई कल्चर प आदम नंग ततोम र मोरो चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू र सोशल मीडिया पोस्ट नंग फांत आरो तोरियम र हेरिटेज नई एनवायरमेंटल एनवायरमेंट प होंगकांगरो रे लोकल मई म हुबिदा थलाप म थलाप र प्रखा म तोरियम प अमाय तयांगरंग मोरो चीफ मिनिस्टर र वडोप मई म रोखेप त अरुणाचल प्रदेश गवर्नर केटी परनाई र मनैसा जीरो वेली वंग होंग केंग नंग नारा आबा वाइनरी प राइक त प्रजु अपीर वाइनरी फाउंडर मई मेसेस तागे रीता ताखे यम नई वाइनरी वांग मई हेंग जाम रहम त मेसेस तागे रीता र लोकल एग्रीकल्चरल रिसोर्सेस प नेशनल

श्रोता दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे तांगसा श्रोताओं का समाचार। इस कार्यक्रम को आगे सुनने के लिए आप अभी ट्यून इन कर सकते हैं आकाशवाणी ईटानगर के मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज तथा डीआरएम 666 किलोहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम है, जिसे आप सुन रहे हैं एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर।

जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। कहते हैं कि हर शाम सिर्फ दिन का अंत नहीं होती, कभी कभी नए हौसलों की शुरुआत भी होती है। इसी नोट पर हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग डियर लिसनर्स। इन्हीं नए एहसासों और ढेर सारी सकारात्मक ऊर्जा के साथ आप सभी का आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर तहे दिल से स्वागत करते हैं। और दोस्तों, इससे पहले यानी कि दूसरी प्रसारण सभा में आप सुन रहे थे RJ सुम्पी को, और अब मैं हूँ आपके संग आपके रेडियो दोस्त सुलोकना। और अब से लेकर रात्रि के 9:30 तक इस तीसरी प्रसारण सभा में आप सभी के संग यही बने रहूंगी। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इस तीसरी प्रसारण सभा के कार्यक्रमों को आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचाने में हमारा साथ दे रहे हैं तमाम FM ट्रांसमीटर के सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक गैर रहते तथा तकनीकी अभियंता पीबी देवरी।

तो चलिए अब बढ़ चलते हैं इस तीसरी प्रसारण सभा के सबसे पहले कार्यक्रम की ओर, जो है ज्ञान और मनोरंजन का सेगमेंट गुड इवनिंग ईटानगर।

Good evening, Itanagar. कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर में आप सभी लिसनर्स का पुनः स्वागत करते हैं। आप सुन रहे थे खबर नहीं, फिल्म दोस्ताना से अमानत अली, राजा हसन, विशाल दादलानी एवं श्रेया घोषाल की आवाज में।

ज्ञान और मनोरंजन के इस सेगमेंट में मैं आज फिर लेकर आई हूँ एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लिसनर्स को पसंद आए। कार्यक्रम में आज हम आपके लिए पेश कर रहे हैं छोटी सी कहानी जिसका शीर्षक है दुख और नमक। एक बार की बात है, एक युवक गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, महात्मा जी, मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूँ, कृपया इस परेशानी से निकालने का उपाय बताइए।

बुद्ध बोले, पानी के गिलास में एक मुट्ठी नमक डालो और उसे पी जाओ। युवक ने वह पानी पीते ही कहा, बहुत ही खराब, एकदम खारा है। बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, एक बार फिर अपने हाथ में एक मुट्ठी नमक ले लो और चलो मेरे पीछे आओ। तो गौतम बुद्ध और युवक दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे और थोड़ी दूर जाकर स्वच्छ पानी से बनी एक झील के सामने रुक गए। गौतम बुद्ध ने कहा, चलो अब इस नमक को इस झील में डाल दो। युवक ने ऐसा ही किया। फिर बुद्ध ने कहा, अब इस झील का पानी पियो। फिर युवक ने वही माना, वो पानी पीने लगा झील से। फिर बुद्ध ने पूछा, बताओ इसका स्वाद कैसा है, क्या अभी भी तुम्हें ये खारा लग रहा है?

तो जैसा कि आपने सुना कि बुद्ध ने युवक को उस झील में नमक डालने को कहा और पानी पीने का आदेश दिया। युवक ने वही किया और फिर बुद्ध ने पूछा कि इसका स्वाद कैसा है, क्या तुम्हें अभी भी ये खारा लग रहा है? तो युवक ने कहा, नहीं, ये तो मीठा है, बहुत अच्छा है। बुद्ध युवक के बगल में बैठ गए और उसका हाथ थामते हुए बोले, जीवन के दुख बिल्कुल नमक की तरह है, ना इससे कम ना ज्यादा। जीवन के दुख की मात्रा वही रहती है, बिल्कुल वही, लेकिन हम कितने दुख का स्वाद लेते हैं ये इस पर निर्भर करता है कि हम उसे किस पात्र में डाल रहे हैं। फिर वे कहते हैं कि इसीलिए कि जब तुम दुखी हो तो सिर्फ इतना कर सकते हो कि खुद के मन को बरा कर लो।

सुख और दुख जीवन के हिस्से हैं, लेकिन सुखी वही है जो सदा संतुष्ट है। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको इससे प्रेरणा मिली होगी। इसी नोट पर कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनवाते हैं गुड इवनिंग ईटानगर का आज के इस अंक का अगला नगमा, फिल्म सिंग इज किंग सिंह।

राहत फतेह अली खान, श्रेया घोषाल की आवाज में आप सुन रहे हैं ये गीत सिंग इज किंग से। आपको बताना चाहेंगे डियर लिसनर्स कि इसी गीत के साथ ही हम आप सभी को छोड़े जा रहे हैं, क्योंकि अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और उसके तुरंत बाद आप सुन पाएंगे अंग्रेजी में समाचार, और शाम के ठीक 5 बजे से आप सुन पाएंगे नौकते श्रोताओं का समाचार। शाम के 5:05 पर हम फिर हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव, बस यही आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम पर। तब तक के लिए बने रहे और सुनते रहे आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: रहते हैं मेरे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप दादू याजो से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ने विश्व को भारत की आतंकवाद रोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया। आगे भी आतंकवादी हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने नशा मुक्त युवा अभियान के लिए लोगों से मिलकर काम करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने लोगों से जनगणना में शामिल होने और स्वगणना सुविधा का उपयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। गृहमंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने गुजरात के साबरमती में देश की पहली LNG 40 रेलगाड़ी को रवाना किया। उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और एशिया खेलों में अभय सिंह और अनाहत सिंह ने स्क्वाश सिंगल्स में रजत पदक हासिल किए। भारत तथा वेस्ट इंडीज के बीच 3 मैच की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सेना की सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया के सामने भारत की आतंकरोधी नीति का एक नया उदाहरण पेश किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया ये देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी। बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवाद भारत पर आंखें उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमले ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल sc.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है। प्रधानमंत्री ने विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम अध्यक्ष अशोक सिंगल को 100वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि

अर्पित की। उन्होंने कहा कि श्री सिंघल ने अपना पूरा जीवन संस्कृति, समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। 27 सितंबर 1926 को आज ही के दिन आगरा में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने समाज में रहकर तपस्वियों जैसा जीवन जिया। उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन को जो दिशा दी, आज उसी का परिणाम है कि हम अयोध्या में भव्य मंदिर को साक्षात देख रहे हैं। गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल केटी परनायक ने कल जीरो वैली के होंग गांव में नारा अबा वाइनरी का दौरा किया और उसकी फाउंडर सुश्री तागेरिता तखे और वाइनरी टीम के सदस्यों से बातचीत की। गवर्नर ने सुश्री तागेरिता की शानदार एंटरप्रेन्योरशिप यात्रा और एक स्थानीय कृषि संसाधन को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने जाने वाले ब्रांड में बदलने के लिए उनकी तारीफ की। उन्होंने कहा कि नारा आवा, जो भारत का पहला ऑर्गेनिक कीवी वाइन उद्यम है, स्थानीय संसाधनों पर आधारित इनोवेशन, लगन और वैल्यू एडिशन का एक बेहतरीन उदाहरण है। ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं में वाइनरी के योगदान की सराहना करते हुए गवर्नर ने कहा कि नारा आवा जैसे वैल्यू एडिशन पहल किसानों को बेहतर रिटर्न सुनिश्चित करके कृषि इकोसिस्टम को मजबूत करती है। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश देश की प्रमुख कीवी उत्पादक क्षेत्रों में से एक है और स्थानीय उपज को प्रोसेस करने वाले उद्यम बर्बादी को रोकने के साथ साथ आय और रोजगार के नए अवसर पैदा करने में मदद करते हैं। आज ईटानगर के जोलांग में दिल्ली पब्लिक स्कूल के पास स्थित ब्रह्म कुमारी राजयोग मेडिटेशन एंड डी एडिक्शन सेंटर में माई हेल्थ माई प्राइड विषय पर युवाओं के लिए एक खास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसे माई भारत, अरुणाचल प्रदेश और राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन व ब्रह्म कुमारी ईटानगर की यूथ विंग ने मिलकर आयोजित किया। भारत सरकार की युवा मामले और खेल मंत्रालय की देखरेख में आयोजित इस कार्यक्रम का मकसद युवाओं में शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक सेहत, भावनात्मक मजबूती और स्वस्थ जीवन शैली, नशा मुक्ति और जिम्मेदारी नागरिकत्व के प्रति गहरी जागरूकता पैदा करना है। इसमें खास तौर पर इस बात पर जोर दिया जाएगा कि स्वास्थ्य को सिर्फ एक व्यक्तिगत चिंता के बजाय सेहत, आत्म अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी की सामूहिक संस्कृति में कैसे बदला जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि भारत भविष्य के लिए अपनी युद्ध क्षमता विकसित कर रहा है। आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश केवल तकनीक आयात पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा, बल्कि रक्षा तकनीक को विकसित करने का प्रयास भी कर रहा है। पिछले 12 वर्षों में डिफेंस सेक्टर की न केवल क्षमता बढ़ी है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने को लेकर अप्रोच में भी बहुत बदलाव आया है। अब हमारा ध्यान वर्तमान की जरूरतों को पूरा करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हम आत्मनिर्भर और फ्यूचर ओरिएंटेड डिफेंस इकोसिस्टम बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा कि देश की रक्षा तैयारियों के लिए उत्पादन में आत्मनिर्भरता काफी नहीं होगी, बल्कि लंबे संघर्ष की स्थिति में अपनी सैन्य क्षमता बनाए रखना और अनुकूलन क्षमता की महत्वपूर्ण है। एक रक्षा सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि युद्ध का स्वरूप, तकनीक और अवधि तेजी से बदल रही है, जिसके लिए क्षमता विकास और आत्मनिर्भरता भी तेजी से विकसित करनी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 में स्टार्टअप इंडिया का आह्वान किया, जिसने एक जीवंत उद्यमशीलता संस्कृति की नींव रखी और रणनीतिक क्षेत्रों में निजी भागीदारी के लिए एक नए रास्ते खोले। पिछले एक दशक में स्टार्टअप की संख्या 350 से बढ़कर 2 लाख से अधिक हो गई है, जिससे 25 लाख से अधिक नौकरियां पैदा हुई है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। बेंगलुरु को भी स्टार्टअप इकोसिस्टम से फायदा पहुंचा। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। राज्य में लगातार हो रही बारिश से आज 4 धाम यात्रा स्थगित रहेगी। हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने भी तेज बारिश की आशंका है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश में भी बारिश की संभावना है। आज विश्व पर्यटन दिवस है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पर्यटन रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था और विकास का एक
सशक्त अधिकार भी बन रहा है। श्री शेखावत ने कहा कि देश के समृद्ध विरासत, संस्कृति और प्राकृतिक

0: विविधता देश के लाखों युवाओं के लिए नए अवसरों का स्रोत बननी चाहिए। जापान एशियाई खेलों में आज अभय सिंह और अनाहत सिंह ने स्क्वाश सिंगल्स में रजत पदक हासिल किए। दोनों खिलाड़ी अपने अपने फाइनल मुकाबले में मलेशियाई खिलाड़ियों से हार गए। मुक्केबाज अंकुश पंगाल ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर पदक सुनिश्चित किया। तीरंदाजी में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने रिकवर और कंपाउंड दोनों स्पर्धाओं के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पुरुषों की ऊंची कूद में श्री शंकर मुरली और डेविड फाइनल में पहुंच गए हैं। महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में विद्या सम्राज रामराज और अनुरागवन ने फाइनल में प्रवेश किया। पुरुषों के 400 मीटर बाधा दौड़ में संतोष कुमार भी फाइनल में पहुंच गए हैं। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण 14 रजत और 14 कांस्य सहित 32 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है। क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच आज से 3 मैचों की वनडे सीरीज शुरू होगी। इसके बाद दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज खेली जाएगी। वनडे टीम में विराट कोहली और रोहित शर्मा शामिल है, वहीं T20 सीरीज में श्रेयस अय्यर भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। T20 सीरीज का पहला मैच 6 अक्टूबर को लखनऊ में होगा। इसके बाद मैच 9 अक्टूबर को रांची, 11 अक्टूबर को इंदौर, 14 अक्टूबर को हैदराबाद और 17 अक्टूबर को बेंगलुरु में होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ने विश्व को भारत की आतंकवादी रोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया। आगे भी आतंकवादी हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने नशा मुक्त युवा अभियान के लिए लोगों से मिलकर काम करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने लोगों को से जनगणना में शामिल होने और स्वगणना सुविधा का उपयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। गृहमंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के साबरमती में देश की पहली LNG चलित रेलगाड़ी को रवाना किया। उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: This is Akashvani, the news read by Priya Badu. Prime Minister Narendra Modi today stated that the surgical strike by the Indian Army on the terrorist hideouts in Pakistan demonstrated a new example of India's counter-terrorism policy to the world. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashvani, Mr. Modi said India is set to mark the 10th anniversary of the surgical strike tomorrow. He said the world was astonished to see the manner in which brave Indian soldiers crossed the line of control to take action against terrorism. Prime Minister Modi said the surgical strike was India's decisive response to the long-standing pain the nation had endured due to terrorist attacks. He stated that over the past decade, from the Balakot airstrike to Operation Sindoor, India has repeatedly sent the message that terrorist strikes will be met with a befitting response. Prime Minister Modi said this year also marks 25 years since the 9/11 terrorist attacks. He said that the highest number of victims at the World Trade Center in the US after Americans were Indians. He recalled paying homage to those innocent citizens during his US visit after becoming Prime Minister in 2014. He once again extended his condolences to the bereaved families on behalf of crores of Indian citizens. Touching upon the topic of the ongoing census, Mr. Modi said the first phase of this exercise is nearly complete across all states and union territories. Data of over 32 crore families has already been recorded. Work is currently underway also in the remote snow-clad regions of Ladakh, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir and Uttarakhand. The Prime Minister noted that many inspiring experiences have emerged from these areas. In Uttarakhand, the census process began in the village of Mana in Chamoli, which is known as the country's first village. Union Home Minister and Corporation Minister Amit Shah today inaugurated, laid the foundation stone and launched a series of major railway development projects worth over 1,500 crore rupees. In Sabarmati, the minister, along with Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel, also flagged off the country's first LNG-powered train from Sabarmati station. Addressing a massive public gathering on this occasion, the Home Minister highlighted the remarkable transformation of Indian railways over the last 12 years under the leadership of Prime Minister Narendra

0: winds over Jammu and Kashmir, Ladakh, Himachal Pradesh, Bihar, Rajasthan, Tamil Nadu, Puducherry, Karailal, and West Uttar Pradesh for the next 2 to 3 days. In men's cricket, West Indies were 207-5 wickets after 38.1 overs against host India on the first one-day international of the three-match series at the Greenfield International Stadium in the Thiruvananthapuram. When reports last came in earlier, India won the toss and opted to field first. Both Rohit Sharma and Virat Kohli returned to India's ODI lineup after a two-month break from this format. Shubham Gill will lead Team India for this ODI series, while Shai Hope captains the West Indies. The second ODI will be played in Guwahati on September 30, followed by the third one-day international in New Chandigarh on October 3rd. The ODI series will be followed by 5 T20 internationals. Shreyas Iyer will lead the team in the T21 series. The T20 international series will begin in Lucknow on October 6, followed by the second T21 in Ranchi on October 9th. India made a strong start to its Asian Games archery campaign in Aichi, Nagoya today, with the men's and women's compound teams advancing to the semifinals along with the recurve. India today clinched 2 silver medals in squash. India Sabhe Abhay Singh won silver in the men's singles squash. In final, he lost to Malaysia's Yan Yeo Ning 11-9, 11-5 and 11-5. The world number 26 Indian was unable to match the number 18 Malaysian, who defended his Asian Games title with a commanding straight game victory. That is all in this news bulletin. Namaskar.
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार. ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है. लीजिए प्रस्तुत है नौकते श्रोताओं का कार्यक्रम.
2: अपे आकाशवाणी ईटानगर डिब्रुगढ़ व नौकते प्रोग्राम अठु सैनम वनमगा बाजी टांगे के थजा दो बैजा सेप्टेम्बर जंग रोगनी वैनिंगित तारीख खोब चोको एक तुम्हारु तुम्हें खोबरे दंग थजा आकाशवाणी व मन की बात प्रोग्राम को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी में ठोके पाकिस्तान हाखन व इंडियन आर्मी में मिंगवन हे सर्जिकल स्ट्राइक हुआ पे इंडिया काउंटर टेरोरिज्म पॉलिसी न्यान गमे गाले अरे सर्जिकल स्ट्राइक पे पाई छी दंगमिन निनप सेप्टेम्बर रोकनी वेनेसत तारीख को अरे सर्जिकल स्ट्राइक हुआ पे दंगे मिंगवन हे मे थम पकलक था हुआ गले रंगखन में इंडियन आर्मी हंग चैन को पेरिट रेवक वमे चुटो को ही अदिको बालाकोट एयर स्ट्राइक ले ऑपरेशन सिंदूर में डंगे इंडिया में मिंगवन हे दमनंग अरो जो बा हुआ मिंग गमे खेसोक की गले खमावा रंग रंग इंडिया नंग बोम पोक हे मिन टेटुमी अपे डंगे इंडिया पोलिस अरे पोलिसी न्यान हुआ जुनवा डंगे गमे चुटो को ही. वर्ल्ड टूरिज्म रंगवोजा को चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू में अंगा अंगा नंग निशन मैट ही चीफ मिनिस्टर खांडू में सोशल मीडिया नंग रंग के अरे टूरिज्म पुमे मिन्या न्यूचा रुम सीट रही गले पब्लिक हे रंग मिन अथिन वोक भी लंपो लांग के गमे अदिको अंगा अंगा जो संथम थम नियम रंग जुन को अरे टूरिज्म पे सोला रंग गा के गमे चोटे की गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल के टी परनाइक रिटायर्ड मजा जीरो व होंग हा डांको व नारा अबा वाइनरी हुंटे मिसेस तागे रीता ताके ले अते खनवा काम होते हे दमनंग चुमिन व अको ते में मिसेस तागे रीता कीवी पनरी व खम ब्रेंड हुन था गाले अरे लोकल ब्रेंड पे दियक अजा नंग जेन सोली था न्या रंग रंग थोए के गमे चुटेट की गाले अरे खम हुन पुमे पनरी व राखी हे मिन गुनबी गानंग हो हे चुके गमे अदिको अरुणाचल पुमिन वैन थे कीवी पनरी दुए सीट ते नंग दियक को गमे गाके एरो चुटेट की. रूरल डेवलपमेंट ले पंचायती राज मिनिस्टर अधिको एम्पावर्ड हाई पावर कमिटी ऑन सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट SUMP चेयरमैन ओजिंग तासिंग मेमजा DC ऑफिस कॉन्फ्रेंस हॉल यिंग्योंग हा को हेड ऑफ डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ले सिपाही ऑफिसर हे दमनंग खबंग मीटिंग पे हुनवा अको ते में पब्लिक हे नंग संथम थम बुजा थोकु रंग नेटवा अरे अलमली प्रोजेक्ट PFR ngin पे गले अंगांगा में जटली हुन रंग नेटवा मिनिस्टर पुमे अरे प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट पीएफआर पे लिहन लदंग जे सोक्लो

0: अब से कुछ ही क्षणों में लेकर आ रहे हैं कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

समा है सुहाना सुहाना, हवाओं में मस्ती से छा जाना, आपके शाम के सफर को कर देने और भी खुशनुमा, लेकर आते हैं हर शाम इवनिंग ड्राइव।

बस तुझसे दिल का रिश्ता जोड़ लूं। बिल्कुल इसी गीत का आप आनंद ले रहे थे राहत फतेह अली खान, सुजैन और उनके साथियों की आवाज में। कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव की शुरुआत हो चुकी है। आप सुन रहे थे फिल्म दे दनादन का ये गीत, और कार्यक्रम का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन

0: मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

किसी शायर ने लिखा है, लिखा है कि नजरें मिली और न जाने कब ये कमाल हो गया, हमारा दिल न जाने कब किसी और का सवाल हो गया। वो चुरा कर ले गए इसे इतनी खामोशी से कि धड़कन को भी पता चलने में साल हो गया। तो दोस्तों, इसी शायरी के साथ आपको बताना चाहेंगे कि आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर और सुन रहे हैं कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव।

और दोस्तों इसी बिजुरिया के साथ ही कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव का आज का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन आप जाइएगा कहीं नहीं क्योंकि अब से कुछ ही क्षणों में हम फिर हाजिर हैं लेकर कार्यक्रम शाम की महफिल। और इस अंक में हम आपके लिए पेश करेंगे सोलफुल सूदिंग बॉलीवुड ट्रैक्स थोड़ी ही देर में।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

सोलफुल सूदिंग बॉलीवुड नगमों के कार्यक्रम शाम की महफिल में आप सभी लिसनर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। जी हाँ, आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर और मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त सुलोकना। बिल्कुल, आप सुन रहे थे चाहे जुबा से कुछ ना कहो आंखें सब कह देती है। आंखें तो कह रही है तुम्हें मुझसे प्यार है। ये गीत आप सुन रहे थे सोनू निगम एवं अलका याग्निक की आवाज में फिल्म दिल है तुम्हारा से। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कि आंखें भी होती है दिल की जुबान।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूँ।
0: ओहो भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per liter in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
5: Get attractive offers up to ₹55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.

शाम ढल रही है, शहर की रोशनियाँ धीरे धीरे जाग रही है, और इस ढलती शाम में आपकी रूह को छूने के लिए हाजिर है कुछ बेहद सुरीले और मखमली नगमे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कार्यक्रम शाम की महफिल की, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर। और दोस्तों, जब दिल कहीं खो जाता है तो सारा मामला इस मन पर आकर ठहर जाता है। और देरी ना करते हुए चलिए बढ़ चलते हैं कार्यक्रम में अगले सुरीले और मखमली नगमे की ओर।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: HIV के बारे में सही जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।
2: HIV संक्रमित खून, असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई सिरिंज और माँ से बच्चे तक फैल सकता है।
1: लेकिन याद रखें, साथ बैठने, हाथ मिलाने, गले लगाने, साथ खाने या मच्छर के काटने से HIV नहीं फैलता।
2: HIV की जांच कराएं, समय पर पता चले तो इलाज से स्वस्थ और लंबा जीवन जिया जा सकता है।
1: HIV से डरे नहीं, जानकारी बढ़ाए, जांच कराए, भेदभाव मिटाए।
2: अधिक जानकारी के लिए नेशनल एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी DHS नाहरलगुन द्वारा जनहित में जारी।

तो दोस्तों, इस प्यारे से नगमे के साथ ही कार्यक्रम शाम की महफिल का आज का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। लेकिन फिर कहेंगे जाइएगा कहीं नहीं, क्योंकि अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। हम आपके लिए पेश करेंगे बैक टू बैक हिंदी फिल्मी नगमे, लेकिन हाँ, ब्रेक्स के साथ। कहते हैं ना कि प्रोग्राम में ही नहीं बल्कि जिंदगी में भी ब्रेक लेना जरूरी है। तो मिलते हैं इस ब्रेक के बाद हिंदी फिल्मी गीतों के कारवां में।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह, अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: और दोस्तों, ये है आकाशवाणी ईटानगर कारण FM, जिसे आप सुन रहे हैं FM बैंड 103.1 MHz पर। सुन रहे हैं आप हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। इस अंक में हम आपके लिए पेश कर रहे हैं हिंदी फिल्मी नगमे, और वो भी बैक टू बैक कुछ ब्रेक्स के साथ। तो चलिए उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं अगले गीत की ओर।

0: एचआईवी के बारे में सही जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।
1: एचआईवी संक्रमित खून, असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई सिरिंज और माँ से बच्चे तक फैल सकता है।
0: लेकिन याद रखें, साथ बैठने, हाथ मिलाने, गले लगाने, साथ खाने या मच्छर के काटने से एचआईवी नहीं फैलता।
1: एचआईवी की जांच कराएं, समय पर पता चले तो इलाज से स्वस्थ और लंबा जीवन जिया जा सकता है।
0: एचआईवी से डरे नहीं, जानकारी बढ़ाएं, जांच कराएं, भेदभाव मिटाएं।
1: अधिक जानकारी के लिए नेशनल एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी DHS नाहरलगुन द्वारा जनहित में जारी।
2: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
3: आ गई सैलरी?
4: हाँ।
3: नहीं झुमके?
4: ना, पहले बचत,
3: पहले झुमके।
4: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
3: लेकिन झुमको का क्या,
4: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
5: RBI कहता है,
2: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

0: उम्मीद है कि आज भी आसमान में चांद नजर आ रहा होगा। आप सुन रहे थे सावरिया से यू शब्द में, मोंटी शर्मा एवं पार्थिव गोहिल की आवाज में, और यह है हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM पर।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

शान एवं अलका याग्निक के गाए हुए इसी गीत के साथ ही श्रोता दोस्तों, हम आप सभी को छोड़े जा रहे हैं। 6:30 होते ही आप सुनेंगे आदि श्रोताओं का समाचार। समाचार के उस पार हम फिर मिलेंगे, लेकर आएंगे कार्यक्रम आज के कलाकार। तब तक के लिए बने रहे, सुनते रहे आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz पर।

0: supak aisi nagoya lo asian game ikisunam lo india lo iyi apuk apkisunam mima milokong team anyi kai semi final lo pungkai milokong midum angum pe apkisukol lo sahil jagdev ganesh mani delo kusal dalal bolu bhutan team apkum la semi final lo south korea apkisuye मिम टीम लो सिकिता तनी परती ज्योति सरिका दलोक प्रीतिका प्रदीप बुलो कजिकिस्तान एम अपकुम ला सेमी फाइनल लो साउथ कोरिया एम अपकि सुये दलोक रोंगम शॉर्ट बोर्ड इकिसुनाम लो कॉम मिम केलिना अन्य काई क्वार्टर फाइनल लो पिला न्यामपो क्वार्टर फाइनल एम केली ये सिलो लो पे इंडिया इंग अंगुम मेडल को पानम लोक गोल अपी सिल्वर इन कॉल अन्य दलोक ब्रॉन्ज इन कॉल अपी को इदुंग सातन्ना के दरे सीयम के आदि लुतत ए देबोंग
1: एचआईवी की नम आबा लोक मंगम गपनम आरो रूप मय हनम लगांग को तकामम लुकान लंबी दु
2: एसआईवी की न आमी लोक ये लाम लो की नम दे आयन हुयेरुं आतिरुं केन्नो हिमाप मिममिलो कदबहुला अमर आबो हिमिलो एसआईवी किनम दे आयन हिदु एसआईवी किनम दे बेजुअतल किं मिदुमन्यम नंगमिलो आयन हिलादु दलोक अनदे एसआईवी गदुं इमिलो होलोकम आयन हिलादु
1: इदोकम मंगब गलंका दुबो दगबो हिकलक आला घर हिकलक गमर हिकलक दबत बहुकलक दलो तारहुंगु बुंकलक एचआईवी किनम हे ब्यागगोंग मादुं
2: एसआईवी किनम एम इतुम हिदप पोटालो मना प कादे हिलंका देम इमुलो दनम प ये लंगोलो कंपो प ये नम ये लादो एसआईवी किनम एम पसो प आइमा किनम होक लगांग एम केनपु प आइदुंग दलो किनम एम आरोरो प कांगस प आइदुंग दलो एसआईवी किना अमियम लोके लोरेंग कप आइमा एसआईवी किनम होक लगांग एम आइप केनप मना कदिंग नेशनल एड्स हेल्पलाइन 1097 लो इरखिला लगांगम तन्नम हिलांका अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी डायरेक्टर हेल्थ सर्विस नाहरलगुने बाने लगांगम मंगे बदला आगम बिकानदेन बतु
3: श्रोता दोस्तों अभी आप सुन रहे थे आदि श्रोताओं का समाचार। इस कार्यक्रम को आगे पूरा सुनने के लिए आप ट्यून इन कर सकते हैं आकाशवाणी ईटानगर के मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज तथा डीआरएम 666 किलोहर्ट्ज पर, या फिर आप न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से भी आकाशवाणी ईटानगर के सभी कार्यक्रमों का आनंद ले सकते हैं। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम है, जिसे आप सुन रहे हैं एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आज के कलाकार।

0: Don't break my heart, don't break my heart, don't break my heart.
1: नमस्कार दोस्तों, कार्यक्रम आज के कलाकार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त और होस्ट सुलोकना। और जी हाँ, अभी तक तो आप जान ही गए होंगे कि हमारे आज के कलाकार हैं अभिजीत भट्टाचार्य। एक ऐसी आवाज जिन्होंने 90s के दशक में रोमांस को एक नया मुकाम दिया, जिसे सुनते ही हमारे सामने बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख

खान का चेहरा नजर आने लगता है। कार्यक्रम आज के कलाकार में आज हम पेश करेंगे अभिजीत भट्टाचार्य के गाए हुए कुछ नगमे और साथ ही बातें भी करेंगे अभिजीत भट्टाचार्य की। ये पूरा शो समर्पित है बॉलीवुड के बेहद सुरीले बेबाक और शानदार प्लेबैक सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य को।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर।
4: तो दोस्तों, ये है कार्यक्रम आज के कलाकार और आज हम पेश कर रहे हैं नगमे अभिजीत भट्टाचार्य की और बातें भी कर रहे हैं अभिजीत भट्टाचार्य की ही। तो दोस्तों, आज अभिजीत भट्टाचार्य जिस मुकाम पर है वहां तक पहुंचना उनके लिए इतना आसान नहीं था। उनके घर वाले चाहते थे कि वे कोई सुरक्षित करियर चुने, इसलिए उन्होंने कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से बीकॉम किया और फिर चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई करने के लिए सपनों की नगरी मुंबई आ गए। लेकिन कहते हैं ना, जिसके दिल में संगीत थरकता हो उसे आंकड़ों की दुनिया कहां रास आती है। उन्होंने सीए की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और अपनी किस्मत आजमाने निकल पड़े मुंबई की सड़कों पर। शुरुआती दिन बेहद संघर्ष से भरे थे। मुंबई जैसे बड़े शहर में बिना किसी गॉडफादर के टिकना एक बड़ी चुनौती थी। वे छोटे मोटे शोज में गाते थे और संगीतकारों के घर चक्कर लगाते थे, लेकिन उनकी किस्मत तब बदली जब खुद शहंशाह मौसिकी आर डी बर्मन यानी पंचमदा की नजर उन पर पड़ी। उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें आनंद और बंगाली फिल्मों में गाने का मौका दिया।

संघर्ष के बाद वो दौर आया जिसने अभिजीत भट्टाचार्य को घर घर में पहचान दिला दी। आवाज में वो खनक, वो शरारत और वो कशिश थी अभिजीत की आवाज में, जो हर आशिक के दिल को छू जाती। ईयर 1997 में आई फिल्म यस बॉस के गाने में कोई ऐसा गीत गाओ के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला और तभी से वो आगे बढ़ते ही रहे। इसी नोट पर चले सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी नगमा, छोड़े जाएंगे इस गीत के साथ ही, क्योंकि 7 बजते ही आप सुनेंगे निशी श्रोताओं का समाचार।

0: chimbri en chum gola 1.2 go pagri kala apa mishi yagri kala semi final lo south korea ga ajen ba apka mishri kana kham mem pa do ok so ju go ba bharat ha achia nagoya asian games lo medal amen ham chum go ba pap kuma so gold medal ep go silver medal uri gola en go ok bronze medal uri gola ep go pap kuma kham mem pa ta to ka surungan shi pu ye ha bo
1: Si tanggap se agam go, mulai akas pani itanagar irkum loke so puisa melinjiden. Mulu ni mulu tulu gab habne, nyam nyaga ko anyom ekstir gabe. HIV la AIDS ke pago samning cendo HIV AIDS alman bo ecehel. Hab sutel so ecchin bo sam ecchinam sam nule bos lubrima panme. So ecchiam nyakam cida pahel so ninga nyiab sitan hel do madene. Nule sam aljab channel do duri pa sam channel do duri nam siya bnyo kam nule channel do bolo so h pagol sam nule ayab kaal channel bal do bolo kam nule so h wong ninga doja kam so h sam nule anyab sug du gitan na si koi go sug du gitan og HIV la AIDS si og ka jidan he bolo kam si nyem nyega do bom kolo og so ui na ko sul do kam og so so BGP na nam bi ko sul ni h bo og bi kam ho so h do den og so h nule Hci usi madan nuluk ala ciri kolo, cetin misal doklo, lakin gua dewan dalam la doj kam nule si hci umadan eh, oh gab nule hci doj nih do madan ham mod modam kagda nul medikilo ala nul engam ka katam do jipan eh, oh pengkolo, nulu nying HIV la AIDS we gutu gora lo yin dod lo kam ho ni tulo ham kam nula anya bya dod lo yin sam nula timpa do jimadan eh, sam ya nula sekada do jipan eh. Em abdi si sekam aba anyam ab timpa banyo kam so ni si HP do tadra oge sam nulam channel do tkal bahara nula chinid lo kam nula 1097 host number so call mag do sam anyab takatka oge sam chim do sam ayab jig mag do sam nulam HP mama do wel kal do bunga Arunachal Pradesh State AIDS Control Society oge DHS Naharlagun loga jilin panam ke sei takap se puye het ku payalin cho
2: सुन रहे थे आप निशी श्रोताओं का समाचार इस कार्यक्रम को आगे पूरा सुनने के लिए आप ट्यून इन कर सकते हैं आकाशवाणी ईटानगर के मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ तथा DRM 666 किलोहर्ट्ज़ पर या फिर आप न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से भी आकाशवाणी ईटानगर के सभी कार्यक्रमों का आनंद ले सकते हैं यह आकाशवाणी ईटानगर का रुन FM है जिसे आप सुन रहे हैं FM band 103.1 MHz पर और अब प्रस्तुत है हमारा खास कार्यक्रम इस कार्यक्रम यानी कि Women and Family प्रोग्राम के अंतर्गत आप सुनेंगे आज के विषय का चर्चा है सोशल मीडियाज इफेक्ट ऑन बॉडी इमेज
3: नमस्कार आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर और अरुण FM 103.1 MHz मैं हूं आपके रेडियो साथी गैर अतः स्वागत करती हूं आप सभी महिला साथियों का महिला जगत कार्यक्रम के इस अंक में श्रोताओं आज इस अंक में हम बात करेंगे कि किस तरह से सोशल मीडिया हमारे बॉडी इमेज पर नेगेटिव असर कर सकते हैं और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर धर्मेश्वरी लॉरेम्बम असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी राजीव गांधी यूनिवर्सिटी मैम आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है
4: शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए और एक मौका देने के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने पे बुलाने के लिए थैंक यू
3: जी अब जब हम बात करते हैं सोशल मीडिया का हमारे बॉडी इमेज पर इफेक्ट तो इस बॉडी इमेज से हम क्या समझे बॉडी इमेज मीन्स किसको कहते हैं
4: बॉडी इमेज बेसिकली ये बोलते हैं हमारा थॉट्स एंड फीलिंग्स मतलब हमारा थॉट्स मतलब हम कैसे अपने बॉडी को देख रहे हैं ये जरूरी नहीं है कि जो हमारा मिरर में दिखता है हमारा बॉडी वैसा ही हम अपना से उस तरीके से परसीव करते हैं। एग्जाम्पल में जैसे मुझे, मैं मिरर में देख रही हूँ या लोग मुझे देख रहे हैं, तब मुझे मोटा नहीं समझते, पर मैं अपने आप को परसीव कर रही हूँ कि मैं बहुत ज्यादा मोटी हूँ, मुझे डाइटिंग करना चाहिए, ये बहुत ज्यादा बदसूरत दिख रही हूँ। तो मेरा जो परसेप्शन है, जरूरी नहीं है कि वो असल में जो दिख रहा है वैसा होगा। तो बेसिकली बॉडी इमेज में मैं अपना बॉडी को किस तरीके से देख रही हूँ, और उसके साथ साथ हाउ आई एम फीलिंग अबाउट माई बॉडी, कि मैं खुश हूँ उसमें, कंफर्टेबल हूँ या नहीं हूँ।
3: जी जी, जो आपके शरीर का मोटा पतला सफेद काला जो भी है, आप अपने बॉडी के बारे में क्या फील करते हैं, तो सोशल मीडिया जो है किस तरह से हमारे बॉडी इमेज को इफेक्ट कर सकते हैं?
4: अभी के दुनिया में, अभी जो इंटरनेट, जो जिस तरीके से इंटरनेट का रीच है हर जगह, उसमें तो सोशल मीडिया एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर बन गया है। बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। बॉडी इमेज अकेले का नहीं, बहुत सारे और चीजों में भी अभी इंटरनेट, स्पेशली सोशल मीडिया, बहुत हमारा थॉट प्रोसेस, हमारा सोचने का तरीका को बहुत इन्फ्लुएंस कर रहा है, जिसमें बॉडी इमेज भी एक इम्पोर्टेंट चीज है, जिसमें सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है। अभी बहुत ज्यादा कोविड टाइम से बहुत ज्यादा बढ़ा है। अभी स्टडीज भी बोल रहा है कि कोविड से पहले एंड कोविड के बाद में ड्रास्टिक डिफरेंस भी दिख रहा है।
3: हाँ, ये इफेक्ट जो है किस तरह से होते हैं, हम उसको किस तरह समझ सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, कि या फिर खुद भी ये कैसे समझे कि मतलब मुझे मेरा बॉडी इमेज पर कुछ उस तरह का असर हो रहा है, कैसे समझे हम इसे?
4: बॉडी इमेज का जो असर है सोशल मीडिया के वजह से, या रियल लाइफ इंस्टेंसेस, जैसे बुलिंग हुआ है क्लास में, या किसी ने बोल दिया है कि आज तो तुम बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, या तुम तो बहुत शॉर्ट लग रहे हो, तो उससे भी होता है। बट क्योंकि आज हम लोग ज्यादातर सोशल मीडिया का बारे में बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस हम ये तो नहीं बोल सकते कि हमेशा ही नेगेटिव है, पर देखने में कभी कभी पॉजिटिव भी होता है, क्योंकि पॉजिटिव मैसेजेस भी मिलता है हमें। कई बार ऐसे रील्स हो गया या यूट्यूब चैनल्स हो गया, जिसमें हमें अच्छा भी सिखाते हैं कि नहीं, यू शुड बी सेटिस्फाइड, और आपको अपने बारे में अच्छा सोचना चाहिए। बट फिर भी आज के टाइम में जितना भी वीडियोस आ रहे हैं, अब हम उन सबको देखें तो नेगेटिव में ज्यादा है, मतलब नेगेटिव इन्फ्लुएंस ज्यादा है। और हमें कब पता लगेगा कि हमें उसका इन्फ्लुएंस हो रहा है बोलने से, जैसे हम अपने आप को पहले सोचते थे, अभी उस तरीके से नहीं सोच रहे हम अपने आप के बारे में। हमारा जो सोचने का नजरिया है वो किसी तरीके से चेंज हो रहा है, और उसका चेंज होने का जो टाइम है वो भी अभी कुछ टाइम से एक तरीके से ही मैं सोच रही हूँ, तो फिर हमें पता लगेगा कि इट इज इन्फ्लुएंस। क्योंकि इन्फ्लुएंस नहीं होने से हम क्या करते हैं, नॉर्मली किसी दिन मुझे लगेगा कि अरे मैं तो आज ये कपड़े में थोड़ा मोटी लग रही हूँ, अगले दिन मुझे बिल्कुल भी वो ख्याल नहीं आएगा, किसी दिन मैंने कुछ और जैसे कुछ कपड़े पहने हैं उसमें शायद मैं बहुत अच्छी लगूंगी, और किसी दिन मुझे मे बी बिकॉज कलर अच्छा नहीं लग रहा है या कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, शायद इतना अच्छा नहीं लगूंगी। तो इट विल वेराई, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब हम जिस तरीके से सोचते हैं, बट ज्यादातर हम उसमें सेटिस्फाइड भी होते हैं, इतना उसके बारे में उसी ख्याल में एंगेज नहीं होते। हम थोड़ी देर मिरर देखते हैं, थोड़ा बहुत सोचते हैं कि ये कपड़ा अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, एंड फिर वी गो अहेड। बट देन जब इन्फ्लुएंस आता है, फ्रॉम द वर्ड इटसेल्फ, इन्फ्लुएंस मींस आप अपना नहीं रहा, किसी चीज से आप बिल्कुल उससे प्रभावित हो गए हो। तो अगर आपने बहुत सारे ऐसा रील्स देखा है जिसमें बहुत पतले पतले या ऐसे कपड़े पहना है, स्किनी कपड़े पहना है, और आप खुद लग रहा है कि अरे मैं तो कभी नहीं पहन सकती, और पूरा टाइम आप वही, जब भी आप मिरर में देख रहे हो हमेशा लग रहा है मैं तो बहुत मोटी हूँ, मैं तो कभी ऐसे कपड़े नहीं पहन पाऊंगी, तो आपका जो ख्यालात है वो एक डायरेक्शन में ही जा रहा है, और वो आप नहीं रहे, आप किसी चीज से वही प्रभावित हो रहा है, मीन्स आप अपने नहीं रहे।
3: अच्छा, तो अगर ऐसे मान लीजिए कि हमारे साथ इस तरह से सोशल मीडिया का जो इफेक्ट है, जैसे हमने रील्स देखा या फिर किसी सुंदर लोगों को देखा, फिर हम खुद को उसके जैसा नहीं है, इस बात की चिंता होने लगती है, तो अगर हम इसी तरह किसी के इन्फ्लुएंस में रहे तो इससे और क्या इश्यूज फिर से निकल सकते हैं?
4: इससे बहुत सारे तरीके से इश्यूज है, एक एक करके थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। वैसे तो मतलब सबको तो हम लोग कैटर नहीं कर पाएंगे, पर जैसे एंजाइटी, हमेशा जैसे बाहर निकल रहे हमेशा ये सोच सकते हैं कि अरे

0: लोग देख रहे हैं, मैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रही हूँ, या तो मेरा टी शर्ट में मेरा टोन दिख रहा होगा, नहीं अच्छा लग रहा होगा, मैं बैठ रही हूँ तो मेरा पेट दिख रहा होगा, कॉन्स्टेंट एंजाइटी हो रहा है, तो उसमें तो सर्टेन एक्सटेंट तो आपका बॉडी मैनेज कर लेता है, पर लगातार होने से वो फिर आगे जाके आपका मेंटल हेल्थ इश्यू में लीड हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, क्योंकि आप कुछ भी लाइफ में इंसिडेंट हुआ है नेगेटिव मान लेते हैं, कुछ भी किसी फ्रेंड ने कुछ बोला है तो भी आप हमेशा उसी चीज में दोषी मानते हो कि नहीं मैं तो बदसूरत हूं, या मैं सुंदर नहीं हूं, या मुझे लोग इसलिए मेरे साथ पार्टी में नहीं जाते क्योंकि मैं इस तरीके के प्रेम नहीं पहन सकती, या ऑल दोस थिंग्स, तो डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट आजकल जो आ रहा है, ट्रेंड आ रहा है, वो है कि आपका जब बॉडी इमेज थोड़ा नेगेटिवली इन्फ्लुएंस होता है तब ईटिंग में हम लोग इफेक्ट करवाते हैं, क्योंकि हमारा जो खाना पीना है ऑब्वियसली वो हमारा बॉडी का हाइट वगैरह तो नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट मोटापा में डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है, इसीलिए जब भी हमें अनसेटिस्फेक्शन होता है तो हम अपने खाने के ऊपर टूट पड़ते हैं उसका इफेक्ट, तो इससे डिसऑर्डर्ड ईटिंग एटीट्यूड डेवलप होता है, उस एटीट्यूड से इतना हद तक आप या तो रिजिड डाइटिंग करने लग जाते हैं, या जो बहुत पतले हैं वो अगर गेन करना चाहे स्पेशली लड़कों में मस्कुलर बनना चाहे तो वो इतना खाते हैं कि खाते हैं मीन्स एक्सेस ऑफ प्रोटीन या एक्सेस ऑफ स्टीरॉइड या एक्सेस ऑफ सम मल्टीविटामिन या एक्सेस ऑफ सर्टेन सप्लीमेंट्स, जिसकी वजह से भी दिस इज ऑल्सो नॉट ए हेल्दी ईटिंग प्रैक्टिस। तो इन एनी वे या तो ना खाए या गलत चीजें खाए या गलत लेवल तक खाए, तो इस तरीके से बॉडी इमेज जो नेगेटिव बॉडी इमेज पालते हैं उनका डायरेक्ट इफेक्ट हम दिख रहा है इन उनका ईटिंग बिहेवियर में, तो ईटिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा हो रहा है।
1: हम औरतों का जो पेट है वो बच्चा जन्म देने के बाद उसका आकार जो है कुछ अजीब सा हो जाता है और हर कोई उससे छुटकारा पाना चाहता है, तो आजकल अब बहुत सारे ऐसे महिला साथी है जो जिम जाते हैं, एरोबिक क्लासेस और जुम्बा क्लासेस ज्वाइन करते हैं, इस दौरान उन लोग बहुत सारे सप्लीमेंट्स भी लेने लगते हैं ताकि उनका जो फिगर है वो एक मतलब एक उनके चॉइस के शेप में आ जाए, तो क्या कहना चाहेंगे आप?
0: इसमें यही है कि जो प्रॉपर तरीके से किसी डाइटिशियन हो गया, न्यूट्रिशनिस्ट हो गया, जुम्बा जाना जिम जाना तो अच्छी बात है, मुझे गुड थिंग, बट फिर भी अगर प्रॉपर तरीके से आप सजेशन ले रहे हो और उस सर्टेन लेवल में खा रहे हो तब तो फिर भी ठीक है, बट देन आजकल वही सोशल मीडिया का टॉपिक में है तो फिर सोशल मीडिया में भी ऐसे बहुत सारे वीडियोस वगैरह आ रहे हैं, वेदर दे आर सर्टिफाइड और नॉट, बट देन सजेशंस दे रहे हैं ये करने से अच्छा है कीटो डाइट, इतना इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड व्हाट नॉट, जिसका प्रॉपर तरीके से स्टडी हुआ है नहीं हुआ है, या मेरा बॉडी टाइप में फिट है नहीं है वो तो देख नहीं रहे हैं, स्पेशली यंगस्टर्स लाइक एडोलेसेंस एंड यंग एडल्ट, वो लोग क्या कर रहे हैं क्योंकि वो लोग डायरेक्ट खुद से डॉक्टर के पास जाके या डाइटिशियन के पास जाके प्रॉपर एक होलिस्टिक वो तो नहीं कर रहे, वो लोग सिर्फ मोबाइल में उन रील्स को देख के आइडिया आ रहे हैं हाँ ऐसे डाइटिंग करने से सही होगा या ये खाने से मैं बहुत मस्कुलर हो जाऊंगा या आजकल ऐसा एक डाइट बहुत फेमस है, तो एकदम से बिना उस चीज को होलिस्टिक जाने बगैर इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं, तो उसमें बहुत एक मेजर मतलब रिस्की है, मैं ये बोलना चाहूंगी। मैं डाइटिंग हर तरीके के जैसे कीटो डाइट हो गया, इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गया, इनके अगेंस्ट नहीं बोल रही, बट कुछ जानने से होलिस्टिक जानना है और एक्सपर्ट से जानना है, और रील्स या सोशल मीडिया इज नॉट ए प्लेटफॉर्म वेयर मतलब आप सब कुछ को अपने ऊपर लागू कर सकते हैं, तो यंगस्टर्स को बहुत अलर्ट रहना है इस चीज।
1: हाँ, अगर हम लड़की और लड़का मेल फीमेल में बात करें या फिर एज ग्रुप की बात करें तो कौन सबसे ज्यादा इसके घेरे में आ रहे?
0: सोशल मीडिया का घेरे में आना बोलने से तो मुझे लगता है एडोलेसेंस, क्योंकि एडोलेसेंस जो है सबके पास अभी सोशल मीडिया का एक्सेस तो है और उनके पास इतना समझ या इतना धैर्य से जो डिसीजन मेकिंग है वो स्किल उतना डेवलप नहीं है। पर्सनल इंडिविजुअल डिफरेंसेस नो डाउट होता है, कोई बहुत मेच्योर भी होता है, बट फिर भी बाहर के दुनिया का जो वो है इफेक्ट है वो क्विकली उनको मतलब प्रभावित कर लेता है, तो मुझे लगता है एडोलेसेंस के ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट देखने को मिला है।
1: तो इससे बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए?
0: एक तो मुझे लगता है क्योंकि

0: के लिए एटलीस्ट उनका पेरेंट्स जो है उनको तो थोड़ा ट्रैक रखना है कि मेरा फैमिली में बच्चे लोग कैसे खा रहे हैं, पी रहे हैं, कपड़ों का तरीका हो गया. नॉट टू स्टॉप देम बट एटलीस्ट हैव अ ट्रैक कि और किस तरीके से है. ओवरऑल मैं तो मेंटल हेल्थ के लिए भी बोलूंगी कि अपने बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करे, उनके साथ भी एक फ्रेंडली रिलेशनशिप रहे और फिर जाने उनको अगर कुछ एक्सट्रीम मतलब हटके पहले से थोड़ा हटके खान पीन में चेंजेस हो गया या बिल्कुल बात नहीं कर रहा है तो भी मतलब इट्स टाइम टू एटलीस्ट स्टॉप और जानने के लिए कि क्या कर क्या रहे है.
1: जो लोग उसमें सोशल मीडिया के चलते उस अपने बॉडी इमेज को लेके बहुत ही सीरियस हो गए हैं, बहुत आगे निकल गए हैं, उसको हम किस तरह से मदद कर सकते हैं बाहर आने में?
0: सबसे पहले तो मैं ये मौका का फायदा लूंगी सबको बोलने के लिए जो भी सुन रहे स्पेशली थोड़ा यंग लोगों को कि सोशल मीडिया में जो दिख रहा है वो रियलिटी से मेजॉरिटी ऑफ द टाइम सिमिलर नहीं है.
1: हाँ.
0: क्योंकि आजकल तो फिल्टर्स आ रहे हैं, एआई से बना हुआ वीडियोस आ रहे हैं तो हमेशा मतलब उनको देख के प्रभावित नहीं होना है. उनको मजे के लिए देख सकता है फॉर सम टाइम आप एज एन एंटरटेनमेंट, बट देन उसके जैसे बनना है या उसके जैसा ही गोरा बनना है या इस तरीके के फीचर्स होना है या इतना मस्कुलर होना है उस तरीके से मतलब एक बेंचमार्क मत बनाइए क्योंकि आपने उस इंसान को रियलिटी में नहीं देखा है. उन्होंने क्या चीजें फिल्टर या क्या इफेक्ट्स यूज करके उसको प्लेटफॉर्म में डाला है वो आपको अवेयर नहीं है तो इसीलिए ना हो. बाकी दूसरा क्लिनिकल पॉइंट में देखने से बॉडी इमेज का एज सच बीमारी करके तो नहीं है पर बॉडी इमेज नेगेटिव बॉडी इमेज पालने से जैसे हम लोग डिस्कस किया है उसकी वजह से एंजाइटी हो सकता है. बाहर निकलना ही नहीं है क्योंकि मैं मोटी हूं तो मुझे बाहर निकलना ही नहीं है. मैं किसी गैदरिंग में जा ही नहीं रही वही डर से कि मुझे लोग बुली करेंगे या मैं सुंदर नहीं हूं उस वजह से एंजाइटी डेवलप हो सकता है, डिप्रेशन या एनी अदर मेंटल हेल्थ इश्यूज और सबसे ज्यादा वही ईटिंग हैबिट्स में इफेक्ट हो सकता है जो ना कि आपके सिर्फ मानसिक कंडीशन को डिटीरियोरेट करेगा आपका फिजियोलॉजिकल आपका फिजिकल कंडीशन को भी डिटीरियोरेट करेगा. तो इसीलिए ईटिंग हैबिट्स एक मतलब मेजर चीज है. तो उस तरीके से हमें बॉडी इमेज का जो अगेन मतलब कैसे कंट्रोल करना है बोलने से उसका जो आगे जो जिस जिसको वो इफेक्ट कर रहा है उनको देखना है.
1: तो जैसे इसमें हम जब डायग्नोज वगैरह की बात करें तो क्या ये मेंटल हेल्थ को ही हमें जांच करना है इसमें?
0: ज्यादातर तो क्योंकि बॉडी इमेज में जैसे हम अभी शुरुआत में भी बात किया था इसमें बॉडी इमेज में ज्यादातर ये नहीं देख रहे कि आप कैसे हो. इसमें ज्यादा है कि आप अपने आप को कैसे परसीव कर रहे हो, कैसे सोच रहे हो, आप कितना खुश हो या नहीं हो. इसीलिए ये मानसिक ही है. बॉडी इमेज का अगर इफेक्ट आ रहा है अपना बॉडी इमेज से आप खुश नहीं हो जिसको हम लोग बोलते हैं बॉडी डिससेटिस्फेक्शन या इसमें एक और चीज भी आ रहा है बॉडी सर्विलेंस बोलते हैं कि सर्विलेंस क्या होता है. हम पुलिस का कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं कि सर्विलेंस कर रहे हैं मतलब आप पूरा उसको बहुत माइन्यूटली देख रहे हो तो अपना ही बॉडी के ऊपर आप इतना माइन्यूटली पूरा उसी के ऊपर जजमेंटल हो जाता है. उसी के ऊपर आप पूरा अटेंशन डाल देते हैं कि मैं कैसा दिख रहा हूं, अच्छा लग रहा हूं, नहीं लग रहा हूं. इधर तक नीचे तक जाने के लिए आप अपने ऊपर ही आधा घंटा निकालते हैं कि मैं तो बॉडी सर्विलेंस भी एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो स्टडीज में भी लोग अभी डॉक्टर्स एंड ऑल रिसर्चर्स देख रहे हैं कि जो लोग ज्यादा सर्विलेंस होते हैं अपने ऊपर माइन्यूटली देखते हैं पसंद आ रहे नहीं आ रहे मैं आज थोड़ा और सुंदर दिख रहा हूँ नहीं दिख रहा वो लोग ज्यादा शिकार होता है बॉडी इमेज नेगेटिव बॉडी इमेज का. तो बॉडी इमेज आपने बहुत सही बोला है इट्स नॉट मच अबाउट हाउ मतलब सही में आप कैसे कितना वेट है या कितना टॉल है. इट्स मोर ऑफ आप अपने आप के बारे में कैसे परसीव कर रहे हैं. तो अगर उसमें कहीं भी थोड़ा गलत हो रहा है तो मानसिक जो आपका संतुलन है उसमें फिर इफेक्ट हो.
1: और कुछ लोगों का मानना है कि जो फीमेल है जो लड़कियां हैं जो औरतें हैं उन लोग इस पर ज्यादा मतलब उन लोगों पर इसका असर ज्यादा है.
0: ये हमारा सोचना है अभी तो मतलब मैं इसको नेगेट भी नहीं करूंगी. बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट को बताया है पर अभी हम लोग अगर एकेडमिक लाइन में बोलने से, जो रिसर्च वगैरह जो चल रहा है
1: जी
0: वहां तो लड़कों

0: वो में भी अभी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, जैसे जिमिंग का बहुत ट्रेंड चल रहा है, तो
1: हाँ
0: मस्कुलिनिटी का जो वो है आइडियल बॉडी उसका भी बहुत है. बट हैविंग सेड दैट, लड़कियों का नेचुरली लड़कियों को ज्यादा वो होता है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन. ये इसका कारण मेरे ख्याल से कल्चरल भी थोड़ा है. कल्चर का इसलिए मैं लाना चाहूंगी कि कल्चर बोलने से अरुणाचल कल्चर का ही नहीं, एसच जो हम लोगों का जो सोसाइटी है उसमें ये है कि लड़कियों के लिए मेन जो क्वालिटी बोलने से पुराने जमाने में तो सुंदर होना, बहुत सुशील होना, सुंदर होना, ये बातों में ही है. तो लड़कियों के लिए एक और एडिशनल है कि ऑलमोस्ट मेजोरिटी सबके लिए हाँ सुंदर होना इस हमेशा एक बेंचमार्क रहा है कि अब लाइफ में अच्छा कर रहे हैं. तो इसीलिए शायद लड़कियों को ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, लड़कियां ज्यादा इनसिक्योर होता है. तो अगर रील्स में या सोशल मीडिया में किसी और को बहुत सुंदर दिख रहा है या उसको जल्दी जल्दी आइडियलाइज करते हैं, मैं भी ऐसे ही कपड़े पहनूं, मैं भी ऐसे ही दिखूं, मैं भी ऐसे ही गोरी दिखूं, तो शायद लड़कियों में थोड़ा है. बट फिर भी लड़कों में भी आजकल काफी ये बॉडी इमेज का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है स्पेशली बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया दिखने मतलब नजर आ रहा है.
1: हम बहुत कम समय में ज्यादा बोलने की कोशिश में बहुत जल्दी जल्दी भी ये हो गई, लेकिन समय भी अभी बस हो ही गए हैं। तो आज जैसे कि हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया का जो हमारे बॉडी इमेज पर क्या इफेक्ट है, क्या असर पड़ता है, तो अभी वैसे वक्त भी हो चला है, तो आप इस विषय पर अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे श्रोताओं को?
0: मैं तो यही बोलना चाहूंगी कि सोशल मीडिया को हम बिल्कुल नेगेट नहीं कर सकते. सोशल मीडिया के बिना रखना है अपने बच्चे को ये तो नामुमकिन जैसा है, क्योंकि इट इज देयर और हमें उस चीज को एक्सेप्ट करना है. बस हमें ये करना है कि हमें अवेयरनेस फैलाना है. देख सकते हैं, रील्स भी देखो और ये देखो कि लोग अगर फिल्टर लगा रहे हैं या कुछ AI के थ्रू, आजकल तो बहुत एडवांस हो गया है, तो ऐसा होने से भी कि जानो उसको एज एन एंटरटेनमेंट लो, बट अपना जो अंदर का रेजिलियंस है या अपना जो सेल्फ एस्टीम है उसको स्ट्रोंग बनाओ. और अगर हम ऐसा ही अपना बच्चों का जो सेल्फ एस्टीम है और अपने बारे में जो सोच है उसको स्ट्रोंग बनाने से बाहर से इन्फ्लुएंस जो है वो उसको ब्रेक नहीं कर पाएंगे.
1: तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे सोशल मीडिया का हमारे बॉडी इमेज पर क्या असर पड़ता है, इस विषय पर हमारी बातचीत डॉक्टर धर्मेश्वरी लॉरेम्बम के साथ। असिस्टेंट प्रोफेसर है आप डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में। मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हम उम्मीद करते हैं आप इसी तरह हमारे स्टूडियो में आते रहेंगे और इस तरह की सब्जेक्ट पर हमसे बातचीत करती रहेंगी। बहुत बहुत
0: शुक्रिया
1: धन्यवाद।
0: शुक्रिया, धन्यवाद.
2: हम आशा करते हैं कि हमारे श्रोता मित्रों को कार्यक्रम पसंद आए होंगे। खुद का ख्याल रखना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को देखकर उनकी तरह बनने के चक्कर में उस हिसाब से खुद का ख्याल रखना वो गलत भी हो सकता है। हम यही विश करते हैं कि हमारे जो महिला साथी है हमेशा स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे और खुश रहे। तो चलिए, इसी शुभकामना के साथ महिला जगत कार्यक्रम का ये अंक यहीं पर समाप्त करती हूँ। सुनते रहिए आकाशवाणी ईटानगर और अरुण FM 103.1 MHz। नमस्कार।
3: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, next gen K series 1.0 liter dual jet, dual 50 engine and spacious interiors.
4: Get attractive offers up to ₹67,500.
5: Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
6: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
7: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
6: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in पर।
8: हर घर सूर्य घर।
7: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
9: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली।

0: योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
1: बंधू नई कार जीतने का मौका, वाओ पापा को सरप्राइज दूंगी, बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
2: रुक जा बुद्धू।
3: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
1: तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो,
4: कूल रहो।
5: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
6: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
9: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
10: बन गया बजट?
9: हाँ 5,000 बच गए।
10: तो नई साड़ी ले ले।
9: ना, पिछले महीने तो ली थी।
10: एक और
9: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
10: बढ़िया,
9: जाओ भाई।
7: RBI कहता है
8: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
9: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
10: बन गया बजट?
9: हाँ 5,000 बच गए।
10: तो नई साड़ी ले ले।
9: ना, पिछले महीने तो ली थी।
10: एक और
9: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
10: बढ़िया,
9: जाओ भाई।
7: RBI कहता है
8: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
11: ये देख कैसे।
12: हैप्पी बर्थडे भाई।
11: देखा, मेरा फेवरेट कलर
12: हमेशा शॉपिंग।
11: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
13: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
14: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
11: आई नो ना।
14: RBI कहता है
8: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
15: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, KYC अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत KYC अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
7: RBI कहता है
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
16: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
17: हर घर सूर्य घर।
18: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
16: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
17: हर घर सूर्य घर।
19: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है? पूछा तो बोलता है भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
16: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

श्रोता दोस्तों, ये आकाशवाणी ईटानगर कारुण एफएम है जिसे आप सुन रहे हैं एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। तो चलिए अब फिर निकल पड़ते हैं हिंदी फिल्मी गीतों के सफर में।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के,
1: अब 0 रुपए कैसे दो।
0: ओहो भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, next gen K-Series, 1.0 liter dual jet, dual 50 engine, and spacious interiors.
1: Get attractive offers up to ₹67,500.
2: Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
3: एचआईवी के बारे में सही जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।
4: एचआईवी संक्रमित खून, असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई सिरिंज और माँ से बच्चे तक फैल सकता है।
3: लेकिन याद रखें, साथ बैठने, हाथ मिलाने, गले लगाने, साथ खाने या मच्छर के काटने से एचआईवी नहीं फैलता।
4: एचआईवी की जांच कराएं, समय पर पता चले तो इलाज से स्वस्थ और लंबा जीवन जिया जा सकता है।
3: एचआईवी से डरे नहीं, जानकारी बढ़ाए, जांच कराए, भेदभाव मिटाए।
4: अधिक जानकारी के लिए नेशनल एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी DHS नाहरलगुन द्वारा जनहित में जारी।
5: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

बात हो गो गग आलना अगराला इकामेंका तनाम आबालो आगोमाई जाबदना गदग पुनाम पानाम आबालो आगोम जाबदना भारत गदा होक अम्बई आकेन ताकोनाम आबागो इजा आनी न्यूयुता दुको हेगी आबा हेगी सार्जिकल स्ट्राइक आनी न्यूयु को गग 28-29 पोल ग 2016 ओगो गदग हिप्पाई गद पाकिस्तान ग नीली होदोना आतंकवाद गद ग नाम ना सुलो सर्जिकल स्ट्राइक इतो एलओसीएम राबोदोला मुनुक निगा हिप्पाई गद ग नीली होदोना आतंकवादी गदम मोतुमोरे नामम नारुअ कागिका आतंकवाद नीली होदोना गद ग अदना इलुकिसार नाम ग एंद्रका सोमेनला सर्जिकल स्ट्राइक इनाम हिगी मुनुक इलुक इसार नाम एंद्रका सोम मुन्नम एंकुर मोल पमला इरिकमेंडक नाम मको इनेना अन्य आलोगो बालाकोट ग एयर स्ट्राइक लोक के लेला ऑपरेशन सिंदुरलो ब गदा हिगी युमदा रोदाग ब मैसेज अमजितो आतंकवाद यादलो मेना मुनम तमाब इको मेंको मेद रगब मनाला अमला अजन गद्दा आतंकवाद ग मुतुमोरे नाम हिगी मु गदम अदना अनि आलोलोब इंद्र कासम एमओ का लकलो गदा होगो सीरियल ब्लास्ट हिगे कॉमन जाबक तो हित पोल ग लोई गो लालोम 2008 ओगो दिल्ली लोक सीरियल ब्लास्ट हिगे नी हे मापा मब येसना गद्दम हिलक दोबई तो हेम इरो को किब होप्ता को किजा लोकदा मुंबई लो 26-11 लो आतरुना लोमना ममितो अजन गद्दा लक ऑक्सिन आतंकवाद एटेकला इरोब पाकिस्तानम इरिकमेन दिक्तो का अमला मेनियार्थो इगदोला लकलो यसिन हिम अन्नपान नमुमातो होमोय इन रोदोक बदेन तोया हिया तो इजा भारत ग दाहिगी आतंकवाद ग आबालो जीरो टॉलरेंस पॉलिसियम इंगला इंदुकु हिम होक हम्ब इनामम का पता पाला ये दु अजन गद्दा 11 सितंबर ग आतंकी एटेक नाम मसिन अन्य हम निगोला न्यूंगुदुकु अमेरिका ग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर लोक यो हेनिया पाया माना हिलकना अमेरिका लोक नियम मेम्माब मुख भारत गदा होक नेगा दया का यारू तो मोम पादु 2014 ओगो मो प्राइम मिनिस्टर इरोब अमेरिका इन ला न्यूयॉर्क लो मो होक हिल खियाना नारू भारत गदा ग नीगत ग लगाब कुमलक जोलक तो इजासिन मोलक दा भारत गदा ग करोर नीगत ग पेले लोक होक हिल खियाना नाम रूम तो मालू लगाब म पा हक पादुना गदाग मोक काले ताली हिनाम गद्दा इजामलो गदाग अत्रुना लोकसा गो मोलाइदु होगो लोकसा होगो नोसिन दागदु नोक नाम रूम तुमसिन ओक नोक नाम दोगो दोरसिन होगो दागदु मोक मेंदु नाम में सेंसस अबाहिम गदाग नारु स्टेट ओक यूनियन टेरिटोरी लो होक फर्स्ट फेस इंगाम का हमुम गो ला अन्य करोरम सिम पोयाना नाम रूम तुम ग आबाम एल के राका इजा लद्दाख हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर ओक उत्तराखंड ग मोकिस बोस्कानो एम्पाना तापाम दोन मोकलोसिन हिम ने इलायदु होकया का घिनाम एक्सपीरियंस मुनुकलो आदु उत्तराखंड लो सेंसस ग अबाम चमोली ग माना दोलू लोक ग इरोप तो माना हिम भारत गदा ग फर्स्ट दोलू अम्दु माना होगो इतियारू ब असम पीन गोला आउम अन्यना पूर्णिमा रावत जिम हिम इरोप तो उत्तर काशी ग बगोरी दोलू लो होमस्टे मोला येन हरदीप सिंह राणा जिम
डिजिटल

श्रोता दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मन की बात के क्षेत्रीय संस्करण का गालो भाषा में पुनः प्रसारण। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम है, जिसे आप सुन रहे हैं एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। और अब से कुछ ही क्षणों में आप सुन पाएंगे वेस्टर्न मेलोडीज़।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
4: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
5: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
4: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो। और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
5: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
6: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: सो डियर लिसनर्स, लीजिए अब प्रस्तुत है वेस्टर्न मेलोडीज।
1: गुड मॉर्निंग डियर लिसनर्स एंड वेलकम टू आकाशवाणी ईटानगर। यू आर लिसनिंग टू वेस्टर्न म्यूजिक वेयर वी विल एंजॉय सम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट लव सॉन्ग्स टुगेदर एंड आई एम डिलाइटेड टू हैव योर कंपनी। सो लेट्स बिगिन टुडेज म्यूजिकल जर्नी। टुडे वी आर कीपिंग थिंग्स फन, सो इफ यू आर रेडी लेट्स बिगिन विद कॉल मी मेबी बाय कार्ली रे जिप्सन।

0: with that, we have come to the end of today's edition of Western Music. I hope you enjoyed today's playlist and perhaps discovered a new favorite along the way. Thank you for joining me and spending your time with us here on Akashvani Itanagar. Until we meet again, take good care of yourself, keep smiling, and let music continue to brighten your day. This is your presenter signing off from Akashvani Itanagar.
1: The Maruti Suzuki Victoris is finally here and has everything you could imagine in your SUV. Dolby Atmos 5.7 surround sound, yes. Advanced Level 2 ADAS, yes. Smart powered tailgate with gesture control, yes. 5-star safety rating, yes. Yes, it's got it all. Introductory price starts at just ₹10.49 lakh.
2: And benefits up to ₹80,000. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena dealership to know more. Terms and conditions apply.
3: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with Surround Sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offer up to ₹55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
3: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, next gen K series, 1.0 liter dual jet, dual vivity engine, and spacious interiors.
2: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership.
4: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
5: हर घर सूर्य घर।
6: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
7: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा।
8: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
7: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें। pmsuryaghar.gov.in पर।

और श्रोता दोस्तों, आप सुन रहे थे पाश्चात्य संगीत पर आधारित कार्यक्रम वेस्टर्न मेलोडीज। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम है और अब वक्त हो गया है सदाबहार हिंदी फिल्मी गीतों के कारवां, भूले बिसरे गीत का।

किशोर कुमार की आवाज में अभी आप सुन रहे थे दिल भर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तर पाओगे, फिल्म सत्ते पे सत्ता से। और इसी के साथ ही हमने आगाज कर लिया है सदाबहार हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

मुकद्दर का सिकंदर। बिल्कुल श्रोता दोस्तों, मुकद्दर का सिकंदर फिल्म से है हमारी अगली पेशकश, और इस गीत को गाया है लता मंगेशकर एवं किशोर कुमार ने।

0: वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: अक्सर हम सोचते थे कि अपनों को गीतों के माध्यम से मनाने का ये हुनर सिर्फ कहानियां और फिल्मों के पर्दे तक ही सीमित है, लेकिन सच तो ये है कि अगर दिल में सच्चा इरादा हो तो जिंदगी में कुछ भी मुमकिन है। खैर श्रोता दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे सनम तेरी कसम का ये टाइटल सॉन्ग किशोर कुमार की आवाज में। कार्यक्रम है भूले बिसरे गीत, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: एचआईवी के बारे में सही जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।
4: एचआईवी संक्रमित खून, असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई सिरिंज और माँ से बच्चे तक फैल सकता है।
3: लेकिन याद रखें, साथ बैठने, हाथ मिलाने, गले लगाने, साथ खाने या मच्छर के काटने से एचआईवी नहीं फैलता।
4: एचआईवी की जांच कराएं, समय पर पता चले तो इलाज से स्वस्थ और लंबा जीवन जिया जा सकता है।
3: एचआईवी से डरे नहीं, जानकारी बढ़ाए, जांच कराए, भेदभाव मिटाए।
4: अधिक जानकारी के लिए नेशनल एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी DHS नाहरलगुन द्वारा जनहित में जारी।

श्रोता दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे ये गीत किशोर कुमार एवं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म आ गले लग जा से। और इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम भूले बिसरे गीत का आज का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। आपको बताना चाहेंगे कि इसी के साथ ही अब हम हमारी तीसरी प्रसारण सभा के समापन पर आ पहुंचे हैं। इस सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने में हमारा साथ दे रहे थे तमाम एफएम ट्रांसमीटर के सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक गए रहते तकनीकी अभियंता पीवी देवरी और मैं आपके रेडियो दोस्त सुलोकना। चलते चलते आपको बताना चाहेंगे कि अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे एफएम गोल्ड से रिलेट कार्यक्रम और हम आप सभी से कल सुबह के 5:48 पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। शुभरात्रि। जय हिंद।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं धर्मेंद्र मणि राजेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया है। सेना की यह कार्रवाई आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाती है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया ये देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आग उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है। श्री मोदी ने लोगों से मोढेरा की गौरवशाली विरासत को देखने की अपील की। प्रधानमंत्री ने आगामी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती से पहले

0: लेकिन खतरे की स्थिति में अपनी सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा करेगा। नई दिल्ली में आज रक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने यह बात कही। राष्ट्रीय सुरक्षा के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में राष्ट्रीय एकता पर बल देते हुए श्री सिंह ने कहा कि देश की सुरक्षा केवल सशस्त्र बलों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के साबरमती में 1,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ साबरमती स्टेशन से देश की पहली द्रवीकृत प्राकृतिक गैस LNG से चालित रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना भी किया। इस रेलगाड़ी में डीजल और LNG दोनों ईंधन प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है। गृह मंत्री ने रेलवे के इस कदम को स्वच्छ ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण बताया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंघल ने अपना पूरा जीवन हिंदुत्व, राष्ट्र और समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। दिवंगत अशोक सिंघल की जन्म शताब्दी समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि उनका जीवन हमेशा युवाओं को जागरूक करता रहेगा। तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 3 मैच की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। भारत ने 41 ओवर और 4 गेंद में 2 विकेट पर 300 रन बनाकर जीत हासिल की। विराट कोहली 139 रन बनाकर नाबाद रहे। ये उनके एक दिवसीय क्रिकेट का 55वां और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर का 86वां शतक है। शुभमन गिल ने भी 110 रन बनाए। इससे पहले वेस्टइंडीज ने निर्धारित 50 ओवर में 7 विकेट पर 295 रन बनाए थे। भारत के लिए कुलदीप यादव ने सबसे अधिक 4 विकेट लिए। एशियाई खेलों के आज 8वें दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते। सर्वेश कुशारे ने पुरुष हाई जंप में रजत पदक हासिल किया। उन्होंने 2.25 मीटर की सर्वश्रेष्ठ कूद लगाई। महिला लॉन्ग जंप में एनसी सोजन ने 6.53 मीटर की छलांग लगाकर दूसरा स्थान हासिल किया। स्क्वाश में अभय सिंह और अनाथ सिंह ने रजत पदक जीता। उधर भारत ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित शतरंज ओलंपियाड में नोना ग्रेपी डाविशली ट्रॉफी बरकरार रखी। भारतीय टीम ने ओपन वर्ग में रजत और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीतकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Nishit Kumar. Prime Minister Narendra Modi has said 2016 surgical strikes, 2019 Balakot airstrike and Operation Sindoor in 2025 are bold examples of India's zero-tolerance policy towards terrorism. The Prime Minister was addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashwani today. He said surgical strikes carried out by the Indian Army on terrorist hideouts in Pakistan in 2016 demonstrated to the world a new approach to India's counter-terrorism policy. Mr. Modi said India will mark the 10th anniversary of the cross-border surgical strike tomorrow. Speaking about Census 2027, Mr. Modi said the first phase of the ongoing exercise is nearing completion across all states and union territories. He said data from more than 32 crore families has already been recorded so far. He urged people to participate in the drive and use self-enumeration facility.
2: देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसका पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। 32 करोड़ से अधिक परिवारों की जानकारी दर्ज की जा चुकी है। जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। मोबाइल से ही जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
1: Mr. Modi also called for greater public participation in cleanliness drives ahead of the birth anniversary of father of the nation Mahatma Gandhi on the 2nd of October. Prime Minister Modi said millions of young people have pledged to stay away from drugs under the Nasha Mukt Yuva Abhiyan. He called for collective efforts to build a drug-free youth while announcing health checkups and meditation camps as part of the 100-week campaign. Speaking about One District, One Product initiative, Prime Minister Modi said it is creating new opportunities for amla growers and entrepreneurs at Pratapgarh in Uttar Pradesh, with around 100 processing units now operational and women's self-help groups playing an important role. Raksha Mantri Rajnath Singh has said India seeks global stability but not at the cost of its strategic autonomy. Mr. Singh was addressing a defense conclave in New Delhi today. He said India does not seek to occupy the territory of any country but will take all necessary measures to protect its security and strategic autonomy

0: if threatened. He said as long as a neighboring country continues to support terrorism, India is entitled to take all necessary measures against it.
1: India wants peace, but it will not compromise on its security under any circumstances. India believes in dialogue, but if any country promotes terrorism against India, there is no scope for dialogue with that country. Countries that use terrorism as a tool of state policy and provide shelter and support to terrorists must be sent a strong message that terrorism can never be a strategic asset for anyone under any circumstances.
0: Union, Home and Cooperation Minister Amit Shah flagged off the country's first LNG-powered train from Sabarmati Station in Gujarat today, marking railway's shift towards cleaner energy. The train uses a dual-fuel system powered by diesel and liquefied natural gas. The initiative is being seen as a step towards greener rail transport and India's net-zero carbon goals. Mr. Shah also launched a series of railway development projects worth more than 1,500 crore rupees. Vice President C.P. Radhakrishnan has stressed that technology cannot replace the human touch of a doctor, particularly amid rapid advances in artificial intelligence and digital healthcare. The Vice President was addressing the graduation ceremony of the SUT Academy of Medical Sciences at Thiruvananthapuram in Kerala today. In men's cricket, India beat West Indies with ease by 8 wickets in the first one-day international at Greenfield International Stadium in Thiruvananthapuram to take a 1-0 lead in the 3-match ODI series tonight. Chasing a target of 296 runs set by the West Indies, hosts India made 300 for 2 in 41.4 overs with unbeaten 139 runs in 88 balls made by Virat Kohli, while skipper Shubman Gill scored 110 runs. Earlier put into bat first, West Indies posted 295 runs for the loss of 7 wickets in the stipulated 50 overs. And at the Asian Games in Japan, India's Ansi Sojan Edapilli has won the silver medal in the women's long jump at Aichi Nagoya in Japan today. Sarvesh Kusharev won silver medal in the men's high jump. In squash, the country clinched 2 silver medals with Abhay Singh winning silver in the men's singles and Anahat Singh bagging silver medal in the women's singles event. Currently, India is at the 12th position in the medals tally. And with that, we end this news bulletin.
2: Namaskar. Akashvani se Vishw Darpan ke saath main Ashutosh. मुख्य समाचार। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और कनाडा द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने का काम कर रहे हैं। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में नाव पलटने से 12 लोगों की मौत और दर्जनों लापता। एशियाई खेलों में भारत ने महिला लंबी कूद, पुरुष ऊंची कूद और दोनों स्क्वैश एकल स्पर्धाओं में रजत पदक जीते। डेकाथलॉन, महिला स्टीपल चेज और 200 मीटर स्पर्धाओं में कांस्य पदक हासिल किए और भारत ने शतरंज ओलंपियाड में नूना गैप्रिंडाश्विली ट्रॉफी बरकरार रखी। ओपन वर्ग में रजत और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और कनाडा द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में इस मुलाकात को बेहद उपयोगी बताया। उन्होंने कहा कि दोनों देश व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में समझौतों के माध्यम से बातचीत को आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। इससे पहले कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने संयुक्त राष्ट्र में कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वर्ष दिसंबर के आसपास कनाडा की यात्रा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के साथ व्यापार वार्ता में प्रगति हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया है। सेना की यह कार्रवाई आतंकवाद को कतई न बर्दाश्त करने की नीति को दर्शाती है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया यह देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी।
3: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
2: कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के पूर्वी क्षेत्र में किवू झील में एक नाव के पलट जाने से 12 लोगों की मौत हो गई है, जबकि दर्जनों लोग अब भी लापता हैं। अधिकारियों के अनुसार 50 से अधिक लोगों को ले जा रही यह नाव कल रात दक्षिण किवू प्रांत के इद्ज़वी द्वीप के पास पलट गई। अब तक 15 लोगों को बचाया जा चुका है और राहत तथा बचाव अभियान जारी है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में अमरीकी संसद के विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष ब्रायन मास्ट के नेतृत्व में आए अमरीकी कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक में भारत अमरीका संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने हाल ही में पारित सैंक्शनिंग रूस एंड ईरान एक्ट और द्विपक्षीय संबंधों की आगे की दिशा पर भी विचार विमर्श किया। बैठक में साझा हितों से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों, ऊर्जा सुरक्षा, आतंकवाद से मुकाबला और नौवहन की स्वतंत्रता पर भी चर्चा हुई। भारत ने मानवीय सहायता के अंतर्गत काबुल के सरकारी अस्पताल के लिए जीवन रक्षक दवाओं और चिकित्सा सामग्री की खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अफगानिस्तान के लोगों के लिए भारत की मानवीय सहायता में स्वास्थ्य सेवाओं को प्रमुख स्थान दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि भारत किसी अन्य देश की भूमि पर कब्जा करने की इच्छा नहीं रखता है, लेकिन खतरे की स्थिति में अपनी सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा करेगा। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक स्थिरता और शांति का पक्षधर है।
4: भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत अपनी सुरक्षा के साथ किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेगा। भारत डायलॉग में विश्वास रखता है, लेकिन यदि कोई देश भारत के खिलाफ आतंकवाद को हवा देगा तो डायलॉग की गुंजाइश वहीं खत्म हो जाती है। जो देश टेररिज्म को अपनी नीति का साधन बनाते हैं, आतंकियों को पनाह और समर्थन देते हैं, उन्हें कड़ा संदेश देना होगा कि आतंकवाद किसी के लिए स्ट्रेटेजिक एसेट किसी भी सूरत में नहीं हो सकता।
2: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने विश्व पर्यटन दिवस पर देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि पर्यटन अलग अलग लोगों, संस्कृतियों और समाजों के बारे में जानकारी बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत यात्रा के शौकीनों के लिए एक सुरक्षित और विकसित गंतव्य के तौर पर उभरा है। फिलीपींस के सुबिक बे में समुद्री सुरक्षा में सहयोग की गतिविधियों पर आसियान रक्षा मंत्रियों की 23वीं बैठक संपन्न हो गई। बैठक में सदस्य देशों के मंत्रियों के अलावा विशेषज्ञों ने भी भाग लिया। बैठक में भारतीय नौसेना के पोत INS सह्याद्री और INS कुलिश के कमांडिंग ऑफिसर भी शामिल थे।
5: आसियान देशों के बीच नौसैनिक सहयोग की 5 दिन की गतिविधियों की मेजबान फिलीपींस की नौसेना ने की और जापान ने इसकी सह अध्यक्षता की। रक्षा मंत्रालय के अनुसार इसमें शांति और सुरक्षा, आसियान नौसेना प्रमुखों की बैठक, समुद्री गतिविधियों के लिए दिशा निर्देश, वरिष्ठ नौसैनिक नेतृत्व और समुद्री पर्यावरण संरक्षण जैसे विषयों पर विशेषज्ञों के बीच विचार विमर्श हुआ। भारतीय नौसैनिकों ने संचालन समन्वय, टेबल टॉप अभ्यास और प्रस्थान से पहले आयोजित सम्मेलन में भी हिस्सा लिया। मंत्रालय ने कहा है कि इस गतिविधि में भाग लेने वाले देशों के बीच पेशेवर संवाद और व्यावहारिक सहयोग मजबूत हुआ। भारत की भागीदारी ने एक्ट ईस्ट नीति और महासागर के अंतर्गत क्षेत्रीय साझेदारी के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से जसपाल कौर।
2: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने तुर्कमेनिस्तान सरकार और विदेश मंत्री राशिद मेरेदोफ को स्वाधीनता की 36वीं वर्षगांठ पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वे भारत और तुर्कमेनिस्तान के संबंधों को मजबूत बनाने के प्रति आशान्वित हैं। पश्चिमी नेपाल में तिब्बत सीमा के पास हिमलुंग हिमाल में आधार शिविर पर आज सुबह हिमस्खलन के बाद 10 लोग लापता हैं। खराब मौसम के कारण पर्वतारोहियों को फिलहाल आगे न बढ़ने की सलाह दी गई है। जापान के आईजी नगोया में एशियाई खेलों के आज आठवें दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते। सर्वेश कुशारे ने पुरुष हाई जंप में रजत पदक हासिल किया। उन्होंने 2.25 मीटर की सर्वश्रेष्ठ कूद लगाई। महिला लॉन्ग जंप में एनसी सोजन ने 6.53 मीटर की छलांग लगाकर दूसरा स्थान हासिल किया। स्क्वाश में अभय सिंह और अनाहत सिंह को रजत पदक मिला। पारुल चौधरी ने महिला 3000 मीटर स्टीपल चेज में कांस्य पदक अपने नाम किया। तेजस्विन शंकर ने टेकथलॉन 7934 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता। हरिता भद्रा ने महिला 200 मीटर में तीसरा स्थान हासिल कर कांस्य पदक अपने नाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण 16 रजत और 17 कांस्य समेत 37 पदक लेकर 12वें स्थान पर है। याद में नोना गैपरिन डाशविली ट्रॉफी बरकरार रखी से पदक जीतकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। पुरुष टीम ने हंगरी के साथ ड्रॉ खेला और टाई ब्रेक के आधार पर रजत पदक जीता। महिला टीम ने जॉर्जिया के साथ ड्रॉ खेलकर कांस्य पदक देश को दिलाया। तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 3 मैच की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और कनाडा द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने पर काम कर रहे हैं। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में नाव पलटने से 12 लोगों की मौत और दर्जनों लापता। एशियाई खेलों में भारत ने महिला लंबी कूद, पुरुष ऊंची कूद और दोनों स्क्वाश एकल स्पर्धाओं में रजत पदक जीते। डेकाथलॉन, महिला स्टीपल चेज और 200 मीटर स्पर्धाओं में कांस्य पदक हासिल किए। और भारत ने शतरंज ओलंपियाड में नोना गैपरिन डाशविली ट्रॉफी बरकरार रखी। ओपन वर्ग में रजत और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही विश्व दर्पण का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।